मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026 हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन शुभ हो।

यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए

तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है। ईश्वर क्या है, कहां मिलते हैं उसके पदचिन्ह, ये सनातन प्रश्न हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान। तो आइए भोर के इन पवित्र पलों में उस ईश्वरीय तत्व को महसूस करते हुए प्रथम नमन करें अपनी मातृभूमि को।

आराध्य के चरणों से प्रेम भक्त के हृदय में प्रकाश भर देता है। अखिल विश्व में उसे फिर परमात्मा ही दिखाई देता है। वो निर्भय हो जाता है। उसे न दुखों का डर होता है न मृत्यु का। वो निश्चिंत मगन रहता है अपने आराध्य के प्रेम में।

भक्ति तभी संपूर्ण होती है जब परमात्मा भीतर उतरता है। परमेश्वर का भीतर उतरना हुआ और उसी क्षण लगता है कि गंतव्य आ गया। यूं लगता है जैसे किसी ने छुआ और भीतर की वीणा गुनगुनाने लगी। लेकिन भक्ति का ये वरदान उस ईश्वर की परम कृपा से ही प्राप्त होता है।

जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव ही वंदना है। जो कुछ जीवन में मिला उसके लिए अनुग्रह मानना, इस भाव के साथ कि जितना और जो कुछ उसने दिया हम उसके योग्य नहीं थे। हम जितना धन्यवाद से भरते हैं भीतर उतना अधिक विस्तार होता है, और इस तरह भक्त पूर्ण समर्पित हो उसके दर पर झुकता है।

मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसकी आत्मा भी माया के प्रहार और प्रभाव से परे हो जाती है। इसीलिए आराधना में जप का विधान है, नाम स्मरण का विधान है।

ईश्वर माया के प्रभाव से बिल्कुल परे है। प्रभु के नाम की पुनरावृत्ति कर करके जिस साधक के

भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद अनूप जलोटा, प्रदीप चटर्जी, हरिओम शरण और सुरेश वाडकर के गाए भजन। इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी भोपाल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे चिंतन। आज का विषय है शिखर। आलेख है डॉक्टर बसंत निर्गुणे का।
1: शिखर सबसे ऊंचे स्थान का नाम। शिखर का मतलब वे ऊंचाइयां जिसे कोई दूसरा छू न सके। पहाड़ों की ऊंचाइयां शिखर ही तो कहलाती हैं। एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। शिखर हमेशा एक चुनौती बनकर मनुष्य के सामने खड़ा होता है। असल में सबसे बड़ा शिखर तो मनुष्य के मन के भीतर होता है, जो सब शिखरों से सबसे ऊंचा होता है। जब ये शिखर मन के भीतर बनता है, तब दुनिया के सारे शिखर उसके आगे छोटे होते हैं। मनुष्य यदि ठान ले तो वह शिखर को पा सकता है, छू सकता है। शिखर पाने के लिए जिस निष्ठा लगन की जरूरत होती है, वह मनुष्य के भीतर से उपजती है। शिखर पाने के लिए पहले लक्ष्य का संधान जरूरी है। लक्ष्य शिखर पाने का पहला निश्चयी कदम है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट न होगा, तब तक शिखर की तस्वीर भी हमारे संकल्प में धुंधली होती है। इसलिए लक्ष्य चाही गई फल श्रुति के अनुरूप संकल्पित होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयास के पहले चरण में शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देना अनिवार्य है, वरना शिखर तो क्या, प्रयास भी बिखर सकता है। यदि पहला प्रयास असफल हो जाता है तो हमारी लक्ष्य और शिखर दोनों गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए पहला प्रयास ही मजबूती के साथ होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे लक्ष्य और शिखर को छूने में बाधक नहीं हो सकती। एक मंदिर तभी मंदिर कहलाता है जब तक उसका शिखर न बनाया जाता है। मंदिर का शिखर मंदिर में विराजित मूर्ति का कीर्ति कलश कहलाता है। मंदिर के शिखर कलश और कलश पर फहराते ध्वज मनुष्य को दूर से मूर्ति के समीप आमंत्रित करते नजर आते हैं। संभवतया वे कह रहे हों, हे मनुष्यों, तुम मूर्ति की तरह स्वयं की कीर्ति कलश या यश शिखर बनो। उठो, प्रयत्न करो और अपने पवित्रतम उज्ज्वल जीवन लक्ष्य को प्राप्त करो। शिखर बनने के पहले मनुष्य को बहुत अधिक तप करना पड़ता है। शिखर किसी को एक दिन में नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए मनुष्य को बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्षेत्र कोई भी हो, विषय कोई भी हो, हर कोने का एक शिखर होता है, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा। शिखर के बिना किसी भी कार्य का परिणाम संभव नहीं है। कार्य का अधूरा छूट जाने का मतलब

0: हमारे प्रयास और संकल्प में कमी का होना है। असफलता भी इसी के कारण हाथ लगती है और शिखर बनने का हमारा सपना चूर चूर हो जाता है। हम अपनी कमियों खामियों से शिक्षा लेते चलें तो हम शिखर को पाने में सफल हो सकते हैं। शिखर पर एक बार पहुंच जाने के बाद प्रायः लोग बहुत देर तक वहां टिक नहीं पाते। ये तो प्रकृति का नियम है कि उत्थान के बाद पतन भी निश्चित है। लोक में कहावत भी है कि जो चढ़ता है वह गिरता भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इस कीर्ति कलश या यश शिखर पर बने रहते हैं। ऐसे लोग अहंकार की चपेट में आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि शिखर पर पहुंचाने में हजारों लोगों की सद्भावनाएं और सदिच्छाएं भी होती हैं। जब शिखर पुरुष अहंकार में भूलकर इन सदिच्छाओं का अपमान करना शुरू कर देते हैं तब उनका पतन या शिखर से फिसलना शुरू हो जाता है। और एक दिन शिखर पुरुष धरातल की धूल में आकर खड़ा हो जाता है। ये सुनिश्चित है कि शिखर बनना आसान हो सकता है लेकिन सदैव शिखर पर बने रहना उतना ही मुश्किल है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज का विषय है ग्रीष्मकालीन जायद की फसलों में सामयिक कृषि कार्य। जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक वर्मा।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा का विषय है जायन की फसलों में समसामयिक कार्य। अभी देखेंगे कि जायन की फसलों में मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में जो फसल बोई जाती है, जायन की फसलों में मूंग की फसल है और सब्जियां अधिकतर बोई जाती हैं। और इस समय किसान भाइयों को, जैसे मई का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि तापमान अधिक है और ह्यूमिडिटी, अगर पानी जैसी स्थिति मालूम बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। तो किसान भाइयों को खासकर जायन की जो मूंग है उस समय उसको ध्यान देना है कि उसमें कीड़े का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप ना हो, निरंतर निगरानी करनी है। अगर मान लो आपको कीड़े या बीमारी का प्रकोप दिख रहा है तो उसमें तुरंत ही इसका उपाय करना है, क्योंकि अगर मान लो आप इसका उपाय तुरंत नहीं करते हैं समय से, ऐसी स्थिति में फसल के उत्पादन में विपरीत अंतर पड़ता है। 30-40% तक का नुकसान इसमें देखा गया है कीड़े और बीमारियों से प्रकोप से। देखिए, अगर मान लो आपको इल्ली का प्रकोप किसी कारण से दिख रहा है, इसमें पत्तियां आपको कटी हुई दिख रही हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति में आपको जैविक तरीकों में हम बात करेंगे तो इसमें नीम ऑयल 300 ppm में, 1000 ppm में, 1500 ppm में और 3000 ppm और 10000 ppm में आता है। तो इसमें जो भी आपको उपलब्ध हो उसकी मात्रा 5 ml की मात्रा आपको 1 liter पानी के हिसाब से आपको, जैसे 200 अगर मान लो आप लेते हैं तो 1 acre में आपका 200 liter पानी जाता है, तो 1500 ml आपको दवा लगेगी। और जैविक तरीके में अगर मान लो आपको जाना है तो जैविक तरीके से कम 10-15 दिन में आपको स्प्रे इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर मान लो इसमें आपको कीड़े का प्रकोप या इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है तो फिर हम इसमें केमिकल पे जा सकते हैं। केमिकल में हम 2-3 तरह के केमिकल का उपयोग करते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइड का उपयोग कर सकते हैं और इंडोक्सकार्ब आता है, स्पेनोसिड आता है, इन दवाइयों को हम उपयोग करके हम इल्लियों का प्रकोप को हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो किसी कारणवश अगर मान लो इसमें कोई बीमारी या इसमें फफूंद टाइप की अगर लो उसमें दिख रही है, तो इसके इलाज के लिए आपको कार्बेंडाजिम का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आपको दिख रही है तो इसमें कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर दीजिए और प्रोपिकोनाजोल या टेबिकोनाजोल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर मान लो फफूंद की समस्या है तो इसमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है तो कोई इसमें स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मूंग की फसल में येलो वेन मजक वायरस बहुत आता है, तो आपको निगरानी करनी, अगर 20-25 दिन के बाद अगर मान लो उसकी पत्तियां बीच बीच में आपको खेतों में पीली पत्तियां वाला ऐसे फसल दिख रही है या मूंग दिख रही है, तो उसको आप तुरंत ही उसको उखाड़ के उसको नष्ट करना है, क्योंकि अगर मान लो पीली पत्ती पतली पत्ती वाले पौधे दिखने लगे तो ये वायरस का प्रकोप है। वायरस का प्रकोप एक सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई होती है उसके माध्यम से एक पौधे में लगी है तो वो दूसरे पौधे उस पौधे का रस चूस के दूसरे पौधे में जाएगी, तो उसमें भी ये बीमारी बढ़ती जाएगी। और ये आप देखेंगे कि अगर मान लो आपने इसका कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरे खेत में पीला दिखने लगेगा और पूरी फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। अगर मान लो आपको 20-25 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में

0: आप उसके पौधों को उखाड़ दीजिए और उसमें कोई भी एक दवा मच्छर को मारने वाली एसीटेपरेट भी डाल सकते हैं या थायोमेथोक्सोन 0.5 मिलीग्राम की मात्रा आपको 1 लीटर पानी में डालनी है और एसीटेपरेट भी आपको 0.5 या की मात्रा 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे कर देंगे तो इससे आपके सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल हो जाएगा तो जो बाकी जो फसल है वो आपकी बच जाएगी। दूसरी बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो आपने अपने क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में पानी है आपने सब्जी लगाई तो सब्जियों में भी आप लोग को विशेष ध्यान देना रहता है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो माहो मच्छर और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ने लगता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ऐसे में आपको निरंतर निगरानी करनी है। जैविक तरीके का जैसे मैंने बताया नीम ऑयल 1500 PPM 3000 PPM और 10000 PPM में आता है तो उसको आप इसको स्प्रे करते रहिए बीच बीच में। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम उसमें केमिकल पे जाएंगे। तो आपको बस देखना है और निगरानी करनी है और आपकी फसल स्वस्थ रहे और जब फसल स्वस्थ रहेगी तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा तो आपको आपके जो उपज का मूल्य अच्छा मिलेगा। ठीक, इतना ही आज के लिए। तो किसान भाइयों आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

एक जरूरी सूचना। संजय कुमार पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त आसूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमन उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि भी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं किसी भी वस्तु जिससे जन

सामान्य को खतरा महसूस होगा, संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और जो कि वर्तमान परिस्थितियों में जनसाधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एवं पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिलीज किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति

का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत थोड़ी ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रेलवे के नए PRS सिस्टम के विषय में मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी जी से बातचीत। 4 वर्षों से लगातार कार पोलिंग के माध्यम से ईंधन की बचत कर रहे डॉक्टर्स के ग्रुप की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना श्रीवास्तव जी से उनके विचार जानेंगे और फूड रिकवरी अभियान के अंतर्गत ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने वाली संस्था रॉबिनहुड आर्मी की सिटी लीडर सुश्री श्वेता तायवाड़े से चर्चा होगी। आठ बजकर 30 मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। इसमें कलाकार पुष्पा पगधारे के स्वर में गजल आप सुनेंगे। 9:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम शब्द सागर। इसके अंतर्गत कहानी लेखन में स्वरूप और संवेदना विषय पर परिचर्चा आप सुनेंगे। प्रतिभागी रहेंगे डॉक्टर गोविंद मिश्रा शशांक और डॉक्टर उर्मिला शिरीश। ठीक 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग माला का। इसमें पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ख्याल गायन आप सुनेंगे। राग होगा अहीर भैरव। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। इसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा की भेंट वार्ता होगी। विषय रहेगा गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह की ठीक 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा दिन के 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2 बजे। दिन के 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का 6वां भाग। आकाशवाणी इंदौर केंद्र के योगदान से दिन के 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति रहेंगे। सांधिकालीन सभा में शाम के ठीक 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत और चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 5:33 पर, शाम 6:30 बजे, रात 8:15 बजे और

0: रात 8 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 बजे सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशां, इसमें आप सुनेंगे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारे गजल। रात 10:30 बजे आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का, इसमें आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ख्याल गायन, राग होगा हमीर। इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगे शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली की 2 दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। इसके पूर्व कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के प्रयास करने चाहिए।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य हिस्सा लेंगे, जो परिषद में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर उनके लिए सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

0: आमी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और हॉक फोर्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश पुलिस को यह सम्मान बालाघाट एवं छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफल एंटी नक्सल ऑपरेशंस, प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय, मजबूत खुफिया नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रों में सतत अभियान संचालन और सुरक्षा तथा विकास आधारित पुलिसिंग मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए प्रदान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए आगामी 1 जून से 15 दिनों तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा।
1: प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, आईसीएआर ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगी। सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार एवं तकनीकी आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर शासकीय विभाग और औद्योगिक इकाइयों की नवाचार, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप एवं तकनीकी आधारित पहल की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन 20 मई को सदस्य देश अपने देशों के उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और युवा उद्यमिता पहल की जानकारी साझा करेंगे। वहीं अंतिम दिन 21 मई को उद्यमिता क्षमता और नेतृत्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कल कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित व्हाट्सएप चैटबॉट प्रचार अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज की महती आवश्यकता है। वहीं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। छठवां राज्य वित्त आयोग 20 एवं 21 मई को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दौरे पर रहेगा। इस दौरान आयोग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा आर्थिक स्वावलंबन के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करेगा। आयोग की टीम आज शाम ग्वालियर पहुंचेगी। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, सदस्य के सिंह तथा सदस्य सचिव वीरेंद्र कुमार कल ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इससे पहले कल के हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हॉकी इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को हॉकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी के दर्शन करेंगी।

धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 5 वर्ष के वेतन के बराबर राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। गुना जिला प्रशासन की सहभागिता से गेल विजयपुर संयंत्र में कल दोपहर 3:30 पर संयुक्त रूप से ऑफसाइट आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कटनी कलेक्टर ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास के लिए जिले में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया है। इंदौर में प्रत्येक सोमवार को

की जाएगी। डिंडौरी में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के प्रचार प्रसार के लिए LED प्रचार रथ को रवाना किया गया और NTPC विंध्याचल में आयोजित विंध्याचल प्रीमियर लीग में विंध्याचल वॉरियर्स ने विंध्याचल स्ट्राइकर्स को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगे शुभारंभ। और IPL क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

जब दरिया कीमती हो हर एक बूंद संजोया जाए, क्यों ना उम्मीदों की गुल्लक में भविष्य का फल बोया जाए। नमस्कार, भोपाल सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र रुचि सचान। दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है और यही बात जीवन में बचत पर भी लागू होती है। बचत सिर्फ पैसे जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये भविष्य के प्रति हमारी समझदारी और दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। आज की चमक दमक भरी दुनिया में जहाँ इच्छाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं, वहाँ बचत हमें जरूरत और चाहत के बीच का अंतर सिखाती है। दोस्तों, हमारी छोटी छोटी बचत हमारे लिए बड़ा सहारा बन सकती है और इस बचत के कई रूप हैं। समय की बचत, पानी की बचत, बिजली की बचत या ईंधन की बचत। बचत कैसी भी हो, हमारे आने वाले कल को सुरक्षित बनाती है।

आप सुन रहे हैं 188.32 मीटर डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मनपसंद प्रोग्राम नमस्कार भोपाल। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं रुचि सजान। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, कुछ खास खबरें समाचार पत्रों से। पहली खबर मौसम को लेकर। सोमवार को मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की अलर्ट रहा और लू की चपेट में पूरा प्रदेश रहा। प्रदेश में यह सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। कल भोपाल का तापमान लगभग 45 डिग्री तक दर्ज किया गया है। देश की बात करें तो आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम यूपी में कुछ हिस्सों में तापमान 48 तक रह सकता है। दूसरी ओर मानसून 22 से 26 मई के बीच में केरल पहुंचने की संभावना है। साथ ही इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। अगली खबर भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाड़ी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय संत परंपरा, भक्ति संगीत और काव्य चेतना पर आधारित इस संगीतमय उत्सव में प्रतिदिन शाम 7 बजे से संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 500 पदों के लिए हुई भर्ती में 1692 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है। दोस्तों आज समाचार पत्रों की सुर्खियों में बस इतना ही। अब चलते हैं मनोरंजन की ओर। प्रस्तुत है ये चुलबुला सा गीत।

0: संगीत में अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, यात्रा करना किसे पसंद नहीं है, और जब ये यात्रा ट्रेन से हो तो कहना ही क्या। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आज भी रेल परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, और इसे और अधिक सुलभ और उपयुक्त बनाने के लिए भारतीय रेलवे 4 दशक पुराना PRS सिस्टम बदलने जा रहा है। इस बदलाव से आम आदमी को क्या लाभ होंगे और कैसा होगा नया PRS सिस्टम, इस विषय में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी जी। सर, नया PRS सिस्टम यात्रियों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा?
1: नए PRS सिस्टम में काफी बदलाव किए गए हैं। इससे जो बुकिंग है, टिकट बुकिंग है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी इंडियन रेलवे जो करीब 30,000 रिजर्वेशन करती है पर मिनट, उसकी स्पीड करीब 1.5 लाख रिजर्वेशन पर मिनट बढ़ने की संभावना है। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी और वो काफी जल्दी टिकट बुक करा सकेंगे। इससे हमारा जो क्राउड है, जो कि टिकट बुकिंग के लिए काफी देर तक उनको लंबी लाइन में लगना पड़ता है, वो अब जल्दी टिकट PRS विंडो से करा के अपने घर जा सकेंगे। हमारे इस सिस्टम में इंक्वायरी की भी स्पीड काफी इंप्रूव हो रही है। अभी करीब जो इंक्वायरी हम लोग डिस्पोज करते हैं उसमें 10 टाइम्स की वृद्धि होने की संभावना है। PRS टिकट में सभी पब्लिक को, आमजन को बहुत फायदा होने वाला है, और मैं आप सबको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि भारतीय रेल में आपको एक सफल, सुखद, आरामदायक जर्नी मिलेगी।
0: पुराने सिस्टम में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या आती थी, और नया सिस्टम किस प्रकार से इससे अलग होगा?
1: हमारा पुराना सिस्टम टेक्निकली वो DOS बेस्ड था, जिसमें कि केवल कीबोर्ड का ही उपयोग होता था। नए सिस्टम को अब इम्प्रूव करके उसको विंडो बेस्ड किया गया है, जिसमें कि अब माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग होगा। इसका इंटरफेस काफी इम्प्रूव किया गया है, इसकी विंडो है कलरफुल बनाई गई है, तो इससे जो रेलवे स्टाफ को वर्किंग में भी काफी ईज होगी, तेजी से वो रिजर्वेशन कर सकेंगे और उससे इतना ही डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे।
0: नया सिस्टम साइबर सुरक्षा की दृष्टि से कितना सुरक्षित रहेगा?
1: नए सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है, और यह सिस्टम पहले के मुकाबले और ज्यादा अब सुरक्षित है, ये हम आपको अश्योर करना चाहेंगे।
0: नए सिस्टम में सीट चयन या वेटिंग टिकट कंफर्मेशन जैसी क्या कुछ नए फीचर और एड ऑन हुए हैं?
1: हमारा जो ऑप्शंस बर्थ के होते हैं, इसमें पैसेंजर्स दे सकते हैं जैसे लोअर बर्थ, साइड बर्थ, उसी का बेस पर फिर हमारे जो रेलवे स्टाफ है जो टिकट बुकिंग करते हैं वो ऑप्शंस को अवेल करके और टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे ही वैकेंट बर्थ अवेलेबल होगी तो उनको वही पर्टिकुलर बर्थ जो वो चाहते हैं वो उनको

0: मिलने में आसानी होगी।
1: आम आदमी नए सिस्टम में जैसे कि एक रेल वन ऐप आया हुआ है, उस रेल वन ऐप के जरिए कैसे अपना टिकट बुक करा सकता है?
0: रेल वन ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक बंडल ऑफ सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया है। इस रेल वन ऐप में काफी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसमें कि रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, इंक्वायरी, ट्रेन की पोजीशन, ट्रेन कोच की पोजीशन, इवन अगर आपको खाना चाहिए तो उसके लिए ऑर्डर करना, तो एक ही ऐप के द्वारा इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। यह ऐप काफी यूजफुल है और इसको घर बैठ के भी यूज किया जा सकता है। इसमें हमारी काफी जो भीड़ होती है विंडोज पे, अगर पब्लिक इस ऐप को यूज करती है तो वो काफी हद तक कम हो जाएगी और उनको काफी कन्वीनियंस रहेगी। रेल वन ऐप के थ्रू भी जो टिकट की बुकिंग है वो काफी तेजी से हो जाती है, ये IRCTC के थ्रू होती है। और रेल वन ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक सिंपल लॉगिन करने से ही आप कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अनुरोध है कि वो रेल वन ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करें।
1: आधुनिकीकरण और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे क्या प्रयास कर रही है?
0: भारतीय रेलवे संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे काफ़ी स्टेप्स ले रही है, जिसमें टाइमली असेट्स का रिन्यूअल है। इन एडिशन टू दैट काफ़ी हम मॉडर्नाइजेशन का भी काम कर रहे हैं। काफ़ी इसमें अभी हमारे अमृत भारत ट्रेन्स का भी इंट्रोडक्शन किया गया है, वंदे भारत ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए भारतीय रेलवे काफ़ी प्रोजेक्ट सेंक्शन कर रही है और जो रिक्वायरमेंट रहती है थर्ड और फोर्थ लाइन की, जहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सबको भी आइडेंटिफाई करके उनको सैंक्शन करने के साथ जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षा का रिकॉर्ड भारतीय रेल में काफी इंप्रूव हुआ है और फर्दर इसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। इसमें मॉडर्नाइजेशन के भी क्षेत्र में जगह जगह नई नई टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं। हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं ताकि एसेट के फेलियर कम से कम हो सके। थैंक यू।
1: दोस्तों, अभी आपने मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी जी को सुना, जिन्होंने हमें नए PRS सिस्टम और रेल वन ऐप के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और अब प्रस्तुत है वो बेहतरीन नगमा, जिसे सुनकर आप भी गुनगुना उठेंगे।

बेहतरीन मधुर संगीत और बेहतरीन जानकारियों से सजे इस कार्यक्रम को आप रोज सुबह 7:20 पर सुनते हैं। नाम है नमस्कार भोपाल। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज कार पूलिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग अपने निजी वाहन छोड़कर कार पूलिंग को अपना चुके हैं, तो कई अभी भी इस बारे में विचार ही कर रहे हैं। वहीं हमारे शहर में

0: नेत्र रोग विशेषज्ञों का एक ऐसा समूह भी है जिन्होंने आज से 4 साल पहले ही पार्किंग और ट्रैफिक जैसी समस्या को दूर करने के लिए कारपूलिंग को अपना लिया था। कारपूलिंग का आइडिया उन्हें कैसे आया, इससे उन्होंने अपने जीवन में किस बदलाव को महसूस किया, इन सब विषयों पर बात करेंगे सेवा सदन आई हॉस्पिटल गांधीनगर की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना श्रीवास्तव जी से। सपना जी, कारपूलिंग शुरू करने का विचार सबसे पहले कैसे आया और क्या उद्देश्य था इसका?
1: कारपूलिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक ही हॉस्पिटल में काफी सारी फीमेल डॉक्टर काम करते हैं और एक ही जगह से आने वाले हम काफी सारे डॉक्टर्स हैं 7 के करीब। तो हम सब ने ये विचार किया कि अलग अलग कार से आने की बजाय अगर हम एक ही कार से आएंगे तो ईंधन की तो बचत होगी और साथ पे समय पे पहुंच पाएंगे। कभी ना कभी किसी के संग कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कभी कार को लेके कुछ लेके, तो इस तरह की सोच से ये एक कारपूलिंग का आइडिया आया था। और इसके पीछे उद्देश्य भी यही था क्योंकि जो पुराना सेवा सदन अस्पताल बैरागढ़ में था उसमें पार्किंग की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो हमें लगा कि अगर हम 7 कारें कम पार्क करेंगे तो पार्किंग भी मरीजों को मिलेगी और अस्पताल प्रबंधन को भी थोड़ा फायदा होगा।
0: जून 2022 से इस पहल को लगातार रखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
1: बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था क्योंकि हम सभी एक सोच को रखने वाले डॉक्टर्स हैं, तो जब सबकी सहमति से ये कार्य हुआ तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगम तरीके से इसको हमने अपनाया है। अभी तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निभा रहे हैं।
0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारपूलिंग की अपील की है, आपको क्या लगता है आज के समय में यह कितना आवश्यक है?
1: जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस अपील के बाद हमारा मनोबल और बढ़ गया क्योंकि हमारा कदम सही है यह हमको लगता है और ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में क्योंकि ईंधन की कमी विश्व के लिए एक बड़ा संकट है। इसको देखते हुए अगर हम इस तरीके से सोचें कि सिर्फ 7 लोगों ने कारपूल करके 4 साल में कितना ईंधन बचत किया और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से रोका, इसी तरह सोचें कि अगर हर ऑफिस हर गली से 7 कारें कम निकलेंगी तो हम कितना ईंधन और कितना ट्रैफिक बचा सकते हैं।
0: कारपूलिंग से जुड़े आपके इस ग्रुप को इस प्रकार की पहल से और क्या क्या फायदे हुए हैं, जैसे पेट्रोल या पैसे की बचत?
1: जी बिल्कुल, ईंधन की बचत तो सबसे पहला था उद्देश्य हमारा, पैसे की भी बचत हुई, साथ में समय पे हम सभी पहुंच जाते हैं, कभी ना कभी कोई परेशानी है तो एक दूसरे का में मदद भी हो जाती है और चूंकि हम सभी एक ही फील्ड से जुड़े डॉक्टर्स हैं तो कई बार कोई केस डिस्कशन है या कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो कार भी हमारे लिए एक जरिया हो जाती है और आपसी दुख सुख तो हम लोग बांटते ही हैं जिससे कि हमारा सामाजिक रूप से आप समझे तो संतुलन बहुत ही अच्छा बना हुआ है।
0: कारपूलिंग के अपने इस सुखद अनुभव के आधार पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, बदलाव की शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये अपील की है तो हम पहला कदम खुद उठाएंगे तो ही देश बदल पाएंगे और कदम भले ही छोटा हो पर असर ज्यादा कर सकता है। और इसको एक लाइन में कहें तो ऐसा समझें कि एक कार कम निकालो पर देश की कल को संवारो। सरकार रास्ते दिखाती है पर चलना हमें खुद पड़ता है और इस तरह के प्रयास से हमने अपने बचपन में आप समझें कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं एक ही बस से, तो उस अनुभव को फिर से जीवंत कर लिया है। अगर हम इस पहल को अपनाएंगे तो ये समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक होगा। अगर ये कारपूलिंग की व्यवस्था सरकार लागू करती है तो ये बिल्कुल ही समाज में एक बदलने वाला कदम होगा क्योंकि इससे, जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ईंधन की बचत होगी, ईंधन का इस्तेमाल कम होगा, सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर प्रदूषण कम होगा तो सांस की बीमारियां या आंखों की जो तकलीफें होती हैं, एलर्जी जो आजकल बहुत हो रही हैं, या एलर्जी से होने वाली जो पुतली की बीमारियां होती हैं, ये सभी में कमी आएगी। प्रदूषण से एक्सपोजर कम होगा तो डेफिनेटली स्वास्थ्य में सुधार की संभावना होगी।
0: दोस्तों, अभी आपने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना श्रीवास्तव जी को सुना जिन्होंने अपने समूह के साथ चार साल पहले ही कारपूलिंग को अपना लिया था और आज ये सारे डॉक्टर्स न केवल अपने उस निर्णय से खुश हैं बल्कि ईंधन और पर्यावरण को बचाकर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। दोस्तों, हमें और आपको भी इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। और अब मनोरंजन की बारी, सुनिए ये दिल को छू लेने वाला गीत।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र रुचि सचान। दोस्तों, आपने ऐसी आर्मी का नाम तो जरूर सुना होगा जो लोगों की रक्षा करती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी आर्मी का नाम सुना है जो भूखों को खाना खिलाती है? हम बात कर रहे हैं रॉबिन हुड आर्मी की, जो रात दिन भूखे लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रही है, और वो भी हमारे और आपके सहयोग के द्वारा। कैसे, चलिए जानते हैं आर्मी की सिटी लीडर श्वेता ताईवाड़े जी से। श्वेता जी, आपके संस्था ने फूड रिकवरी अभियान की शुरुआत कब की थी और किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई थी?
1: जी, इस अभियान की शुरुआत 14 अगस्त 2014 में हुई थी भोपाल में, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो भी फूड वेस्टेज हो रहा था सिटीज में, जो डस्टबिन में जाता था, उसको देखकर के कॉज आया कि इस चीज को हम कैसे बचा सकते हैं और इसको किस हद तक के सेव कर सकते हैं इस वे में कि लोगों के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि डस्टबिन में खाना जाना सबसे ज्यादा पॉइंट इस चीज पे आ गया था कि बहुत गलत हो रहा है, ये वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज को बचाना है।
0: बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था कैसे काम करती है?
1: जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी एरिया में, किसी रेस्टोरेंट में या किसी घर से भोजन बचा हुआ है, हम हमारे वॉलंटियर्स को बताते हैं और वो जाकर के जरूरतमंद लोगों तक 24/7 में ये खाना पहुंचाते हैं। इसमें व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि हर लोकेशन पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं, भोजन को पिकअप करते हैं। हमारे पास में कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम खाने को स्टोर करके जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके पास में उनको पहुंचाते हैं।
0: भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं?
1: हम सबसे पहले जो डोनर्स होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो खाना कब बना था, कैसे बना था, और हम जा करके उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोगों तक के उसे पहुंचाते हैं। हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि वो खाना कम से कम 4 घंटे पहले ही बना हो, उससे ज़्यादा नहीं।
0: रात में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का अनुभव कैसा रहता है? कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया हो?
1: जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि आप जानते हैं कि रात में लोग किस तरीके से बाहर रहते हैं, किसी को भोजन मिलता है, किसी को नहीं मिलता। और एक यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि हम कहते ही हैं कि सरप्लस फूड हमें बचाना है। आप सोचिए, कई बार रात में लोग बिना खाए भी सो जाते हैं, तो होता कुछ यूँ है कि हम रात में तो वर्क करते हैं, बट एक भावुक घटना कोविड के टाइम पे जब सारे लोग अपने घर में बंद थे, तब रॉबिन हुड आर्मी इसके लिए 24/7 काम कर रहा था, और उन लोगों तक के जब हम खाना पहुंचाते थे और जब लोग एक एक शायद राशन के लिए इधर उधर भटक रहे थे और जब हम उन्हें खाना दे रहे थे, तो उनके चेहरे जो खुशी थी वो बहुत दुगनी थी और वो बहुत भावुक पल था हम सबके लिए।
0: श्वेता जी, अपने बारे में कुछ बताइए, आप आर्मी से क्यों जुड़ी और कब जुड़ी?
1: जी, मैं रॉबिन हुड आर्मी का हिस्सा आज से 5 साल पहले बनी थी और एक दोस्त के थ्रू बनी थी।

0: कोविड का ही टाइम चल रहा था, और इससे मेरा जुड़ने का जो एक उद्देश्य आया था वो ये आया था कि ये एक ऐसी संस्था है जिसमें जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी प्रकार की मॉनेटरी लेवल पे कोई भी बातचीत नहीं होती है, जो होता है सब स्पॉन्सरशिप पे होता है। और आप अगर देखेंगे तो रॉबिनहुड आर्मी आज इंडिया के 408 सिटीज में है, तो आप समझिए कि जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी कास्ट को लेकर बात नहीं होती, किसी रिलीजन को लेकर बात नहीं होती, और पैसों को लेकर के कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में 408 सिटीज अच्छे तरीके से एक कॉज पे काम करना। ये मुझे बहुत मोटिवेट किया था। और उसके बाद में जब हम कहते हैं कि वंस अ रॉबिन इज ऑलवेज अ रॉबिन, जब आप एक बार रॉबिन बन जाते हैं तो आप हमेशा के लिए रॉबिन बन जाते हैं, और आप इस एनजीओ का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको शुरुआत जीरो से नहीं करनी होगी, आप जहां थे आप वहीं रहते हैं।
1: समाज के सामान्य लोग विशेषकर युवा इस मुहिम से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: जी, हमारी वेबसाइट के थ्रू जो कि robinhoodarmy.com है, आप वहां से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो कि robinhoodarmy@gmail.com है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं।
1: जी, यदि कोई आपकी संस्था से भोजन के वितरण के लिए संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है?
0: जी, संपर्क के लिए मैम हमारे पास में जो वेबसाइट है आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स हैं आप उस पे जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चैट बॉक्स नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 8971966164, 8971966164। थैंक यू
1: दोस्तों। ये थी रॉबिनहुड आर्मी की सिटी लीडर श्वेता तायवाड़े जी, जिन्हें आर्मी से जुड़कर गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाने में अलग ही आनंद आता है। दोस्तों, हो सकता है हम इनकी तरह हज़ारों लोगों तक बचा हुआ खाना ना पहुंचा सकें, लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं वो है खाने की बर्बादी को रोकना, और ये करना भी कम बड़ी बात नहीं। और अब हो जाइए तैयार, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज के नमस्कार भोपाल को संपन्न करने का समय भी आ गया है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी 7:55 हुए हैं और आपसे अनुमति लेना चाहूँगी इसी वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे किसी नए अंक में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए अनुमति रुचि को, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक और गीत लीजिए, सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा

0: पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब के निवेश और 10 लाख नौकरियों

ஒருமை சவேரா. नई सुबह नई उमंग और नई सोच के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा. उम्मीद है आपका दिन खुशियों और मुस्कान से भरा होगा. तो चलिए देर किस बात की है, जानकारी और मनोरंजन का ये सफ़र शुरू करते हैं. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको गीत फिल्म राज 3 से. स्वर जावेद अली के हैं, गीतकार संगीतकार राशिद खान.

धूल, धुआं और प्रदूषण इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। बदलता मौसम भी अस्थमा को बढ़ा सकता है। ये बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। समय पर इलाज और सावधानी बेहद जरूरी है। और चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में गीत फिल्म भूल भुलैया 3 से। इस गीत में आवाज़ है आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की। गीत लिखा आदित्य रिखारी ने, संगीतकार लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अस्थमा यानी दमा बीमारी की। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें व्यक्ति को खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या होती है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
4: कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा होने पर घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर की सलाह और सही दवाइयों से

इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इनहेलर का सही उपयोग बेहद लाभदायक माना जाता है। घर और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धूल और धुएं वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन कम करना भी फायदेमंद होता है। और चलिए सुनते हैं गीत फिल्म मर्डर 3 से। गीत में आवाज़ है शफकत अमानत अली की, गीत लिखा सईद कादरी ने, संगीतकार प्रीतम।

योग और प्राणायाम से फेफड़े मजबूत बनते हैं। नियमित व्यायाम भी शरीर को स्वस्थ रखता है। आज के समय में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, इसका असर हमारी सांसों और फेफड़ों पर पड़ता है, इसलिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना, धूम्रपान से दूर रहना जरूरी है। अस्थमा के मरीजों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य जाँच करवाना भी जरूरी है। और अब सुनते हैं गीत वरुण जैन और राघव चैतन्य के स्वर में। फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गीत लिखा इंद्रनील ने, संगीतकार सचिन जिगर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी लेकिन ज़रूरी आदतें अपनानी चाहिए। सुबह शाम ताज़ी हवा में हल्की सैर करना लाभदायक हो सकता है। ज़्यादा धूल वाले पर्दे, कालीन और गंदगी से बचना चाहिए। मौसम बदलने पर विशेष सावधानी रखना ज़रूरी होता है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को समय पर लेना है। बिना सलाह के दवा बंद नहीं करनी है। पर्याप्त पानी पीना है, संतुलित भोजन लेना है। सही जानकारी और सावधानी से अस्थमा को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और अब सुनेंगे गीत सुनिधि चौहान के स्वर में फिल्म दम मारो दम से। गीत लिखा जयदीप साहनी ने, संगीतकार प्रीतम।

जागरूकता ही अस्थमा से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, छोटी समस्या को भी कभी नज़रअंदाज न करें। स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अस्थमा से डरने की नहीं, समझदारी से लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी रखें तो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। आइए मिलकर स्वस्थ और स्वच्छ भारत का सपना पूरा करें। और अब जोनिता गांधी के स्वर में गीत आप सुनेंगे फिल्म दंगल से। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दौरान कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच आपसी मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार एवं तकनीकी आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल भोपाल में आयोजित व्हाट्सएप चैटबॉट प्रचार अभियान के शुभारंभ समारोह में कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज की महती आवश्यकता है। और IPL क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

दोस्तों, अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे पत्र यानी चिट्ठी के महत्व की। पत्र केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि ये दिल की भावनाओं को व्यक्त करने का सुंदर माध्यम है। पहले लोग अपने सुख दुख और हालचाल चिट्ठियों के जरिए साझा करते थे। डाकिया जब पत्र लेकर आता था तो घर में खुशी का माहौल बन जाता था। पत्र रिश्तों में अपनापन और मिठास बनाए रखते थे। आज भी हाथ से लिखा एक सच्चा पत्र दिल को छू जाता है। इसी विषय में कार्यक्रम में और बात करेंगे। फिलहाल सुनते हैं गीत फिल्म ब्रह्मास्त्र से। स्वर अरिजीत सिंह के हैं, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

पत्र यानी चिट्ठी के महत्व पर हम बात कर रहे हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र और शुभकामना पत्र। व्यक्तिगत पत्र परिवार और मित्रों को लिखे जाते हैं, जिनमें प्यार और सम्मान झलकता है। आवेदन पत्र किसी सहायता या काम के लिए लिखे जाते हैं। पत्र लेखन से हमारी भाषा, सोच और अभिव्यक्ति बेहतर होती है। पत्र हमेशा सरल, स्पष्ट और विनम्र भाषा में लिखना चाहिए। ये एक सुंदर और उपयोगी कला मानी जाती है। और अब सुनेंगे गीत मंच म्यूजिक और साशा के स्वर में फिल्म सिंग इज ब्लिंग से। गीत लिखा मंच म्यूजिक रफ्तार और बिग ढिल्लों ने, संगीतकार मंच म्यूजिक।

मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से

0: श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आज मोबाइल और इंटरनेट का समय है जहां संदेश तुरंत भेज दिए जाते हैं, फिर भी हाथ से लिखा पत्र आज भी खास महसूस होता है क्योंकि उससे सच्ची भावना और अपनापन महसूस होता है। पुरानी चिट्ठियां यादों का खजाना बन जाती हैं और पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, इसलिए हमें पत्र लिखने की आदत बनाए रखनी चाहिए। एक छोटा सा पत्र भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आइए पत्र लेखन की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाएं और सुनते हैं अभी ये गीत फिल्म शेरशाह से, स्वर जुबिन नौटियाल और असीस कौर के हैं। गीतकार तनिष्क बागची, संगीतकार तनिष्क बागची।

इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज का सुरमई सवेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी नीरजा, आपको मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा, यह आकाशवाणी भोपाल है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार पुष्पा पागधारे के स्वर में गजल।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे कलाकार पुष्पा पागधारे के स्वर में गजल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं परिचर्चा। विषय है कहानी लेखन में स्वरूप और संवेदना। प्रतिभागी डॉक्टर गोविंद मिश्रा शशांक और डॉक्टर उर्मिला शिरीश।
1: नमस्कार, शब्द सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी लेखन में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोविंद मिश्र और श्री शशांक जी। आप दोनों का हार्दिक

0: एक स्वागत है
1: आपका भी स्वागत।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी लेखन की जब भी बात चलती है तो उसकी स्वरूप संरचना कथ्य भाषा कला तमाम सारी बिंदुओं पर बातचीत की जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज जो होती है कहानी में जिसकी तलाश हमेशा रहती है और पाठकों को या श्रोताओं को बांधती है वो होती है संवेदना। और कहानी का मतलब ही है कि कहानी अपनी संवेदना के आधार पर पाठकों के हृदय को छू ले। तो मैं गोविंद जी आपसे जानना चाहती हूँ कि कहानी की जो संरचना है उसका जो स्वरूप है और संवेदना का क्या अंतर संबंध आप देखते हैं?
2: देखिए, ये थोड़ा बहुत तो अलग अलग लेखकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि संवेदना वो चीज़ है जो धड़कती है कहानी में, और स्वरूप उसका वो है जो दिखता है बाहर से। कुछ कुछ कह लीजिए कि आत्मा या शरीर जैसा संबंध। अब अगर स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो पाठकों तक नहीं पहुँचेगी, वो भी ज़रूरी है। और अगर जो सिर्फ शैली और दिखाई दे रहा है उसी पर ध्यान देते हैं तो सवाल होता है कि कहानी लिखी क्यों गई, कहने की जो बात दूसरी है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से ज़रूरी होती हैं। जहाँ तक मेरी अपनी रचना प्रक्रिया है, मैं कभी इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर पाता। जिस वक्त में कहानी रूप लेती है तो अलग से कोई शैली तय नहीं होती। वो कितनी तीव्रता से संवेदना आ रही है वो अपने आप तय करती है कि उसका क्या स्वरूप होगा, क्या शैली लेंगे। यहाँ तक कि शैली भी अलग अलग बदल जाती हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी वर्णांजलि की शैली एकदम अलग किस्म की है, और अभी जो मैं लिख रहा हूँ कहानी उसमें चूँकि दोनों का पक्ष सही मुझे नज़र आता है तो एक ऐसी शैली चाहिए जिसमें दोनों पात्र ऊपर उठें। इसमें कोई मतलब कहा नहीं जाए, लेकिन होते दोनों महत्वपूर्ण हैं, और मेरा ख्याल है हर लेखक थोड़ा सजग इस बात को लेके होता है कि आखिर जो संवेदना मुझे झकझोर रही है वो अगर पूरी की पूरी ना सही तो अंशतः तो पाठक के अंदर उतरे ही, अर्थवर की बात नहीं होती, मतलब वो इमोशन पैशन या जो भी आप उसे कहें झंझनाहट वो तीव्रता वो उतरना चाहिए।
0: शशांक जी, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि कहानी मतलब शरीर और आत्मा की बात, जैसे संवेदना और स्वरूप बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष जिसको हम कह सकते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पहले तो हम एक पूरी कहानी पर ही बात कर रहे हैं कि कहानी में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध क्या होता है, फिर आप लोगों की अपनी रचना प्रक्रिया पर भी मैं आऊँगी कि कैसे आप लोगों ने संवेदना और स्वरूप को साधा है।
1: सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि संवेदना और स्वरूप दो अलग अलग चीज़ें हैं
0: जी।
1: जब हम संवेदना की बात करते हैं तो एक कथाकार के सामने एक चुनौती की तरह पाठक की संवेदना उसके सामने होती है, मतलब पाठक की संवेदना अलग है और लेखक की संवेदना अलग है, और उस संवेदना से अपने बोध को आगे बढ़ाने का काम लेखक करता है
0: जी।
1: क्योंकि वो अंततः करता क्या है, वो अन्याय दमन और गैर बराबरी के खिलाफ कहानी को सामने रखता है और ऐसा रास्ता पाठक को दिखाता है जहाँ वो कुछ सोच सके कि जो स्थितियाँ हैं उसमें वो किस ओर खड़ा होगा। और संवेदना के भी कई स्तर मुझे लगता है होते हैं, और ख़ासतौर पे भारत को यदि आप देखें क्योंकि बड़ा विशाल प्रदेश है, और श्यामाचरण दुबे तो ये कहते हैं कि एक साथ कम से कम 50 समाज होते हैं और वो समाज हर 10 साल में बदलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी संवेदनाएँ अनेक स्तरों पर होती हैं और दूसरा कई दशकों में बदलती चली जाती हैं, और वो एक ऐसा प्रिज्मेटिक रूप धरती हैं जिसमें लिखने का आनंद ही लेखक उठा पाता है। अब रहा सवाल ये कि यदि संवेदना इतनी तीक्ष्ण है तो इस पर हमें थोड़ा सा रुक कर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 वर्षों के ही मोटा मोटा हम हिस्सा ले लें, और मुझे लगता है कि सूचनाएं सबसे ज़्यादा हमारे पास आई हैं, मीडिया के अनेक तंत्र हमारे पास आए हैं, रेडियो है आपके पास, टेलीविज़न।

0: है, नेट है और सोशल मीडिया के कई हिस्से हैं, और उसमें हम सभी महसूस करते हैं कि जितना हमें जानना है और जितना हमारी त्वरा को आक्रामकता जितनी होनी चाहिए उससे शताधिक आक्रामकता आज के समय में है। तो रुक कर हमें ये देखना होगा कि जन सामान्य की संवेदना में हमारा हिस्सा क्या, जैसा आज हमेशा सनसनीखेज चीज़ें आ रही हैं उस ओर हम झुकेंगे, या एक नैतिक दायित्व बोध के साथ उसमें हम रुक कर उसके साथ कुछ ऐसी सॉफ्ट, ऐसी कोमल बातों की तरफ उसे खींच के ले जाएंगे जो कम से कम उगते हुए सूर्य को या एक संवेदना माता और पिता, वो थोती संवेदना नहीं जो लोग आज लिख रहे हैं
1: उस तरह से
2: जी। नहीं शशांक भाई, इसमें वही बात है कि संवेदना पाठक की या कि लेखक की। लिख रहा है कहानी लेखक। मैं सिर्फ अपने ही संदर्भ में अपने ही तजुर्बे से बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी पात्र को या चरित्र को देखते हैं और वो अगर सिर्फ विशुद्ध काल्पनिक नहीं है, तो मैंने देखा कोई स्त्री पुरुष या दोनों को, तो उनकी क्या त्रासदी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भयंकर त्रासदी रहती है। अब उसमें जाने के लिए लेखक अपनी संवेदना से एक पुल तैयार करता है, ढूंढता है कि क्या है जो जो इन्हें पीड़ित कर रहा है। अब उस व्यक्ति के अंदर जो आप बात कर रहे थे, वो तो है ही कि अब आज के समय में बदली हुई संवेदना वहाँ मौजूद है। अब सवाल यह है कि लेखक उसको चुन पाए, ढूंढ पाए, फिर वैसे शब्द दे पाए, और ये ना रहे कि हमें कोई तर्क बुद्धि और इससे संवेदना से। मेरा आशय रहता है कि थोड़ा तर्क से अलग, दूर, बुद्धि से दूर, क्योंकि कहानी लिख रहे हैं आप, साहित्य लिख रहे हैं आप, तो रस संवेदना ये सिर्फ बुद्धि से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आए, उसकी त्रासदी क्या है, हम उसमें भिगो लेना चाहते हैं अपने पाठक को। तो इसलिए मुख्य रूप से आपकी बातों से ऐसा लगा कि पाठक की संवेदना मुख्य है, जिसमें हमें उसको इम्पोर्टेंस दे के लिखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इसमें लेखक की संवेदना ज़्यादा रोल प्ले करती है कि वो वहीं जाके उस चीज़ को उठाए जो उस व्यक्ति को व्यथित कर रही है, और उससे अपना तार जोड़ ले, और इस तरह जोड़े कि फिर उसे लांग करे तीसरा व्यक्ति, न लेखक न वो व्यक्ति जो पात्र है, तीसरा जो पाठक हो रहा है उसको भी वो वैसे ही छू ले। जहाँ ये तीनों एक रस हो जाते हैं, वहाँ कहानी बड़ी प्रभावी हो जाती है।
0: मुझे ऐसा महसूस होता है कि संवेदना में दरअसल हम एक ऐसा नया अछूता कोना अपने पाठक को देना चाहते हैं, क्योंकि हम यदि किसी एक विदेश की या किसी एक फैंटेसी में उसे ले जाएंगे, हो सकता है कि वो उससे अभ्यस्त ना हो। मगर जहाँ हम जाते हैं और चिरपरिचित जगहों पर ले जाकर ये कहते हैं कि ये जगह है जो हमारे एक मानवीय संवेदना होने के कारण हमने उसे छोड़ दिया है। मैं अभी जानबूझकर पिछले 2 दशकों की कहानियाँ लेता हूँ,
1: जी।
0: उसमें आख्यानकार या नैरेटर जो स्वतः ही कहानीकार है, उसके हाथ में नियंत्रण में कहानी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि चरित्र, जैसा कि आपने कहा है, जो आज की सबसे बड़ी कहानी की चीज है, जहाँ मांग
2: है, इसलिए कि उसमें रह जाता है कि वो शैली पर या स्वरूप पर ज्यादा जोर देने लगता है।
0: जी हाँ, वर्णन उसके पास,
1: भाषा पर
0: वर्णन इतना अधिक होता है,
2: इस वजह से हो कि हम ऐसी विलक्षणता पैदा कर रहे हैं,
0: जैसे
2: शैली पर हमारे उदय प्रकाश,
0: जैसे कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी अब नहीं मिलती है। मुझे ये भी लगता है कि जब भूगोल, स्थान और समय काल, इन तीनों को मिला दें तो संवेदना का बदलाव होता था। आज से हम 20 साल पहले जिन चीज़ों से प्रभावित होते थे,
2: बदलाव होता है तो वो पात्र में दिखाई देता है। सवाल ले कि लेखक भी ऐसा हो कि उसी ढंग से ना देखे, उसी उस तरीके से। अब जैसे मैं अभी जो कहानी लिख रहा हूँ, परेशानी उसमें ये है कि एक पिता और पुत्री है। पुत्री नौकरी बड़ी अच्छी छोड़ करके, इस वजह से कि पिता को सेवा करने को कोई नहीं है, उसे नौकरों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता,
0: जी।
2: वो आ जाती है। पिता दुखी है कि ये अच्छी नौकरी छोड़ करके सर्वेंट मेरी बनी हुई है। दोनों अपनी पक्ष में बिल्कुल सही हैं। अब ये आज की संवेदना है कि वो इतनी माँ बाप के लिए डिवोट

0: रिलेटेड है, माँ बाप उपेक्षित होते हैं, रोज अखबार में हम पढ़ते हैं क्या क्या उनके साथ हो रहा है, तो वो अपने ढंग से सही कर रहे हैं।
1: हमारे से बिल्कुल उल्टा है, मैं इस बात को करूँगा। और मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो उर्मिला शिरीष हैं और बहुत बड़ी लेखिका हैं, इनकी मैं दो कहानियों की जिक्र आपसे करूँगा, एक चीक है और उसका अपना रास्ता। इसका विश्लेषण तो भी स्वयं करेंगी, बट जिस बात को आपने कहा है कि माता पिता को मिलना चाहिए, इन दोनों ही कहानियों में, एक में जिसके साथ बलात्कार हुआ है और एक जो अपने फैशन परेड के लिए अपने को तैयार करती है, तो सारा घर का वातावरण आत्मीय होते हुए भी दरअसल ये दोनों हिस्से में उस स्त्री को कमज़ोर करने के लिए सामने आता है। तो ये संवेदना है, मगर इस संवेदना के विविध आयाम हैं, और जो जितना बड़ा आख्यानकार होगा उसमें वो उतनी अधिक चीज़ें लेकर आएगा।
0: मेरे ख्याल में इसमें शशांक भाई ये तय करना चाहिए कि लेखक और लेखक की अपनी च्वाइस होती है, उसका उसको अधिकार है कि वो संवेदना को ज़्यादा महत्व देता है या स्वरूप को। अगर शैली लेकर आप चलते हो तो आपके हाथ से वो संवेदना छूट जाएगी, अगर बहुत संवेदना लेकर चलते हो तो शायद अति भावुकता वाली भी बात आ जाएगी। तो दोनों का कहीं एक अंतर गुम्फन होना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो तब तक होता है जब तक आप उस पात्र से सटे सटे चलते हो जिस पर आप लिख रहे हो। मुझे तो इस चीज़ ने बड़ी मदद की कि जब भी मैं ऐसे स्थल पर पहुंचता हूं कि मुझे परेशानी है कि मैं किधर ले जाऊं कहानी को, तो उस पात्र को देखो, उसकी ज़िंदगी को देखो और एग्जैक्टली उसके जितना करीब से करीब गुजरो, तो वो चीज़ दूर बैठे एक पाठक पर भी उतरती है, क्योंकि जो आप कह रहे थे कि वो आज की संवेदना सिर्फ मेरी और
2: शशांक जी जैसे गोविंद जी बात अभी आज की संवेदना की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आज की संवेदना या पिछले बहुत 30-40 दशक या उसके पीछे हम जाते हैं, या प्रेमचंद से शुरू करते हैं, पूरा एक कहानी का पूरा एक समय हमारे सामने है प्रेमचंद से लेकर आज तक, और कहानियों के जो विभिन्न आंदोलन जो हुए हैं, और निश्चय ही उसमें भाषा में बदलाव आया, शिल्प में आया, शैली में आया, सारी चीज़ें आईं, विचार कहीं हावी रहा, कहीं कोई दूसरी चीज़ हावी रही, लेकिन मूलतः हमेशा जो कहानी है वो संवेदना की ही मांग करती है। तो मैं अब आपके आप इतने बड़े कथाकार हैं और आपकी रचना प्रक्रिया पर आती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही अपनी पीढ़ियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समकालीन भी है, तो आपके माध्यम से भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कहानी लिखते हैं तो दोनों चीज़ों को साथ में साधते हैं, या जैसे आपने पाठक की बात की कि पाठक की संवेदना अलग और लेखक की संवेदना अलग, तो क्या अनकॉन्शियस माइंड में या सोचकर पाठक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से कहानी लिखते हैं?
1: देखिए, जब आप लंबे समय तक लिखते हैं
2: जी,
1: तो आपकी शैली
2: जी
1: और आपके कहानी का स्थापत्य
2: जी
1: धीरे धीरे एक रूप लेता है
2: जी,
1: जो दूसरे लेखक से अलग होता है। आज आप नाम हटा दें तो बड़े लेखकों की कहानियाँ उनके नाम और शीर्षक हटाने पर भी पाई जा सकती हैं कि ये इसकी लिखी हुई है। निर्मल वर्मा का नाम हटा दें और उनकी कहानी का जो आप हिस्सा पढ़ें तो उसका जो रसायन है वो तैयार किया हुआ निर्मल वर्मा का है। मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में सदैव एक तरफ बहुत अधिक कला के साथ लिखी गई कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सादे ढंग से कथ्य को लेकर आगे बढ़ने वाली कहानी है। जैसे कि मान लीजिए अमरकांत हैं, वो मित्र मिलन, डिप्टी कलेक्ट्रीस जैसी कहानियां लिखते हैं और बहुत सादे ढंग से है, और एक ऐसा करेक्टर आपके सामने खड़ा कर देते हैं। इसी तरह मैंने कृष्णा सोपती का नाम लिया था, तो उनकी आप ए लड़की पढ़ें या मित्र उमर जानी पढ़ें, आप नाम हटा दें तो अमरकांत अलग होंगे और ये
2: कृष्णा सोपती अलग।
1: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने लेखन में भाषा, शैली और कथ्य का चुनाव भी, ऐसा नहीं है कि हर तरह के कथ्य हम चुन लेते हैं। हमारे पास जिंदगी के हजारों कहानियां पड़ी हुई हैं, मगर आपके इन तीनों का जो बहुत अच्छी बात गोविंद जी ने कहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जेम्स जॉयस ने लिखा कि जहाँ बहुत अधिक भाषा शैली की बात होती है वहाँ मुझे भूल जाया जाता है। और अपने यहाँ रघुवीर साहब कहते हैं कि कला कला, जहाँ बहुत कला होगी वहाँ कला नहीं होगी। तो ये बैलेंस होगा

0: तभी होगा। तो अब आप यदि 20 सालों में आप देखें तो जैसे चंदन पांडे की भूलना या सुनो कहानियां है, और मनोज पांडे ने जैसे सोने का सुअर और शहतूत कहानी लिखी है, अपने ही शहर के हैं मुकेश वर्मा, उनकी बहुत अच्छी कहानी है दिलों की एक आवाज़ ऊपर उठते हुए और ब्लैडी फूल, जहाँ आपके संवेदना को उन्होंने बताया है कि एक आदमी जो है 300 मंजिल से नीचे गिर रहा है और हम मंजिल में कैसे कैसे लोग करेक्टर बदल रहे हैं, तो ये एक आदमी उठाता
1: है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं
0: जी, मगर मैं दूसरों की बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: कहानी का नाम आप नहीं ले रहे हैं, घंटी कहानी है और भी बहुत अच्छी कोसा फल है, 19 साल का लड़का है।
0: अब जैसे मैं यहाँ पर जो बात हो रही है रचना प्रक्रिया की, तो मैंने भोपाल गैस त्रासदी के समय में एक बहुत लंबी कहानी लिखी, और बल्कि मैं यूं कहना चाहूँगा कि जब मैं उपन्यास उसको लिख रहा था और उस संवेदना को मैंने जिया है यहाँ पर, उसे जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं, मैं अक्सर ये मानकर चलता हूँ कि लेखक कहानी लिखता है अलग, कहानी पे बात करता अलग, और उसकी बात करने को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए ये, क्योंकि वो अपने को एक वकील की तरह प्लीट करता है, जिराय करता है, जो उस कहानी के अंतरंग में नहीं हो सकता। तो मैंने पाया कि सारे दस्तावेजों को मैंने पढ़कर एक किनारे किया, और दरअसल वो क्या चीज़ है जो एक बहुत बड़ा गुंडा आपको स्कूटर पे बैठा कर आपको 5 किलोमीटर छोड़ देता है और दूसरे दिन की अफवाह में वो आपका सामान लूट लेता है। ये इतना जटिल व्यक्तित्व तो है व्यक्ति का, और वे लोग जो प्रताड़ित हुए वो कटोरे हाथ में लेके एक भीख की तरह भी सामने आ रहे थे।
1: गोविंद जी की खुद एक कहानी है, फांस कहानी, जिसमें इसी तरह वो, के वो
2: है। वो ही तो है बात कि आप क्या देख करके कौन सी चीज शुरू करना चाहिए। आपने सवाल किया कि कहाँ से कहानी आप उठाते रहे,
1: आपके पास लंबा अनुभव है पूरा, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के साथ आप खड़े हुए, तो आपने निश्चय ही सारा यदि साहित्य उठा के देखा जाए, कहानियाँ उठा के देखी जाएं, तो आपकी कहानियों का मूल स्वर वहीं जाता है, जो बात आप आत्मा और शरीर
2: मतलब
1: की कर रहे थे।
2: मेरा संपर्क जैनेन्द्र अज्ञे और इन्होंने निर्मल वर्मा और इन लोगों से रहा, ये बात सही है कि सबकी और शायद बहुत ज़्यादा दिनों तक और गंभीरता से अपने को विस्खलित किए बिना जो कहानी या किसी भी साहित्य की विधा में लगा रहता है उसकी एक अपनी शैली विकसित होती है, क्योंकि 30-40 साल का समय है उसके पास, और वो कितनी अलग अलग किस्म की होती है। प्रेमचंद जी को लें तो उनके संपर्क में जो भी आता था कहानी उनकी हो जाती थी और जो दिखाई देता था उस पर, जैनेन्द्र जी एकदम अंदर चले जाते थे। जैनेन्द्र जी जेल कई बार गए, उन्होंने जेल का कभी जिक्र नहीं किया, जबकि प्रेमचंद कभी जेल में नहीं गए, उनमें आश्रम रहे। ये अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। मुझे जो इन सब में जो एक संतोष मिला वो शैलेश मटियानी की कहानियों में मिला। उनके यहाँ ये है कि अंदर के जगत का भी उतना ही चित्रण है और बाहर का भी है। निर्मल वर्मा में बाहर का कम है, जैनेन्द्र जी में अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, इस तरह प्रेमचंद में अंदर का नहीं है, प्रेम की कहानी उनके यहाँ मुश्किल से मिलेगी। लेकिन ये जो शैलेश मटियानी, इसलिए मैंने एक जगह कहा भी था, लिखा भी है मैंने उस पर, कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र का अद्भुत मिश्रण है शैलेश मटियानी, उनकी प्रेत मुक्ति, अर्धांगिनी, महमूद, जिसमें मुस्लिम परिवेश में वो व्यक्ति बुनियादी तौर पर जो ब्राह्मण था वो कैसे मुस्लिम परिवेश में घुस जाता है और वैसा प्रामाणिक तस्वीर पेश करता है। तो ये वही होता है कि दूसरे की यातना और संवेदना से आप अपने को मिला दिए। जहाँ तक मेरी, आपने कहा था तो बात कर ही चुका हूँ रचना प्रक्रिया पर, मुझे दर्द है जो खींचता है, दुख। तो जब तक किसी पात्र में मुझे वो दुख नहीं दिखाई देता कहानी नहीं बनती, और मेरी कहानियाँ काल्पनिक नहीं हुई। अब उनसे साथ संपर्क बना बना के फिर उसके दुख की जड़ तक जाने की कोशिश करना और उससे फिर कहानी लिखना, और वो अपने आप अपना शिल्प तय करके अलग आती, मुझे कोई उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता, सिर्फ शिल्प

0: के लिए आग्रह से या सिर्फ विषय तय करके कि मुझे इसी पर लिखना है, मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी। हमेशा बाहर से कहानी आई तो यथार्थ भी उसमें आ गया अपने आप।
1: शशांक जी, अभी आपकी एक किताब आई थी कहानी के पास, और कहानी को लेकर आपने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें उठाई हैं, अपने अनुभव और दूसरे कहानीकारों को लिया, रचनाकारों को लिया, और कहानी की शुरुआत से लेकर बाद में चाहे नामवर सिंह जी हों, कमलेश्वर हों, गोविंद जी हों, आप हैं, या बीच के तमाम नाम मैं छोड़ रही हूँ, कि उन्होंने कहानी के तमाम तत्वों पर बात की है। तो क्या ये जो आलोचना है, आलोचक की एक दृष्टि है, उसने क्या कहानी के स्वरूप और संवेदना में कहीं कोई इस तरह की चीज़ वो की जिससे कि हमारी कहानी की जो मूलतः प्रवृत्ति या प्रकृति कही जाती है उसको कहीं क्षति पहुंची है क्या?
2: देखिए, मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था डॉक्टर धनंजय वर्मा पे जी। उसका शीर्षक ही था कि आलोचना सभी चाहते हैं, आलोचक नहीं
1: जी।
2: क्यों? क्योंकि हम अपनी रचना पर क्या प्रकाशमान भासमान हो वो तो चाहते हैं, मगर अंदर क्या कमियां हैं वो कम लोग चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करते हुए हिंदी साहित्य में रिव्यू, समीक्षा की बजाय परिचय और एक कॉलम का अखबारों में, किताबों में, मैगजीनों में होता है, मगर जिसने श्रम पूर्वक कहानी पर चर्चा करनी हो ये होना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदी में लोगों ने जो आलोचना की है उसके टूल्स जो हैं एक तो विदेशी हैं और वो कविता के टूल्स हैं जो कहानी पे लाए जा रहे हैं, खासतौर पर नामवर सिंह जी पे ये आरोप लगता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि क्या प्रतिमानों का होना जरूरी है? जब तक अच्छी रचना नहीं होगी तो प्रतिमान कहाँ से बनेंगे?
1: बिल्कुल सही।
2: और दूसरा, यदि प्रतिमान नहीं है तो आप एक वेगवान घोड़ों को कैसे आप छोड़ देंगे? मगर ऐसा नहीं है कि हिंदी में आलोचना नहीं है। यदि आप देखें तो देवी शंकर अवस्थी, जिनकी इत्तेफाक से किताब का नाम ही है हिंदी कहानी स्वरूप पर संवेदना, ये उनकी किताब का नाम है। और इसी तरह जो यदि आप देखें कि चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और आपके पास ऐसे कई कहानियों पर लिखने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 30 साल पहले कहानीकारों ने कहानी पर ज़्यादा विचार किया।
1: हाँ।
2: असगर वजाहत ने विचार किया, कमलेश्वर ने विचार किया, राजेंद्र यादव ने किया, और जब आप वहाँ खड़े होते हैं इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक यदि सबकी रीडर्स बनाई जाएँ, कहानी की आलोचना का सार करें, तो मुक्तिबोध से यदि आप शुरू करें तो आपके पास बात करने के लिए बहुत है, और सचेत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर अभी लिखी जा रही कहानियों में लेखक किससे अच्छा लिखा है और किसमें क्या होना चाहिए। अब जैसे राजेंद्र यादव की बात मैं सहमत हूँ, एक बहुत लंबा लेख था उसमें मुझे एक चीज़ लगती थी कि कहानी से कल्पना शक्ति को बाहर कर दिया गया है और वर्णन की अधिकता से अपठनीयता बढ़ी है।
0: तो पत्रकारिता की तरफ पटक देना होगा। हाँ। कहानी को, कल्पना को एकदम
2: तो
0: आप वो कर दें तो साहित्य क्या है?
2: तो कल्पना तो बिल्कुल ही नहीं है अब, और वर्णन इतना लंबा लंबा होता है। और एक अभी मैं किसी गोष्ठी में था जिसमें लेखिका ये बता रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत की है।
1: हाँ।
2: और इसमें मुझे डॉक्टर ने मदद की और गूगल से ये मदद मिली।
1: अच्छा।
2: तो मैंने कहा कि एक पाठक को गूगल से मतलब नहीं है।
1: सही बात।
2: उस मरती जा रही स्त्री का जो किसी अन्य से प्रेम है वो आखिरकार उसे कहाँ ले गया? उसमें गूगल मदद नहीं करता, उसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व मदद करता है, लिखने की उसकी प्रतिभा। हाँ। वो करती है।
0: एक बात उर्मिला जी मेरे दिमाग में आई कि स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं, स्वरूप में एक जो दिखता है कहानी का उसमें भाषा भी बड़ी चीज़ है, और भाषा के लिए भी वही बात आती है कि कभी कभी जब भाषा के लिए आग्रह अतिरेक में चला जाता है तो वो संवेदना को
1: करता।
0: हाँ, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके मित्र जयश्री राय हैं, बहुत अच्छी भाषा है उनके पास, लेकिन उसका मोह इतना ज्यादा आ जाता है कहानियों में कि वो बहुत महसूस करके लिखती भी हैं कि जितना जो महसूस किया गया है उस पैनेपन से नहीं आता है और पाठक भाषा में उलझ के रह जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारी संवेदनात्मक तीव्रता मैं महसूस कर रहा हूँ एक कहानी को लेकर के, तो उसमें

0: क्लिष्ट भाषा ही आए, कोई जरूरी नहीं, वो सरल भाषा में भी आप ऐसी चीजें कह सकते हैं, बशर्ते संवेदनात्मक वेग हो, वो अपने आप वो भाषा तय कर देगा।
1: यानी संवेदना के साथ भाषा का उस तरह होना जरूरी है।
2: देखिए अभी हम लोगों ने बातचीत की, उसमें अस्पष्ट रूप से बात निश्चित आई है कि सभी चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है,
1: कहानी तो कुल मिला के बनती है।
2: और मेरी एक छोटी सी कहानी जिसमें मैंने ये कहा है कि वो एक गोभी पत्ते गोभी को एक एक चीज निकाल रहा है, आलोचक ये कला है, ये कत है, ये बाद में डंठल छोटा सा बन जाता है। तो हमको डंठल की जरूरत नहीं है, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि एक बड़ा लेखक अपने चरित्रों और अपने भाषा और उसको कैसे वो व्यवहारगत सामने लाता है। आज क्यों चेखा को हम
1: बार बार, सच बात है,
2: केवल इसलिए कि उसमें एक ऐसी चीज है मानवीय सेंसिबिलिटी की इतनी अंदर तक जाने की कि वो स्त्री मरी हुई है, वो उसको लेके ढो रहा है और वो घोड़े से बात कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी बातचीत करने के लिए कोई आदमी नहीं है। आज की तारीख में इतना सब कुछ है, आप दिन में 1000 व्हाट्सएप करते हैं, मगर दरअसल आपकी बातचीत कुछ नहीं सुन रहा है, आपको एक घोड़े की जरूरत है जो आपको अंदर तक हिला कर रख दे। और कहानी में ये ताकत है जो आपको स्तब्ध और विस्मय करे, और इस ताकत को निश्चित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत।
1: सही बात है, और ये विषय इतना बड़ा है और इस पर घंटों लंबी चर्चा की जा सकती है, पूरा एक वैश्विक परिवेश है, हमारा हिंदी का भी है, और दो वरिष्ठ कथाकार हमारे बीच हैं जिन्होंने आज कहानी की संवेदना और स्वरूप पर इतनी अच्छी बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद और मिला
0: नमस्कार।
3: कार्यक्रम शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे कहानी लेखन में स्वरूप और संवेदना पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर गोविंद मिश्रा शशांक और डॉक्टर उर्मिला शिरीष। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे भिंड जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। जिले में जल संरक्षण के लिए पुराने जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई की जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मेहगांव द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक वन खंडेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन

तालाब पर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस मौके पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे भी विभिन्न स्थानों पर टांगे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रस्फुटन समिति सदस्य, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिकों एवं CMC LDP विद्यार्थियों की सहभागिता रही। जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का कार्य प्रगति पर है। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने कल भिंड एवं मुरैना जिलों के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खरीदी एवं तौल तथा अन्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर छाया, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भिंड जिले में बीते 5 मई से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार विकासखंड महगांव मुख्यालय पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। इस दौरान 5 जून तक शिविर के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में कबड्डी एवं वॉलीबॉल खेलों के साथ साथ योग और व्यायाम कर खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में कुपोषण मुक्त भिंड बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों पर क्रमानुसार कार्यवाही कर लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी CDPO को प्रतिदिन फील्ड मॉनिटरिंग करने और सुपरवाइजर को साथ ले जाने के आदेश दिए। सुपरवाइजरों को भी निर्देशित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर रोजाना पहुंचें और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी लें और रजिस्टर में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में जन्मे हर बच्चे को डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके लिए विशेष कैंप आयोजित कर आधार बनवाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही MM बॉस्क की एंट्री 100% पूर्ण करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने मातृवंदन योजना की विस्तृत समीक्षा की तथा सेम मेम बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैठक के अंत में कहा कि पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना सभी का प्राथमिक दायित्व है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए टीम वर्क जरूरी है। आप सभी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, समस्त CEO जनपद पंचायतों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर गहन समीक्षा की और पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, जिसमें विशेष रूप से जलगंगा संवर्धन अभियान 2025-26 और 2026-27 के तहत चल रहे खेत तालाब निर्माण पर जोर दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भोपाल स्थित निवास पर कल भिंड कोर कमेटी की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में भिंड जिले के समग्र विकास कार्यों, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तारपूर्वक समीक्षा और विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, विधायक अमरीश शर्मा, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कामना सिंह भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, संभाग प्रभारी अभय प्रताप, जिला प्रभारी अमीर सिंह पटेल, शैलेंद्र बरुआ एवं नगरपालिका अध्यक्ष ममता भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर।

नमस्कार, कार्यक्रम गीत सागर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नीरजा। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि आपका प्यार और साथ हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आशा है आज का ये सफ़र भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे निश्चित समय पर काम पूरा करने की आदत के विषय में, क्योंकि समय हमारे जीवन की

सबसे कीमती चीज है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। काम को टालने से तनाव और परेशानी बढ़ती है, इसलिए हर काम की सही योजना बनाना जरूरी है। समय पर पूरा किया गया काम आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये आदत हमें सफल और जिम्मेदार बनाती है। और चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

समय पर काम पूरा करने के लिए अनुशासन ज़रूरी है। सुबह उठकर अपने ज़रूरी कामों की सूची बनाइए। पहले महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की कोशिश करें।

मोबाइल और बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना होता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करना आसान हो जाता है। नियमित मेहनत और अच्छी आदतें सफलता दिलाती हैं। यही समय प्रबंधन की सबसे बड़ी पहचान है। सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि काम बाद में कर लेंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आलस में बदल जाती है। समय पर किया गया छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ी सफलता देता है, इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ज़रूरी है। हमें अपने दिन का सही विभाजन करना चाहिए। पढ़ाई, काम और आराम सभी के लिए निश्चित समय होना चाहिए। जब हम समय के अनुसार चलते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है।

दोस्तों, क्यों ना हम समय का सही उपयोग करने का संकल्प लें, हर काम को तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जो समय के साथ चलता है वही सफलता पाता है।

मेहनत, अनुशासन और लगन हमें आगे बढ़ाते हैं। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। आइए समय का सम्मान करें और जीवन को बेहतर बनाएं।

आज के कार्यक्रम में हमने बात की निश्चित समय पर काम पूरा करने की आदत के बारे में। उम्मीद है आपको आज का गीत सागर कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज बस इतना ही। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी नीरजा, आपको मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ख्याल गायन, राग है अहीर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ख्याल गायन। राग था अहीर भैरव। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। छठवां राज्य वित्त आयोग कल से ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बैठकों में ब्रिक्स समूह के पांच सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार एवं तकनीक आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन शाम को भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति होगी। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़ और के क्षेत्र में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोता और रिश्ते तो बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन जीवन में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बहुत अलग और ख़ास होते हैं। ये रिश्ते शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते, बस एहसास किए जा सकते हैं। रिश्ते हमें संरक्षित करते हैं, हमारा संबल और मनोबल होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी में एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको देख कर हमारे मुँह से अनायास ही निकल जाता है, कुछ ख़ास और अनूठा है तुमसे मेरा रिश्ता। ये ऐसा रिश्ता होता है जो समय की कसौटी पर तपकर रूहानी बन जाता है। चाहे बचपन की सहेली हो, पति पत्नी हो, माँ बेटी हो, ननंद भाभी हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसका एहसास गहरा होता है, जिनसे हम दिल की बातें कर पाते हैं।

0: तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़ास है तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड जैसा कि आप जानते हैं 0755। तो हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल का। हेलो,
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: तुलसी राम व्यास बोल रहा हूँ मालेगांव से।
0: तुलसी राम जी, जो आज का विषय है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, वो है कुछ खास रिश्ते, कुछ अनूठे रिश्ते। जो आपकी ज़िंदगी में कोई हो तो आप हमें बताएं।
1: खास रिश्ते?
0: हाँ, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो, जिनसे आप दिल की बातें करते हों, ऐसा।
1: देखो रिश्ते तो अपने वाले के जो होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं,
0: जी
1: लेकिन अपने जो दोस्त के होते हैं, दोस्त,
0: जी
1: ये रिश्ता मैं अच्छा मानता हूँ। मेरा एक दोस्त है
0: जी जी
1: मच में,
0: जी
1: वो उनका नाम आरसी जैन,
0: जी हाँ
1: वो रिटायर पोस्ट मास्टर है, उनकी उम्र है 82।
0: अरे वाह,
1: 82 उम्र है, लेकिन आज भी वो आकाशवाणी से इतने जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी का और उनका रिश्ता इतना पक्का है
0: जी
1: कि बहुत ही पक्का है। वो उनके पास एक मर्फी रेडियो है, मर्फी,
0: जी जी
1: मर्फी रेडियो बहुत पुराना रेडियो है, वो आज भी उसको चलाते हैं, उसको अपने दिल से लगा रखते हैं उसके गानों को, पुराने गानों को।
0: तो ऐसे खास दोस्त जो आपके हैं, आप उनसे अपने दिल की बातें करते हैं या आपकी मेंटल मैचिंग है उनसे? जी
1: बिल्कुल, हम मैं तो उनकी दिल की बात करता हूँ। मेरे
0: जी
1: लिए तो मेरा दोस्त का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, परिवार से भी अच्छा है।
0: ऐसा क्या खास था उनमें कि जो आपको इतने करीब ले आया उनके?
1: उनमें ये खासियत थी, वो तो है जैन परिवार से
0: जी जी
1: और मैं हूँ ब्राह्मण परिवार से,
0: जी जी
1: ये दोनों का रिश्ता उन्होंने इतना रखा है कि क्षमा, कोई भी गलती हुई है
0: जी जी
1: तो वो मेरी क्षमा कर देते हैं।
0: देखिए, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं इनमें कोई जात पात ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ होता
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: तो एक
1: सही,
0: अनुभूति, एक
1: सही बात बोली
0: खास
1: आपने,
0: एहसास, है ना?
1: आपने बहुत सही बात बोली।
0: जी
1: दिल के रिश्ते होते हैं,
0: जी
1: रिश्ते क्या है कि आजकल रिश्ते कमजोर हो गए मेरे।
0: जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी हैं जो अपन को सुकून देते हैं।
1: अपन बोलते हैं कि जो अपना पड़ोसी होता है वो परिवार होता है,
0: जी,
1: लेकिन आज परिवार में ही पड़ोसी बन गए।
0: बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमने जाना कि आपके पास भी कोई ख़ास है जिससे आप दिल की बातें करते हैं। फ़ोन करने
1: बिल्कुल,
0: के
1: मेरे
0: लिए
1: लिए आरसी जैन है,
0: जी जी
1: हिमाचल में रहते हो
0: जी जी
1: और रिटायर पोस्टमास्टर, 82 साल हो।
0: चलिए, इतना लंबा
1: ओके,
0: रिश्ता यूं ही
1: आपका
0: बरकरार रहे।
1: शुभ
0: जी,
1: शुभ नाम
0: मैं अनुराधा बोल रही हूँ
1: बोल।
0: जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी
0: जी,
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम। और हम आपको बता दें, हमारे आज का विषय है एक कोई खास रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में किसी का होता है, जो हमारे पास होता है। तो क्या कुछ खास है आपके पास ऐसा कोई?
1: जी हाँ,
0: सबसे पहले
1: मेरा
0: आप
1: नाम
0: मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ। किशन घी वाला
0: किशन जी,
1: जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: घी समझते हैं ना,
0: जी
1: जो
0: जी
1: देसी घी
0: बिल्कुल।
1: जिसके परांठे बनाते हैं आप,
0: हाँ,
1: दमोह
0: तो कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: से।
0: दमोह से।
1: दमोह मालूम है ना
0: जी जी बिल्कुल, जानते हैं।
1: जी। आप कौन बोल रहे हैं
0: मैं
1: यहाँ?
0: अनुराधा बोल रही हूँ और कार्यक्रम है
1: हाँ
0: बात आपकी, गीत हमारे।
1: हाँ जी, जो विषय आपने पूछा है कि
0: जी
1: कोई ऐसा बताएं जो दिल से जुड़ जाता है, कुछ ऐसा
0: जी
1: पूछा
0: हाँ,
1: ना आपने।
0: चाहे कोई वो बहन हो, भाई हो,
1: हाँ
0: दोस्त हो, माँ बाप हो,
1: हाँ
0: कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत करीब हों,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई खास होना बहुत ज़रूरी भी होता है ना?
1: हाँ हाँ इसमें जी मेरा ये कहना है
0: जी
1: कि अपने आप ही खास बन जाते हैं जीवन में, जीते जीते ना, जो
0: जी
1: आप कह
0: जी
1: रहे हैं ना कि
0: जी
1: खास होना जरूरी होता है, वो अपने आप बन ही जाते हैं खास। मैं चाहे तो अपने मित्र का नाम लूं,
0: जी
1: चाहे तो अपने बेटे का नाम लूं, चाहे तो अपने बहनोई का नाम लूं,
0: जी
1: कुछ ऐसे एक दो नहीं, तीन चार आ गए हैं मेरी जिंदगी में जो
0: जी
1: कि विशेष हो गए हैं, खास हो गए हैं, और जिनको हम हमेशा याद भी रखते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं कि
0: जी
1: जिनके कारण हम आज इस योग्य हैं कि एक समाज में अच्छी स्थिति में हैं, समाज में भी, व्यापार में भी, और साहित्य में भी थोड़ा
0: जी बिल्कुल
1: बहुत, तो एक जो अपना स्टेटस हमारा बन गया है, तो उसमें बहुत सारे दो चार पांच लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम, जिनके सहयोग से, जिनकी मित्रता से
0: जी
1: हम
0: जी
1: इस योग बने हुए हैं। अगर आप कहें तो किसी का नाम लूं।
0: बिल्कुल, आप यदि चाहें बोलना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि
1: जी,
0: ये रिश्ते
1: मेरा मित्र है
0: किसी
1: प्रमोद कुमार सेन, आपके भोपाल का ही है।
0: जी जी
1: वो मेरा जीवन से मेरे साथ पढ़ता रहा है, स्टार्टिंग से, प्राइमरी से,
0: चलिए
1: और आज मैं 77 ईयर्स का हूँ और वो भी 77 ईयर्स का, लेकिन हम लोग बराबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: देखिए ना,
1: समझ में
0: भरोसा
1: एक
0: है
1: दूसरे के पास
0: आपकी इस
1: पहुँचते।
0: दोस्ती में, कितना भरोसा है कि इतने लंबे वक्त से आप

0: हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ईश्वर से
1: ऐसा
0: कामना
1: बहुत
0: करते हैं कि
1: सुंदर
0: आप
1: है।
0: यूं ही आगे तक, जब तक सांसें हैं तब तक साथ रहिए, खुश रहिए, है ना।
1: जी जी
0: चलिए,
1: हाँ
0: धन्यवाद आपका, आपने कॉल किया।

0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज का विषय
1: धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि आज हमने विषय रखा है कुछ अनूठा और कुछ खास रिश्ता, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं, एक दो या तीन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो कुछ खास हैं हमारे लिए, जिनसे हम अपनी बातें करते हैं और जिनका होना ही हमारे लिए बहुत खास होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई है?
1: नहीं, ऐसा तो कोई नजदीकी तो नहीं है मैडम,
0: जी
1: पर ऐसे दोस्ती में है। मतलब दोस्त तो अगर ऐसे है,
0: जी
1: मतलब कि जो मतलब ऐसे है मतलब।
0: हाँ, जिनसे लगता है कि जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं या किसी समस्या में होते हैं, तो आप फ़ोन करके उनसे बात करके पूछ लेते हैं, या वो
1: हाँ
0: खुद
1: जी,
0: अपना समझ के बता देते हैं, उनसे कोई डर नहीं रहता कि ये फैला देंगे या इसका गलत यूज़ करेंगे।
1: हाँ जी, इसमें क्या है मैडम कि
0: जी
1: जैसे ऐसे लोग बहुत मतलब अब बिरले ही लोग होते हैं ऐसे कि जो मतलब अपने को समझ सकते हैं।
0: जी
1: हाँ, और मतलब समय आने पे वो अपना हाथ थामते हैं।
0: जी
1: मतलब कुछ मतलब संकट आता है तो मतलब वो अपने को दिलासा देते हैं, या
0: जी जी
1: फिर जो भी है कोई मदद करते हैं। तो ऐसे लोग जरा कम ही रहते हैं, पर यही अनुभव मतलब हमारे ऐसे है कि हम एक्चुअली ब्लाइंड है। तो
0: जी जी
1: हेलो,
0: जी जी सुन रही हैं आप, बताइए।
1: तो हमारे मतलब हम यहाँ आश्रम में रहते हैं पुणे में। तो
0: जी
1: अभी तक की लाइफ में जो जितने भी संकट आए बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे समय में बहुत कम ही लोगों ने हमारा मतलब साथ दिया है, मतलब या
0: जी
1: कम से कम हमारी बात शेयर की है, जो जो मतलब समझ सके हैं हम हमको ऐसी बात है।
0: चलिए, कोई तो
1: तो
0: है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जो आपको समय पर आपके साथ खड़ा होगा।
1: हाँ जी है ना,
0: जी, चलिए, आपसे बात
1: पर
0: करके बहुत अच्छा लगा, और आप यूं ही हमें कॉल करते रहें, धन्यवाद।
1: तो इसमें कोई गाना वगैरह है क्या मैडम जी?
0: जी, ये आज का कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारी, जिसमें हम एक विषय रखते हैं जिससे आपसे बात करते हैं। और
1: हेलो,
0: जी
1: एक सेकंड,
0: जी
1: इसमें तो ये कल हमको सुनने को मिलेगा ना?
0: जी आप कल सुन सकते हैं, आज जो रिकॉर्डिंग है कल इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे।

0: हेलो सजीव फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ जी, हेलो,
0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल
1: नमस्ते।
0: रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से।
0: जी

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की हमारे। कौन बोल रहे हैं?
0: जिला जिला मिर्जापुर का मतलब सभाकांत बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, एक बार फिर से धीरे बताइए।
0: हम जिला मिर्जापुर गांव नदौली से सभाकांत बोल रहे
1: शिवाकांत,
0: हैं। जी
1: शिवाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं। इसमें कार्यक्रम सुन रहे हैं, भूख बहुत ज्यादा है। मिर्जापुर
1: जिला कौन सा बताया आपने? मिर्जापुर जी। आपको हम बता दें कि आज का कार्यक्रम है बात आपकी की हमारे, और इसमें हमने विषय रखा है ऐसा कोई खास जो आपके बहुत पास हो और आप उनसे
0: मीडिया
1: बहुत।
0: अखबार का पंखा
1: जी,
0: बीमार जिंदगी में एक रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं है, एक रिश्ता है घूमने, माए बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता ज्यादा है हमारे यहाँ।
1: अरे बहुत अच्छी बात है। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन ऐसा होता है जो हम जिनसे बहुत अपने दिल की बातें शेयर कर लेते हैं।
0: जी, दोस्तों उसका रिश्ता हम लोग बनाए रखते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की थी हमारी। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मुन्ना के भट्ट पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से मुन्ना के भट्ट बोल रहे हैं, पलोहवाड़ा।
0: कितने दिनों बाद आपने फोन लगाया?
1: 1.5 महीना हो गया हूँ मैडम जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा, मुन्ना के भट्ट।
0: जी, तो हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ खास विषय पर। तो आज का जो विषय है वो है कोई ऐसा खास रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो और आप उनसे बात करते हैं अपने दिल की, अपने कभी समस्या हो तो उनसे बात करके आप मतलब शांत हो जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, या उनका होना आपके लिए बहुत खास होता है। ऐसा है कोई आपकी ज़िंदगी में रिश्ता?
1: जी मैडम जी, सबसे बड़ा रिश्ता तो दोस्तों का लगता है, दोस्त मामा।
0: रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, माँ बहन, भाई भतीजा,
1: जी
0: लेकिन आप कोई एक को ऐसा रहता है जो देख के लगता है कि हाँ ये मेरा ख़ास है, या हम उससे बात कर सकते हैं खुलकर, अपनी समस्याएं
1: जी
0: बता
1: दोस्ती
0: सकते हैं, या वो
1: दोस्ती
0: जी।
1: का रिश्ता लगता है मैडम जी सबसे अच्छा।
0: तो
1: हम
0: कोई है आपके पास? दोस्ती में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक ख़ास?
1: एक दो ऐसे रहते हैं, हृदय अजीज रहते हैं आत्मा
0: हाँ
1: के, जिनको
0: हाँ जिनसे लगता है खुश
1: सब
0: हो
1: कुछ।
0: जाता है,
1: जी
0: जिनका आने से ही मन खुश हो जाता है।
1: हाँ,
0: जी
1: जिनसे बात या बात करो या ना करो, उसका कहते हैं मिलन रहते
0: हाँ,
1: हैं वो तो।
0: दूरियाँ कितनी भी हों लेकिन आप जब उनसे बात करते हैं तो मन खुश हो जाता है, या
1: जी
0: हमारे बीच में भेदभाव नहीं रहता कि वो अमीर हैं हम गरीब हैं, या कोई भी किसी भी तरह की जो वो रहती है सीमा, वो नहीं रहती है ना।
1: जी
0: तो
1: ये तो
0: बताएं।
1: सब कुछ मैडम जी बचपन में होता है, अमीरी गरीबी तो कोई अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं रहता बचपन में, लेकिन बड़े हो जाते तब वहां दिखाने लगाता अमीरी गरीबी।
0: लेकिन फिर भी एक कोई तो रहता है ना आपके पास, होगा ऐसा कोई जो आपकी दिल
1: है
0: की
1: मैडम
0: बातों
1: जी,
0: को
1: मित्र है
0: समझे।
1: मित्र।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानी तली ये छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम।
0: राशिद भाई कैसे हैं?
1: एकदम सही एकदम सही। जब आप लोग आशीर्वाद में एकदम सही है।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: एकदम सही है। आप लोगों का आशीर्वाद है। गर्मी के सीजन का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया से रेडियो सुनते हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं।
0: आज हमने जो विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, उसमें है कुछ अनूठा और कोई ख़ास रिश्ता। जैसे कि हमारा रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे हम बहुत, जिसके पास होते हैं हम बहुत। और जी
1: भाई घर परिवार तो रहते ही है, पर बाकी आप लोग सब लोग हैं, आकाशवाणी है,
0: चलिए
1: लोग हैं सब, सभी तो खास हैं। तो
0: नहीं
1: लोग तो सब खास हैं हम लोगों के।
0: नहीं जब कभी हमें तकलीफ होती है तो वो हम उससे बात कर लेते हैं या उससे कोई राय ले लेते हैं या वो आकर हमारी बिना किसी शर्त के हमारी सहायता कर लेता है, ऐसा कुछ मैं पूछ रही थी आपसे।
1: हाँ जी बिल्कुल। जो परिवार के बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो उनका सानिध्य जो मिल जाता है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ है और ख़ास है, इससे पता चलता है। धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत
1: हेलो,
0: हमारे। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, सागर से बोल रहा हूँ, चंद्रेश को।
0: सागर से कितने दिनों बाद लगाया चंद्रेश जी?
1: दीदी मेरा तो अब क्या बताऊं, मैं तो हर 15 दिन में ट्राई करता हूं, लेकिन इस बार मैं ऐसा मानता हूं कि 1.5 महीने बाद लगा हुआ हुआ होगा मेरा मैसेज।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दीदी आप सबकी दुआएं हैं और आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं,
0: जी जी,
1: इतनी भीषण गर्मी में भी उन कार्यक्रमों को सुनकर एक सुखद एहसास और ठंडक महसूस हो रही है।
0: जी बहुत अच्छा चंद्रेश जी, आज हमने विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, कुछ
1: जी
0: ऐसे रिश्ते जो हमारे बहुत खास होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं?
1: देखिए
0: और
1: रिश्ते दीदी क्या है, रिश्ते हमारे बनाने से बनते हैं दीदी, मेरा ऐसा मानना है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर रिश्तों को अगर हम ज्यादा अहमियत देंगे तो ये मानिए दीदी जी के सामने वाला भी उतना ही हम लोग को अहमियत देगा,
0: जी
1: क्योंकि आज रिश्ते देखने में ऐसा आ रहा है दीदी कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए हो गए हैं दीदी अब।
0: रिश्ते बहुत हैं, दोस्त भी बहुत हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी को खुशी से भर देता है।
1: हाँ दीदी ऐसे तो देखिए मैं विगत करीब 50 या 55 वर्षों से रेडियो आज ही सुनता चला आ रहा हूँ।
0: जी
1: रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से जो हमारे रिश्ते बने हैं
0: जी
1: वो आज भी हम लोग के लिए बहुत यादगार हैं,
0: जी
1: मददगार हैं, और
0: जी
1: समय समय पर हमें जब कोई परेशानी कोई कठिनाइयां आती हैं तो
0: जी जी
1: श्रोताओं के द्वारा हम लोगों को जब वो मोटिवेट करते हैं, जब श्रोता हम लोगों के लिए, तो
0: जी जी
1: हम लोगों को एक अलग ऐसा एहसास नहीं हो पाता कि हम किसी कष्ट में हैं या किसी तकलीफ में हैं, तो श्रोताओं के द्वारा जो हम लोगों के लिए जो सांत्वना या जो दिलासा मिलती है और जो सलाह मिलती है वो
0: जी जी
1: हम लोग के लिए जीवन में एक बहुत कारगर सिद्ध होती है और एक अहमियत रखती है हम लोगों के लिए। तो श्रोता रेडियो से जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं
0: जी
1: उन श्रोताओं को मैं अहमियत ज्यादा दूंगा और उनसे बहुत कुछ हमें

0: सीखने की प्रेरणा मिलती है, होती है।
1: चंदीश
0: जितना
1: जी,
0: आपका
1: आपने हमसे बात करी और हमारे बहुत सारे श्रोता लाइन पर हैं, आप से हमारी फिर बात होगी। आपने आज इतनी अच्छी बात करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो।
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहा है?
1: मैं उपेंद्र चौधरी बात कर रहा था
0: जी। उपेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिवनी जिले से।
0: सिवनी से। तो हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय रखा है कुछ खास रिश्ते जो हमारे दिल के पास होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप बहुत खास मानते हैं?
1: मैडम जी, सबसे पहले तो रिश्ता होता है माँ का
0: जी।
1: उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा कि माँ आपकी हर बात को बहुत समझती है, अच्छे से जानती है।
1: जी
0: जी,
1: हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरतें पूरी करना माँ के यहाँ से रहता है, और वो माँ ही करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। छठवां राज्य वित्त आयोग कल से ग्वालियर और चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन शाम को भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तथा मालवा निमाड़ में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। आपकी पसंद के गीत हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म लम्हे से गीत सुनेंगे, लता मंगेशकर और ईला अरुण के स्वर में। गीतिका आनंद बख्शी ने, संगीतकार शिवहरी। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेरे सनम से। गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले ने, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश इस गीत के लिए आई है जयराज प्लॉट राजकोट से। श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुदाई से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से, श्रोता है राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण अलका याग्निक और सपना अवस्थी के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश में आई है देवरी भाटापारा से। श्रोता है गन्नू लाल, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और श्री गणेश। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हमराज से। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। फरमाइश हमें आई है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से, श्रोता हैं प्रभाकर और आरती। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ना उत्तेजना, ना शोर दिन रात, ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक जरूरी सूचना। संजय कुमार, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त आसूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदाय के बीच बैमन उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, वाहन रैली, कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक

0: स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।
1: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: श्रोतागण को मेरा सप्रेम नमस्कार। पंचतंत्र के मित्रभेद प्रकरण को आप सब सुन रहे हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संजीवक और पिंगलक की मित्रता को तोड़ने के लिए दमनक योजना बनाता है, जिसके अनुसार पिंगलक संजीवक से युद्ध ना करे और जंगल छोड़कर भाग जाए। दमनक संजीवक को टिट्टिब की कथा सुनाता है।
1: किसी समुद्र के किनारे टिटेरियों का एक जोड़ा निवास करता था। कुछ दिनों बाद टिट्टिबी ने गर्भ धारण किया। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा,
2: कांत, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अतः आप किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो निर्विघ्न हो और जहां पर मैं शांतिपूर्वक अपने अंडे दे सकूं।

0: प्रिय, हम समुद्र के किनारे इतने रमणीय स्थान पर रहते हैं, ये जगह हमारी परिचित है। तुम्हारे प्रसव के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान और क्या होगा? तुम्हें यहीं प्रसव करना चाहिए।
1: आपकी बात मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आया करता है, वो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान की खोज कीजिए, कहीं मेरे बच्चों को यहाँ कोई हानि हो जाए, फिर हम क्या करेंगे?
0: नहीं भद्रे, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है।
2: उस समुद्र का सामर्थ्य नहीं, वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए।
1: मैं जानती हूँ स्वामी, आप वीर हैं, परंतु समुद्र के समक्ष अपनी वीरता का परिचय दिखाना मूर्खता है।
0: इस तरह शंका करके तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रही हो प्रिय।
2: तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो, पराजय और तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग कर कायर शिशु को जन्म देकर यदि स्त्री स्वयं को पुत्रवती समझती है तो बांझ किसे कहेंगे?
3: टिप-टिप के अहंकार भरे वचन को सुनकर समुद्र ने सोचा, इस तुच्छ पक्षी को कितना अधिक घमंड है। ये भी है कि आकाश के गिरने की आशंका में टिटहरी अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है। वो सोचता है गिरते हुए आकाश को अपने पैरों से रोक लेगा। तो समुद्र ने उस टिटहरी को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके अंडों का अपहरण कर लिया। जब टिट्टिभी को प्रसव स्थान खाली मिला, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। अपने पति से बोली,
2: भद्रे क्या तुम मुझे कायर समझती हो? मेरे बुद्धि बल को देखो, अभी अपनी चोंच से इस पापी समुद्र को ही सोख लेता हूँ।
4: परंतु समुद्र के साथ तुम्हारी समता ही क्या है जो उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो? तुम्हारा उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपनी तथा शत्रु की शक्ति को जाने बिना ही जो युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो आग की ओर बढ़ने वाली पतंग की तरह आत्मविनाश का कार्य करता है।
2: नहीं प्रिय, नहीं, ऐसी बात ना कहो। जिनके पास उत्साह एवं विश्वास रूपी शक्ति है, वे शक्तिहीन होते हुए भी अपने शक्तिशाली शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। तुम देखना, मैं अपनी चोंच के द्वारा इस पापी समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर इसे शुष्क बना दूंगा।
4: हे कांत, 900 नदियों को लेकर गंगा जिससे सतत मिलती रहती है, और सिंधु नदी भी 900 नदियों को लेकर मिलती है, उन 1800 नदियों द्वारा सतत भरे जाने वाले विशाल समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे सुखा पाओगे?
2: प्रिय, जब तक हिम्मत के साथ कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरुषार्थ करता है, वो लड़ाई भी निष्फल नहीं होती।
4: यदि तुमने समुद्र के साथ विग्रह करने का सोच ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी बुला लो और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर ही उसके साथ युद्ध करो।
2: अवश्य प्रिय, जो तुम कहती हो वही करूंगा। अपने मित्रों के साथ ही समुद्र का अंत करूंगा। वक्त, सारस, मयूर सभी को बुलाऊंगा।
3: अब उस टिटहरी ने अपने सारे साथियों का आवाहन किया, पूरी कथा सुनाई, परंतु सबने ये राय दी कि समुद्र को दंड देने में वो असमर्थ हैं। तभी मयूर ने सलाह दी कि क्यों ना अपने स्वामी पक्षीराज गरुड़ से निवेदन करें। ये सुनकर सभी पक्षियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से गरुड़ के

0: पास जाकर निवेदन किया।
1: महाराज, अनर्थ हो गया, पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप हमारे स्वामी हैं, आपके रहते हुए मुझ जैसे सदाचारी और निर्दोष टिटहरी के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र स्वेच्छापूर्वक अन्य पक्षियों को भी मार ही डालेगा।
2: अरे, तुम लोगों ने इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? मैं तो सोच रहा था तुम सब अपने अपने स्थान पर सुखपूर्वक होगे।
1: नहीं प्रभु, हम सब बड़े दुखी हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
2: आप सब निश्चिंत रहें, मैं उस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे सोख डालूंगा।
3: गुरुवर को मेरा प्रणाम।
2: अरे, आप तो श्री भगवान के दूत हैं, कहिए क्या संदेश है?
3: गरुड़ जी, स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। देवों के कार्य से भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
2: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे? उनसे जाकर कहिए वो मेरे स्थान पर किसी अन्य वाहन को रख लें, और प्रभु से मेरा प्रणाम भी कह देना।
3: ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर?
2: उचित ही कह रहा हूँ। जो स्वामी सेवक के गुणों की कद्र नहीं करता, उसकी सेवा में रहना सेवक की मूर्खता है।
3: गुरुवर, इससे पूर्व कभी भी भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का उच्चारण आपने नहीं किया था। प्रभु ने कब आपका अपमान किया है जो आप इतने विगलित हो रहे हैं?
2: श्री भगवान का आश्रित होने के कारण ही समुद्र ने मेरी प्रजा में से एक टिटेरी के अंडों की चोरी की है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए आप अविलंब जाकर भगवान से मेरी प्रार्थना कह दें।
4: वत्स गरुड़।
2: भगवान, आप स्वयं उस तुच्छ सेवक के पास आए हैं? मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अज्ञानवश मैंने आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे उचित दंड दीजिए।
4: नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे तनिक भी कुपित नहीं हूँ। क्या हमें ज्ञात नहीं कि आप हमारे कितने भक्त हैं? आप मेरे साथ चलें, मैं टिटहरी के अंडों को अविलंब समुद्र से लेकर देता हूँ।
2: जो आज्ञा प्रभु।
5: दुरात्मन समुद्र, तत्काल टिटहरी के अंडों को वापस करो, अन्यथा बाण से तुम्हें सुखाकर बंजर भूमि बना दूंगा।
0: भयभीत समुद्र ने तुरंत अंडों को लौटाकर गरुड़ से क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ अमरावती रवाना हो गए। इस कथा को सुनकर संजीवक ने दमनक से कहा,
6: अम्मा मित्र दमनक, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है? वो मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझ पर कभी अप्रसन्न नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ।
7: भद्र, इसमें जानने की क्या बात है? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे विश्वास के लिए यही पर्याप्त है कि यदि वो तुम्हें देखकर ब्रिकुटियां चढ़ाकर ओटों को जीभ से चाटे तो समझ लेना वो तुमसे रुष्ट है। इस बात का ध्यान रखना कि पिंगलक को ये खबर ना हो कि मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। यदि हो सके तो संध्या के समय तक यहां से पलायन कर जाओ।
8: आ गए दमनक भाई, मैं तो चिंता ही कर रहा था।
7: अरे चिंता किस बात की है भैया, जब मैंने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो समझो वो पूरा हो गया।
8: पर दमनक, शीघ्र बताओ तुमने किया क्या?
7: वहां जाकर मैंने भेद नीत का बीजा रोपण कर दिया है।
8: अच्छा,
7: इसके आगे भाग्य

0: जो करेगा वो होगा। हमने तो अपनी चाल चल दी है।
1: कैसी नींद का बीज डाला तुमने।
0: मैंने अपनी मिथ्या बातों के द्वारा जो भेद डाला है, भविष्य में आप उन्हें एक साथ नहीं देख पाएंगे।
1: ये तुमने ठीक नहीं किया। दोनों स्नेह पूर्वक सानंद रहते थे, आपने उन्हें कोप के समुद्र में फेंक दिया। सच है कि सीधे साधे लोगों को दुख देने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, परंतु अब सहमति और समर्थन संभव नहीं।
0: अरे, आप नीत शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही शांत नहीं करता, वो बाद में पछताता है। क्यों, आपको याद नहीं, हमारा मंत्री पद छुड़ाने वाला भी संजीवक है। मैंने उसे अभयदान देकर पिंगलक के पास पहुंचाया, उसकी मित्रता करवा दी, फिर भी उसने हमें मंत्री पद से हटवा दिया। अतएव मैंने विवश होकर उसके वध का उपाय किया है।
1: परंतु दमनक, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
0: मेरे इस उपाय को आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा, आप कोई संदेह ना करें।
1: पता नहीं भैया क्या होने वाला है।
0: करकट जी, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। मेरी माने तो आप महाभोज की तैयारी कीजिए। भोजन के साथ साथ हमें मंत्री पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अब इतने सारे लाभ वाले उपायों को मैंने सिद्ध किया है, अपनी मूर्खता के कारण आप इसे समझ नहीं रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं।
1: अपने को अत्यधिक बुद्धिमान समझने की भूल मत करो। आगे आगे देखो क्या होता है।
2: अम्मा, ये मैंने क्या कर डाला। स्वयं शाक भक्षी होते हुए भी मांस खाने वाले के साथ मित्रता की और उसका दास बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हां, एक उपाय है, पिंगलक के पास चलता हूं, हो सकता है शरणागत समझकर वो मेरी रक्षा करे।
3: ये सोचकर संजीवक पिंगलक के पास गया। पिंगलक को एक चट्टान पर बैठा देखकर डर गया। उसे दमनक की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पिंगलक ने भी उसे देखा और तत्काल संजीवक पर टूट पड़ा। पिंगलक के तीखे नखों के आघात से आहत होकर संजीवक ने भी अपने सींगों से उसके उदर को फाड़ डाला। उधर करकट और दमनक छुपकर पूरी घटना देख रहे थे।

0: मूर्ख दमनक, इन दोनों मित्रों में विरोध उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी नीत से स्वामी का विनाश हो रहा है। उनके मरने में अब संदेह नहीं। किस बुद्धि से तुम मंत्री बनना चाहते हो? दंड में विश्वास रखने वाली तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। नीच पुरुष सिर्फ दूसरों का कार्य बिगाड़ना ही जानते हैं। वैसे तुम जैसे मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ?
1: अब मैं क्या करूं?
0: दूसरों को विपदा में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता। सुनो दमनक, किसी नगर में धर्म बुद्धि

0: तथा पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ थे, परंतु दोनों के नाम के अनुसार स्वभाव में भी बहुत अंतर था। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा,
1: हे भगवान, कैसे दिन कटेंगे? मेरे पास तो सुख सुविधा के कोई भी साधन नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मैं मूर्ख और दरिद्र दोनों हूं, क्यों ना विदेश जाकर धन उपार्जन करूं। मैं धर्म बुद्धि को भी साथ ले लेता हूं, ये भी कमाएगा। बाद में इसे ठग कर इसकी भी कमाई ले लूंगा। कल ही मैं उससे बात करता हूं।
2: आहा, आज तो आनंद आ गया। वाह, बड़े दिनों के बाद लस्सी बनी है, क्या स्वाद है। वाह वाह,
3: मित्र धर्म बुद्धि, अकेले अकेले ही आनंद ले रहे हो भाई। अपने भाई जैसे मित्र को याद नहीं किया?
2: आओ मित्र, आओ आओ आओ, मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था।
3: चलो, मेरी याद आई तो सही।
2: ऐसा ना कहो मित्र, मैं कुछ व्यस्त था, परंतु याद तुम्हें प्रतिदिन करता था। अच्छा, अब छोड़ो, ये लो ठंडी लस्सी पीकर दिमाग को ठंडा कर लो। मित्र पर इतना क्रोध ठीक नहीं।
1: देखो धर्म भाई, इस छोटे से नगर में रहकर यदि हमारा जीवन यूं ही बीत जाए तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में किन बातों को याद करेंगे?
2: मित्र, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा विस्तार से बताओ।
1: विस्तार से क्या बताना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्यों ना विदेश चलकर हम दोनों कोई व्यापार करें।
2: बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, एक शुभ मुहूर्त देखकर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़ेंगे।
4: और फिर दोनों ने शहर जाकर खूब धन कमाया। धर्म बुद्धि के प्रभाव से इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धनोपार्जन किया। कुछ माह बाद दोनों अपने कमाए हुए धन को लेकर प्रसन्न एवं उल्लसित मन से घर को लौटने लगे।
1: वाह, धन कमाकर तो आनंद आ गया, पर धर्म बुद्धि के धन को भी अगर हथिया लूं तो क्या बात है।
2: क्या सोच रहे हो मित्र, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो।
1: मैं सोच रहा था इस संपूर्ण धन को लेकर घर चलना ठीक नहीं, कुटुंब जन या भाई बहन मांगने लगेंगे।
2: तो फिर क्या करें पाप बुद्धि?
1: मेरी मानो तो यहीं घने जंगल में इसे गाड़ देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलें। फिर जब जैसी आवश्यकता होगी धन को खोद कर ले लेंगे।
2: ठीक है मित्र, जैसा उचित समझो करो। आओ, इसके लिए गड्ढा खोद लेते हैं।
1: हाँ।
2: और थोड़ा सा।

0: धन को जमीन में गाड़ने के बाद वे दोनों अपने अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात को पाप बुद्धि ने वन में जाकर उस गाड़े हुए धन को निकाल लिया और गड्ढे को भरकर चुपचाप लौट आया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि से बोला,
1: मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, धन के अभाव में हम दुखी हैं। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ धन खोद लाया जाए।
2: हाँ चलो। हाँ यही तो था।
1: हाँ, हाँ,
2: यही तो वो पेड़
1: हाँ,
2: है हाँ, यही खोदो, स्थान खोदो, है खोदते हैं।
1: बस बस बस थोड़ा सा और खोद लेते हैं।
2: अरे अरे यह क्या
1: है?
2: ये खींचो खींचो। अरे ये तो खाली है। अरे
3: अरे धर्म बुद्धि, अधिक ढोंग ना करो, इस धन को तुमने ही चुराया है। मैं पहले ही संदेह कर रहा था, ये गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ जान पड़ता था।

0: दुरात्मन, ऐसी बात कभी ना कहना। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता हूँ।
1: अरे छोड़, बड़े देखे तेरे जैसे धर्मात्मा, नाम की आड़ लेकर मुझे ठगने की चेष्टा व्यर्थ है। चुपचाप मेरे धन को लौटा दे।
0: पापी, जो धर्म में विश्वास करता है वो दूसरों के धन को धेले के समान जानता है।
1: अपने धर्म को अपने पास रख, शीघ्रता से मेरा धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं न्यायालय जाऊंगा।
0: न्यायालय का डर किसे दिखाता है, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलता हूँ।
2: इस प्रकार दोनों व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए न्यायालय पहुँचे और परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि वृक्ष देवता की गवाही ली जाए। पाप बुद्धि ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र घर गया और अपने वृद्ध पिता से बोला,
3: पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। अगर आप चाहें तो वो धन हमारे पास स्थिर रह सकता है।
4: धन चुराकर तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब लग रहा है कि मेरा पुत्र वयस्क हो गया है। परंतु शीघ्र बता कि मुझे करना क्या है जिससे हम उस धन को अपना बना सके।
3: हे तात, कल प्रातःकाल न्यायाधीश गण मुझे और धर्म बुद्धि को लेकर उस वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां हमने धन छुपाया था। आपको वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ जाना है और पूछने पर बताना है कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है।
4: ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज रात में ही जाकर पेड़ के कोटर में छुप जाता हूँ।
3: पिताजी, आइए आइए आप सब आइए। ये है वो वृक्ष। आप इस वृक्ष देवता से पूछें, हे वन देवते, आपने तो सब देखा है, आप ही बताएं हम में से चोर कौन है।
5: सज्जनों, आप सब ध्यान से सुने, मेरे नीचे छिपाए गए धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है।
0: ये झूठ है, ये नहीं हो सकता।
1: क्या झूठ है, क्या वृक्ष देवता भी असत्य बोलेंगे? अब तो सच सबके सामने आ गया है।
2: उधर न्यायाधीशों ने आश्चर्य से पूरे दृश्य को देखा और सुना, फिर धर्म बुद्धि को चोरी का दंड देने पर विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच धर्म बुद्धि ने शमी वृक्ष के उस कोटर में आग लगा दी।
6: अरे अरे जल गया, अरे मर गया, अरे अरे बचाओ, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे बचाओ, जल गया।
2: पाप बुद्धि का पिता कराहता हुआ कोटर से बाहर निकल आया। फिर क्या था, पाप बुद्धि से धन छीन कर धर्म बुद्धि को दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर करकट ने दमनक से कहा,
7: दमनक, तुमने पाप बुद्धि की तरह स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो सोचा किंतु होने वाली हानि पर विचार नहीं किया। तुम अत्यंत तुच्छ सोच वाले हो, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना।
2: इधर करकट और दमनक वाद विवाद में व्यस्त थे और उधर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था। पिंगलक के प्रखर नखों के आघात से आहत होने के कारण संजीवक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे निर्जीव देखकर पिंगलक बहुत दुखी हुआ।
8: मैंने निर्दोष संजीवक को मार कर अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपनी सभा में सदैव उसकी प्रशंसा करता रहा हूँ, अब मैं उन सभासदों के सामने क्या उत्तर दूंगा।
9: देव, आपकी

0: नीति अत्यंत कायरतापूर्ण है। आप एक राजद्रोही और शाकाहारी जीव को मारकर इस प्रकार शोक कर रहे हैं, राजाओं को ये बात शोभा नहीं देती।
1: इस प्रकार दमनक के समझाने पर पिंगलक ने संजीवक के मरण संबंधी शोक को छोड़ दिया और फिर दमनक को मंत्री पद देकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्रोतागण, पंडित विष्णु शर्मा ने जो 5 प्रकरण बनाए उनमें से प्रथम प्रकरण मित्र भेद यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे मित्र संप्राप्ति, परंतु अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का ये 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार, तकनीक आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा में आप सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी श्रोता सखियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला सभा कार्यक्रम लेकर आज हाजिर हूँ मैं, संयोगिता जोशी। आइए शामिल होते हैं कार्यक्रम के माध्यम से इस आने वाले जश्न में। आज आप सुनेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ जानकारियां भी। बहुत खुशी होती है सखियों जब आकाशवाणी प्रांगण में महिलाओं को कार्यकर्ता देखते हैं। हर विभाग में जिम्मेदारी से कार्य करती दिखती हैं ये महिलाएं, और आज तो लगभग हर फील्ड में महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कार्य स्थल पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपनी भूमिका के लिए बधाई की पात्र हैं हमारी सभी वो बहनें। दरअसल एक महिला में

नेतृत्व क्षमता अधिक होती है प्राकृतिक रूप से, और जो कार्य उसने अपने ऊपर लिया है वो पूर्ण करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। आगे बढ़ने की उसकी जो चाह है ना, उसने उसे दोहरी भूमिका निभाने में मजबूती दी है। यानी घर के काम के साथ साथ माँ के दायित्व के साथ साथ वो अपने कार्य स्थल पर भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। सखियों, हम यही चाहते हैं कि हर वर्ग की महिला हर क्षेत्र में आगे आए, चाहे वो शिक्षित हो या ना हो, अपने स्तर पर वो अपनी इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए हौसले के साथ आगे बढ़ती चलें। यूं ही नहीं हासिल किया हमने ये सफर, यूं ही नहीं तय किया हमने ये सफर, मुश्किलों का सामना भी किया है, मुश्किलों को तोड़ा भी है, और मुश्किलों से लड़कर हम आगे भी बढ़ी हैं।

गीत के बाद आगे बढ़े सखियों, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। योजना सरकार की वो पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक में डाले जाते हैं। उद्देश्य ये है कि पोषण में सुधार हो गर्भवती महिलाओं के और भुगतान की जो भरपाई है वो हो सके। हाँ, पात्रता के लिए महिला की आयु 19 वर्ष होनी चाहिए, महिला सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए, गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य है। तो प्यारी सखियों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लीजिए और स्वस्थ प्रसव की इस मुहिम को बढ़ावा दीजिए। सखियों, आज 19 मई है और आज के दिन विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड फेयर प्ले डे के रूप में भी हम जानते हैं, समझते हैं। 2025 में पहली बार आधिकारिक रूप से इस दिन को मनाया गया। वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व के हर खेल में खिलाड़ी मित्रता, एकजुटता और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर खेल प्रदर्शन करें। जी हाँ, जीत से ज्यादा

0: महिला सभा कार्यक्रम में अब बारी है मेरी उड़ान की। से मिलवाने लाई हूँ श्रेष्ठा गोयल जी को। इंदौर शहर ही नहीं पूरे देश में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। तो आपके स्वागत के साथ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सक्सेसफुल कहानी के पीछे राज क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई?
1: नमस्कार जी। इसकी शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो चुकी थी। हमेशा मैंने चाहा कि जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं खुद भी आगे बढ़ूँ और अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर आऊँ। जब मैंने शादी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, उस टाइम मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से जॉब वाला बैकग्राउंड था, और उसके बाद बिजनेस में आना एक बड़ी चुनौती के रूप में था। और प्रेगनेंसी टाइम में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं बिजनेस में आई, और उस टाइम मैंने धीरे धीरे अपने आप को इसमें स्थापित किया, और हर कदम पे मैंने महसूस किया कि मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड रहा। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए, तब मैंने और जो मेरे साथी हैं, जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाया, और हमने वहीं से शुरुआत की वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, जिसमें आज इंदौर की करीब 20,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और हम उन्हें हर तरह से सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए और बिजनेस में आगे आने के लिए।
0: तो ये कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए?
1: मेरे साथ साथ दूसरी महिलाओं को मैंने इसमें शामिल किया। जैसा मैंने आपको बताया, वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसमें हम दूसरी महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ ही हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं में जो महिलाओं को सहयोग मिल सकता है, कई सारे सेमिनार और वेबिनार जिसमें उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपनी कंपनी के थ्रू वर्क स्टार्ट करना, एंड कई सारी जो नीतियों हैं उन पे हम बात करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हैं जिसमें वो विकास की राह पर आगे बढ़ सकें।
0: बहुत अच्छी बात कही है श्रेष्ठा जी आपने। अपनी आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरी हमारी जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहती हैं, उनके सपने को भी आप साकार कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए ये स्वर्णिम युग

0: की शुरुआत है। श्रेष्ठा जी, आपसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
1: बिल्कुल, ये स्वर्णिम शुरुआत है क्योंकि हमारी भारत सरकार भी महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। लाडली बहन योजना, लखपति दीदी योजना, ये सारी योजनाएं महिलाओं को कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार भी कर रही हैं और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बहुत ही योगदान भी दे रही हैं और उनके कदम मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
0: सरकारी योजना का लाभ लिया है
1: जी, बहुत सारे जो लोन्स होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों में मिलते हैं, वो मैंने और मेरे ग्रुप ने इसके लिए कई बार अप्लाई किया है और हम लोगों ने बहुत सरकारी योजनाओं के लाभ भी उठाए हैं। और अभी जो हमारा उद्देश्य है हमारे ग्रुप का, हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं इंदौर में देश का पहला महिला क्लस्टर बनाने के लिए। इसके लिए भी भारत सरकार हमारा सहयोग कर रही है और बहुत जल्दी इस क्लस्टर के माध्यम से उद्योग जगत से जुड़ी हुई महिलाओं को हम सरकार के द्वारा जमीन आवंटित करवाएंगे और उसमें वो अपना उद्योग स्थापित करेंगी और इस विकास की राह में और भारत देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग देंगी।
0: तो ये किस तरह का काम होगा?
1: मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगी और ये मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर होगा। अभी तक जितने भी क्लस्टर बनते आए हैं वो प्रोडक्ट बेस पे रहते हैं, जैसे कि नमकीन क्लस्टर है तो सारे नमकीन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक जगह पे काम करते हैं और फूड क्लस्टर्स होते हैं, फार्मा क्लस्टर होते हैं, लेकिन इस क्लस्टर का जो बेस है वो महिलाएं होंगी। उनके प्रोडक्ट भले ही अलग अलग हों लेकिन वो सेम प्लेस पर एक जगह पे अपना काम कर सकेंगी, तो ये कहलाएगा वुमन मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर और जो देश का पहला क्लस्टर होगा। इसके साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भारत का डिजिटल इंडिया मिशन है उससे भी हम महिलाओं को जोड़ें और हम समय समय पे डिजिटल दुनिया के लिए बहनें हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं जिससे वो डिजिटल दुनिया की बारीकी समझ सके। ई कॉमर्स जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स के जो भी तकनीकियां हैं उनके बारे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं महिलाओं के लिए और वो उससे सीख भी रही हैं और ई कॉमर्स में अपनी प्रेजेंस उनकी आ रही है। जैसे जैम पोर्टल, इंडिया का जो गवर्नमेंट सप्लाई का जैम पोर्टल है उस पे उसके लिए हमने भारत सरकार की मदद ली है और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इंदौर की महिलाओं को, स्पेशली हमारे ग्रुप की महिलाओं को जोड़ा है हमने। अब वो सरकारी टेंडर और को पार्टिसिपेट करने और बिड पार्टिसिपेट करने में बहुत कम्फर्टेबल हैं, जहाँ तक मैंने भी भारत सरकार के माध्यम से ही जैम पोर्टल पे काम करना स्टार्ट किया था।
0: तो इसकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है श्रेष्ठा जी?
1: इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग टाइम टाइम पे कर रहे हैं और हमारे माननीय सांसद ललवानी जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उनका सपोर्ट भी रहा है। वो जीडीपी पे काम कर रहे हैं, इंदौर की जीडीपी को डबल ट्रिपल करने के लिए भी भारत सरकार के सारे प्लान जो हैं वो सांसद जी के थ्रू ही होने वाले हैं एंड हम महिलाओं का उसमें विशेष योगदान रहेगा। और हमारा जो मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर है ये भी जो जीडीपी वाले प्रोग्राम के अंतर्गत ही आएगा, हम इस अपने क्लस्टर के सपने को पूरा करेंगे जल्दी।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, महिलाओं का क्लस्टर बहुत जल्दी तैयार हो और हमारे जो श्रोता बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं अगर वो जुड़ना चाहें तो इस क्लस्टर से जुड़ने के लिए तैयार रहें और अपने प्रोडक्ट्स अपने आप को तैयार करके रखें। जब इस तरह के प्रोग्राम की बात होती है, कार्यक्रम सुनने वाली हमारी श्रोता बहनें हैं, क्या क्या खूबियां उनमें होना बहुत जरूरी है?
1: उनकी कंपनी के पास प्रॉपर लाइसेंस और पेपर वर्क कम्प्लीट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना वो किसी भी सरकारी योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस क्लस्टर में अप्लाई करने के लिए भी उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अटेंड कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले कर सकती हैं और ये पूरी तरह से उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। कुछ प्रोसेस होता है उनका। हमारे ग्रुप की भी कई महिलाएं देश के बाहर साउथ अफ्रीका और लंदन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले करके आई हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करके आई हैं और जिसमें उनको एयर फेयर से लेके स्टॉल चार्जेस तक भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ वो ले सकती हैं, बस उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।
0: हमें बहुत अच्छा लग रहा है श्रेष्ठा जी आपसे बातचीत करके। और ऐसी क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं और वो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है?
1: देखिए,

0: मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ,
1: जी
0: तब मैंने सुना है ये कि अक्सर महिलाएं जो हैं वो शौकिया तौर पे काम करना चाहती हैं।
1: जी जी
0: अगर वो बहुत अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से हैं
1: जी
0: तो वो कहती हैं कि वो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, या उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो वो शौकिया तौर पे काम करना चाहती हैं।
1: जी
0: तो यहाँ मैं उनको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए काम मत कीजिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, आप हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए,
1: जी
0: देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए काम कीजिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपका
1: जी
0: डेवलपमेंट होता है, आपके बच्चों का डेवलपमेंट होता है, आपके परिवार का डेवलपमेंट होता है, और वही जाके आगे विकास की राह में देश का डेवलपमेंट करता है। तो करीब 3,000 से ज़्यादा एक्टिव स्टार्टअप इंदौर में हैं, जिनमें 35% जो हैं महिलाएं उनको लीड कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत है कि
1: जी जी
0: महिलाएं स्टार्टअप में आगे आ रही हैं,
1: जी
0: उद्योगों में आगे आ रही हैं।
1: श्रेष्ठा जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। एक बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आ पाई। जिस कार्यनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं वो आपके पूरी हो और आगे सहयोग देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियो, जब भी हमारे घर से कोई बाहर निकलता है हम यही कहते हैं ना कि भाई संभल के जाना, गाड़ी धीरे चलाना, सड़क सुरक्षा का ध्यान हम सभी को रखना होता है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हम सभी को करना होता है। ग्लोबल रोड सेफ्टी डे जी हाँ WHO द्वारा आयोजित एक प्रमुख अभियान है जो सड़क हादसों, सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के एक

एक अहम मुहिम है। पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सड़क पर चलते समय सिग्नल का पालन जरूर करें। हेलमेट पहने सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचें। WHO की इस मुहिम में बराबर सहयोग करें। रोड पर चलते समय रोड नियमों का पालन करें। अपने घर से थोड़ा सा समय से पहले जरूर निकलें, गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। अब बारी है रूपलावण्य की। सखियों, गर्मी में वर्किंग लोगों के लिए सुबह के वक्त प्रॉपर केयर बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की ये धारणा है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ सर्दियों में स्किन केयर करता है। आपको हर मौसम में मॉइस्चराइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये त्वचा को नमी देने के साथ साथ कोमल भी बनाता है। टैनिंग और सनबर्न से बचने के लिए आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, साथ ही घर पर कुछ इस तरह से टैनिंग कम करने के लिए उपाय करती रहें। जैसे पका हुआ टमाटर लें, काट कर एक हिस्से में नमक और दूसरे हिस्से में दरदरी शक्कर लगाकर लगभग 10 मिनट उसे यूं ही रख दें। फिर चेहरे पर बारी बारी से हल्की मसाज लगभग 20 मिनट तक करें। चेहरे को साफ ठंडे पानी से धो लें। इस

जरूर अप्लाई करें, साथ ही घर पर कुछ इस तरह से टैनिंग कम करने के लिए उपाय करती रहें। जैसे पका हुआ टमाटर लें, काट कर एक हिस्से में नमक और दूसरे हिस्से में दरदरी शक्कर लगाकर लगभग 10 मिनट उसे यूं ही रख दें। फिर चेहरे पर बारी बारी से हल्की मसाज लगभग 20 मिनट तक करें। चेहरे को साफ ठंडे पानी से धो लें। इस घरेलू उपयोग से चेहरे के जो काले धब्बे हैं प्राकृतिक रूप से साफ होंगे। हाँ, हफ्ते में 3-4 बार टमाटर का ये उपयोग आप जरूर करती रहें। चेहरे को साफ सुथरा चमकदार बनाए रखें।

0: सखियों चलते चलते करेंगे काम की बातें। गर्मी में जब लगातार पानी पीने के बाद भी सरदर्द या थकान बनी हुई है तो सावधान हो जाइए, यानी कुछ गलतियां हम जरूर कर रहे हैं। आयुर्वेदा में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल कहा गया है सखियों। आदान यानी छीनना। सूर्य इस मौसम में शरीर के धातु यानी टिश्यू से नमी और ताकत दोनों छीनता है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में ज्यादा पानी पियो ऐसा नहीं है, बल्कि कैसे पानी पियो, क्या पियो और कब पियो ये बताया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी सीधे कभी भी ना पिएं, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को सरप्रेस करता है जिससे थकान बढ़ती है, आपका पाचन खराब होता है। साइंस से समझें तो ठंडे पानी को हमारे शरीर को ऊर्जा यूज करते हुए 37 डिग्री तक लाना पड़ता है ताकि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ध्यान रखें सामान्य नल का पानी 16 डिग्री का होता है, आइस वाटर से कहीं बेहतर हाइड्रेट करता है हमारे शरीर।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए

0: यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लियाकत हुसैन की आवाज़ में चंद गज़लें। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, आवाज़ कुमार सानू की है और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर श्री मोदी ने और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा लेख लिखकर कहा है कि दुनिया को संकीर्ण सोच छोड़कर आपसी सहयोग की राह चुननी होगी। लेख में भारत के दो बड़े लक्ष्यों का जिक्र है, इसमें 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। पिछली बैठक पिछले साल जून में वाराणसी में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। हॉक फोर्स ने आधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। किसानों को 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 10,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के अपने पुराने आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने बुजुर्गों, बच्चों, यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में

0: बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए महंगा होकर 1.59 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2181 रुपए उछलकर 2.70 लाख रुपए हो गई है। प्रदेश में कल भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। नौगांव में 40, राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आगर मालवा में जिला पोषण बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां तेज कर दी हैं। शिवपुरी में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित

0: नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा

0: दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

0: आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तपती हुई दोपहरी कि जब जिंदगी कुछ पल फुर्सत की तलाशती है, किसी गीत की छांव तले सुस्ता लेना चाहती है, इन पलों में हम लेकर आए हैं भावनाओं से सजी वो पोटली जिसमें है आपकी चिट्ठियां, आपके शब्द, आपकी फरमाइशें। तो आइए कुछ पल सुरों के साथ चलते हैं, कुछ पल सुकून के साथ गुजारते हैं, कुछ पल आपके साथ गुजारते हैं, मिलकर गुनगुनाते हैं आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत कुर्बानी फिल्म से, आवाजें कंचन, मनहर और इंदिवर आनंद की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सबकी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोल वाघ। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। देवास से राजीव अग्रवाल। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। ये चिट्ठी आई है बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।

और अब आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप सबका है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है डोंडी लोहारा दुर्ग से। लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार, प्रभा देवी। सारणी जिला बैतूल से इसी गीत को पसंद करते हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। शाजापुर से मधु राजावत, एमएम राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे, है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।

और अब आइए जूली फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। अनुरोध आप सबका है। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, राजू और लल्ला साहू, सौगा धमतरी से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र कुमार चंदन। ये खत आया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिलदा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा, प्रिया, ओशीम और सोमिन कुमार चंद्र। ये खत आया है ग्राम अमलेश्वर से। लिखने वाले श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दुनिया ये तसव्वुर हम आबाद नहीं करते, याद आते हो तुम खुद ही हम याद नहीं करते।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

और अब आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। पसंद आप सबकी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई कि तेरा नाम लेकर पुकार लूं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह 2 दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित

0: इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:15 पर और रात 10:00। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे, इसमें आज सुनिएगा आबशारे गजल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए स्वाति ओखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम पेश कर रहे हैं चंद गजलें। फनकार हैं लियाकत हुसैन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने हिना फिल्म से लिया है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, आवाजें लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, निरंजन अयंगार का लिखा हुआ, संगीत शंकर एहसान लॉय का है, फिल्म का नाम है माय नेम इज खान, आवाजें राहत फतेह अली खां, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की हैं।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन 2026 में बोल रहे थे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इसने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर

0: में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर।
2: नमस्कार, शब्द सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी लेखन में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोविंद मिश्र और श्री शशांक जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है।
3: आपका भी स्वागत।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी लेखन की जब भी बात चलती है तो उसकी स्वरूप, संरचना, कथ्य, भाषा, कला, तमाम सारी बिंदुओं पर बातचीत की जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज जो होती है कहानी में, जिसकी तलाश हमेशा रहती है और पाठकों को या श्रोताओं को बांधती है, वो होती है संवेदना। और कहानी का मतलब ही है कि कहानी अपनी संवेदना के आधार पर पाठकों के हृदय को छू ले। तो मैं गोविंद जी आपसे जानना चाहती हूँ कि कहानी की जो संरचना है, उसका जो स्वरूप है और संवेदना का क्या अंतर संबंध आप देखते हैं?
4: देखिए, ये थोड़ा बहुत तो अलग अलग लेखकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि संवेदना वो चीज़ है जो धड़कती है कहानी में, और स्वरूप उसका वो है जो दिखता है बाहर से। कुछ कुछ कह लीजिए कि आत्मा या शरीर जैसा संबंध, अब अगर स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो पाठकों तक नहीं पहुंचेगी, वो भी ज़रूरी है। और अगर जो सिर्फ शैली और दिखाई दे रहा है उसी पर ध्यान देते हैं, तो सवाल होता है कि कहानी लिखी क्यों गई, कहने की जो बात दूसरी है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से ज़रूरी होती हैं। जहाँ तक मेरी अपनी रचना प्रक्रिया है, मैं कभी इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर पाता। जिस वक्त में कहानी रूप लेती है तो अलग से कोई शैली तय नहीं होती, वो कितनी तीव्रता से संवेदना आ रही है वो अपने आप तय करती है कि उसका क्या स्वरूप होगा, क्या शैली लेंगे। यहाँ तक कि शैली भी अलग अलग बदल जाती हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी वर्णांजलि की शैली एकदम अलग किस्म की है, और अभी जो मैं लिख रहा हूँ कहानी, उसमें चूंकि दोनों का पक्ष सही मुझे नज़र आता है, तो एक ऐसी शैली चाहिए जिसमें दोनों पात्र ऊपर उठें। इसमें कोई मतलब कहा नहीं जाए, लेकिन होते दोनों महत्वपूर्ण हैं, और मेरा ख्याल है हर लेखक थोड़ा सजग इस बात को लेके होता है कि आखिर जो संवेदना मुझे झकझोर रही है वो अगर पूरी की पूरी ना सही तो अंशतः तो पाठक के अंदर उतरे ही, अर्थवर की बात नहीं होती, मतलब वो इमोशन, पैशन या जो भी आप उसे कहें, झंझनाहट, वो तीव्रता, वो उतरना चाहिए।
2: शशांक जी, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि कहानी मतलब शरीर और आत्मा की बात, जैसे संवेदना और स्वरूप, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष जिसको हम कह सकते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पहले तो हम एक पूरी कहानी पर ही बात कर रहे हैं कि कहानी में संवेदना और स्वरूप का अंतर संबंध क्या होता है, फिर आप लोगों की अपनी रचना प्रक्रिया पर भी मैं आऊँगी कि कैसे आप लोगों ने संवेदना और स्वरूप को साधा है।
5: सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि संवेदना और स्वरूप दो अलग अलग चीज़ें हैं
2: जी।
5: जब हम संवेदना की बात करते हैं तो एक कथाकार के सामने एक चुनौती की तरह पाठक की संवेदना उसके सामने होती है, मतलब पाठक की संवेदना अलग है और लेखक की संवेदना अलग है, और उस संवेदना से अपने बोध को आगे बढ़ाने का काम लेखक करता है
2: जी।
5: क्योंकि वो अंततः करता क्या है, वो अन्याय, दमन और गैर बराबरी के खिलाफ कहानी को सामने रखता है, और ऐसा रास्ता पाठक को दिखाता है जहाँ वो कुछ सोच सके कि जो स्थितियाँ हैं उसमें वो किस ओर खड़ा होगा। और संवेदना के भी कई स्तर मुझे लगता है होते हैं, और ख़ासतौर पे भारत को यदि आप देखें, क्योंकि बड़ा विशाल प्रदेश है, और श्यामाचरण दुबे तो ये कहते हैं कि

0: एक साथ कम से कम 50 समाज होते हैं और वो समाज हर 10 साल में बदलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी संवेदनाएं अनेक स्तरों पर होती हैं और दूसरा कई दशकों में बदलती चली जाती हैं और वो एक ऐसा प्रिज्मेटिक रूप धरती हैं जिसमें लिखने का आनंद ही लेखक उठा पाता है। अब रहा सवाल ये कि यदि संवेदना इतनी तीक्ष्ण है तो इस पर हमें थोड़ा सा रुक कर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 वर्षों के ही मोटा मोटा हम हिस्सा ले लें और मुझे लगता है कि सूचनाएं सबसे ज़्यादा हमारे पास आई हैं
1: जी।
0: मीडिया के अनेक तंत्र हमारे पास आए हैं, रेडियो है आपके पास, टेलीविज़न है, नेट है और सोशल मीडिया के कई हिस्से हैं और उसमें हम सभी महसूस करते हैं कि जितना हमें जानना है और जितना हमारी त्वरा को आक्रामकता जितनी होनी चाहिए उससे शताधिक आक्रामकता आज के समय में है। तो रुक कर हमें ये देखना होगा कि जन सामान्य की संवेदना में हमारा हिस्सा क्या, जैसा आज हमेशा सनसनीखेज चीज़ें आ रही हैं उस ओर हम झुकेंगे या एक नैतिक दायित्व बोध के साथ उसमें हम रुक कर उसके साथ कुछ ऐसी सॉफ्ट ऐसी कोमल बातों की तरफ उसे खींच के ले जाएंगे जो कम से कम उगते हुए सूर्य को या एक संवेदना माता और पिता, वो थोड़ी संवेदना नहीं जो लोग आज लिख रहे हैं
1: उस तरह से
2: नहीं। शशांक भाई, इसमें वही बात है कि संवेदना पाठक की या कि लेखक की। लिख रहा है कहानी लेखक। मैं सिर्फ अपने ही संदर्भ में अपने ही तजुर्बे से बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी पात्र को या चरित्र को देखते हैं और वो अगर सिर्फ विशुद्ध काल्पनिक नहीं है, तो मैंने देखा कोई स्त्री पुरुष या दोनों को, तो उनकी क्या त्रासदी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भयंकर त्रासदी रहती है। अब उसमें जाने के लिए लेखक अपनी संवेदना से एक पुल तैयार करता है, ढूंढता है कि क्या है जो जो इन्हें पीड़ित कर रहा है। अब उस व्यक्ति के अंदर जो आप बात कर रहे थे वो तो है ही कि अब आज के समय में बदली हुई संवेदना वहाँ मौजूद है। अब सवाल यह है कि लेखक उसको चुन पाए, ढूंढ पाए, फिर वैसे शब्द दे पाए और ये ना रहे कि हमें कोई तर्क बुद्धि और इससे संवेदना से। मेरा आशय रहता है कि थोड़ा तर्क से अलग, दूर, बुद्धि से दूर, क्योंकि कहानी लिख रहे हैं आप, साहित्य लिख रहे हैं आप, तो रस संवेदना ये सिर्फ बुद्धि से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आए, उसकी त्रासदी क्या है, हम उसमें भिगो लेना चाहते हैं अपने पाठक को। तो इसलिए मुख्य रूप से आपकी बातों से ऐसा लगा कि पाठक की संवेदना मुख्य है जिसमें हमें उसको इम्पोर्टेंस दे के लिखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इसमें लेखक की संवेदना ज़्यादा रोल प्ले करती है कि वो वहीं जाके उस चीज़ को उठाए जो उस व्यक्ति को व्यथित कर रही है और उससे अपना तार जोड़ ले और इस तरह जोड़े कि फिर उसे लांग करे तीसरा व्यक्ति, न लेखक न वो व्यक्ति जो पात्र है, तीसरा जो पाठक हो रहा है उसको भी वो वैसे ही छू ले। जहाँ ये तीनों एक रस हो जाते हैं वहाँ कहानी बड़ी प्रभावी हो जाती
0: है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि संवेदना में दरअसल हम एक ऐसा नया अछूता कोना अपने पाठक को देना चाहते हैं, क्योंकि हम यदि किसी एक विदेश की या किसी एक फैंटेसी में उसे ले जाएंगे हो सकता है कि वो उससे अभ्यस्त ना हो, मगर जहाँ हम जाते हैं और चिरपरिचित जगहों पर ले जाकर ये कहते हैं कि ये जगह है जो हमारे एक मानवीय संवेदना होने के कारण हमने उसे छोड़ दिया है। मैं अभी जानबूझकर पिछले 2 दशकों की कहानियाँ लेता हूँ, उसमें आख्यानकार या नैरेटर जो स्वतः ही कहानीकार है उसके हाथ में नियंत्रण में कहानी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि चरित्र, जैसा कि आपने कहा है, जो आज की सबसे बड़ी कहानी की चीज है, जहाँ मांग है,
2: इसलिए कि उसमें रह जाता है कि वो शैली पर या स्वरूप पर ज्यादा जोर देने लगता है।
0: जी हाँ, वर्णन उसके पास,
1: भाषा पर
0: वर्णन इतना अधिक होता है,
2: इस वजह से हो कि हम ऐसी विलक्षणता पैदा कर रहे हैं
0: जैसे
2: शैली पर। हमारे उदय प्रकाश
0: जैसे कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी अब नहीं मिलती है। मुझे ये भी लगता है कि जब भूगोल, स्थान और समय काल इन तीनों को मिला दें तो संवेदना का बदलाव होता था। आज से हम

0: 20 साल पहले जिन चीजों से प्रभावित
1: होते थे। बदलाव होता है तो वो पात्र में दिखाई देता है। सवाल यह है कि लेखक भी ऐसा हो कि उसी ढंग से ना देखे, उसी उस तरीके से। अब जैसे मैं अभी जो कहानी लिख रहा हूँ, परेशानी उसमें ये है कि एक पिता और पुत्री है। पुत्री नौकरी बड़ी अच्छी छोड़ करके, इस वजह से कि पिता को सेवा करने को कोई नहीं है, उसे नौकरों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता
0: जी।
1: वो आ जाती है। पिता दुखी है कि ये अच्छी नौकरी छोड़ करके सर्वेंट मेरी बनी हुई है। दोनों अपनी पक्ष में बिल्कुल सही हैं। अब ये आज की संवेदना है कि वो इतनी माँ बाप के लिए डिवोटेड है, माँ बाप उपेक्षित होते हैं, रोज अखबार में हम पढ़ते हैं क्या क्या उनके साथ हो रहा है, तो वो अपने ढंग से सही कर रहे हैं।
0: हमारे से बिल्कुल उल्टा है। मैं इस बात को करूँगा और मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो उर्मिला शिरीष हैं और ये बहुत बड़ी लेखिका हैं, इनकी मैं दो कहानियों की जिक्र आपसे करूँगा। एक चीख है और उसका अपना रास्ता, इसका विश्लेषण तो भी स्वयं करेंगी। बस जिस बात को आपने कहा है कि माता पिता को मिलना चाहिए, इन दोनों ही कहानियों में, एक में जिसके साथ बलात्कार हुआ है और एक जो अपने फैशन परेड के लिए अपने को तैयार करती है, तो सारा घर का वातावरण आत्मी होते हुए भी दरअसल ये दोनों हिस्से में उस स्त्री को कमज़ोर करने के लिए सामने आता है। तो ये संवेदना है, मगर इस संवेदना के विविध आयाम हैं और जो जितना बड़ा आख्यानकार होगा उसमें वो उतनी अधिक चीज़ें लेकर आएगा।
1: मेरे ख्याल में इसमें शशांक भाई ये तय करना चाहिए कि लेखक और लेखक की अपनी च्वाइस होती है, उसका उसको अधिकार है कि वो संवेदना को ज़्यादा महत्व देता है या स्वरूप को। अगर शैली लेकर आप चलते हो तो आपके हाथ से वो संवेदना छूट जाएगी। अगर बहुत संवेदना लेकर चलते हो तो शायद अति भावुकता वाली भी बात आ जाएगी। तो दोनों का कहीं एक अंतर गुम्फन होना चाहिए और मेरे ख्याल में वो तब तक होता है जब तक आप उस पात्र से सटे सटे चलते हो जिस पर आप लिख रहे हो। मुझे तो इस चीज़ ने बड़ी मदद की कि जब भी मैं ऐसे स्थल पर पहुंचता हूं कि मुझे परेशानी है कि मैं किधर ले जाऊं कहानी को, तो उस पात्र को देखो, उसकी ज़िंदगी को देखो और एग्जैक्टली उसके जितना करीब से करीब गुजरो तो वो चीज़ दूर बैठे एक पाठक पर भी उतरती है। क्योंकि जो आप कह रहे थे कि वो आज की संवेदना सिर्फ मेरी और
2: शशांक जी जैसे गोविंद जी बात अभी आज की संवेदना की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आज की संवेदना या पिछले बहुत 30-40 दशक या उसके पीछे हम जाते हैं या प्रेमचंद से शुरू करते हैं, पूरा एक कहानी का पूरा एक समय हमारे सामने है प्रेमचंद से लेकर आज तक, और कहानियों के जो विभिन्न आंदोलन जो हुए हैं और निश्चय ही उसमें भाषा में बदलाव आया, शिल्प में आया, शैली में आया, सारी चीज़ें आईं, विचार कहीं हावी रहा, कहीं कोई दूसरी चीज़ हावी रही, लेकिन मूलतः हमेशा जो कहानी है वो संवेदना की ही मांग करती है। तो मैं अब आपके आप इतने बड़े कथाकार हैं और आपकी रचना प्रक्रिया पर आती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही अपनी पीढ़ियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समकालीन भी है, तो आपके माध्यम से भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कहानी लिखते हैं तो दोनों चीज़ों को साथ में साधते हैं, या जैसे आपने पाठक की बात की कि पाठक की संवेदना अलग और लेखक की संवेदना अलग, तो क्या अनकॉन्शियस माइंड में या सोचकर पाठक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से कहानी लिखते हैं?
0: देखिए, जब आप लंबे समय तक लिखते हैं
2: जी,
0: तो आपकी शैली
2: जी
0: और आपके कहानी का स्थापत्य
2: जी
0: धीरे धीरे एक रूप लेता है
2: जी,
0: जो दूसरे लेखक से अलग होता है। आज आप नाम हटा दें तो बड़े लेखकों की कहानियाँ उनके नाम और शीर्षक हटाने पर भी पाई जा सकती हैं कि ये इसकी लिखी हुई है। निर्मल वर्मा का नाम हटा दें और उनकी कहानी का जो आप हिस्सा पढ़ें तो उसका जो रसायन है वो तैयार किया हुआ निर्मल वर्मा का है। मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में सदैव एक तरफ बहुत अधिक कला के साथ लिखी गई कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सादे ढंग से कथ्य को लेकर आगे बढ़ने वाले कहानी है। जैसे कि मान लीजिए अमरकांत हैं, वो मित्र मिलन, डिप्टी कलेक्ट्रीस जैसी कहानियां लिखते हैं और बहुत सादे ढंग से है और एक ऐसा करेक्टर आपके सामने खड़ा कर देते हैं। इसी तरह मैंने कृष्णा सोपती का नाम लिया था, तो उनकी आप ए लड़की पढ़ें।

0: मित्र उम्र जाने पड़े हैं,
1: बिल्कुल.
0: आप नाम हटा दें तो अमरकांत अलग होंगे और ये
1: कृष्णा सूक्ति अलग.
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने लेखन में भाषा शैली और कथ्य का चुनाव भी, ऐसा नहीं है कि हर तरह के कथ्य हम चुन लेते हैं. हमारे पास जिंदगी के हजारों कहानियां पड़ी हुई हैं, मगर आपके इन तीनों का जो बहुत अच्छी बात गोविंद जी ने कहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जेम्स जॉयस ने लिखा कि जहाँ बहुत अधिक भाषा शैली की बात होती है वहाँ मुझे भूल जाया जाता है. और अपने यहाँ रघुवीर साहब कहते हैं कि कला कला जहाँ बहुत कला होगी वहाँ कला नहीं होगी. तो ये बैलेंस होगा तभी होगा. तो अब आप यदि 20 सालों में आप देखें तो जैसे चंदन पांडे की भूलना या सुनो कहानियाँ है, और मनोज पांडे ने जैसे सोने का सुअर और शहतूत कहानी लिखी है, अपने ही शहर के हैं मुकेश वर्मा, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है दिलों की एक आवाज़ ऊपर उठती हुई और ब्लैडी फूल, जहाँ आपके संवेदना को उन्होंने बताया है कि एक आदमी जो है 300 मंजिल से नीचे गिर रहा है और हम मंजिल में कैसे कैसे लोग करेक्टर बदल रहे हैं. तो ये एक आदमी उठाता
1: है. बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं
0: जी,
1: है
0: मगर मैं दूसरों की बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा.
1: कहानी का नाम आप नहीं ले रहे हैं, घंटी कहानी है और भी बहुत अच्छी कोसा फल है, 19 साल का लड़का है.
0: अब जैसे मैं यहाँ पर जो बात हो रही है रचना प्रक्रिया की, तो मैंने भोपाल गैस त्रासदी के समय में एक बहुत लंबी कहानी लिखी, और बल्कि मैं यूं कहना चाहूँगा कि जब मैं उपन्यास उसको लिख रहा था और उस संवेदना को मैंने जिया है यहाँ पर, उसे जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं ये नहीं, मैं अक्सर ये मानकर चलता हूँ कि लेखक कहानी लिखता है अलग, कहानी पे बात करता अलग, उसकी बात करने को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए ये, क्योंकि वो अपने को एक वकील की तरह प्लीट करता है, जराय करता है, जो उस कहानी के अंतरंग में नहीं हो सकता. तो मैंने पाया कि सारे दस्तावेजों को मैंने पढ़कर एक किनारे किया, और दरअसल वो क्या चीज़ है जो एक बहुत बड़ा गुंडा आपको स्कूटर पे बैठा कर आपको 5 किलोमीटर छोड़ देता है और दूसरे दिन की अफवाह में वो आपका सामान लूट लेता है. ये इतना जटिल व्यक्तित्व है व्यक्ति का, और वे लोग जो प्रताड़ित हुए वो कटोरा हाथ में लेके एक भीख की तरह भी सामने आ रहे थे.
1: गोविंद जी की खुद एक कहानी है, फांस कहानी, जिसमें इसी तरह
2: वो वही तो है बात कि आप क्या देख करके कौन सी चीज शुरू करना चाहिए. आपने सवाल किया कि कहाँ से कहानी आप उठाते रहे.
1: आपके पास लंबा अनुभव है पूरा, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के साथ आप खड़े हुए, तो आपने निश्चय ही सारा यदि साहित्य उठा के देखा जाए, कहानियां उठा के देखी जाए, तो आपकी कहानियों का मूल स्वर वहीं जाता है, जो बात आप आत्मा और शरीर
2: मतलब
1: की कर रहे थे.
2: मेरा संपर्क जैनेन्द्र अज्ञे और इन्होंने निर्मल वर्मा और इन लोगों से रहा. ये बात सही है कि सबकी और शायद बहुत ज़्यादा दिनों तक और गंभीरता से अपने को विस्खलित किए बिना जो कहानी या किसी भी साहित्य की विधा में लगा रहता है उसकी एक अपनी शैली विकसित होती है, क्योंकि 30-40 साल का समय है उसके पास, और वो कितनी अलग अलग किस्म की होती है. प्रेमचंद जी को लें तो उनके संपर्क में जो भी आता था कहानी उनकी हो जाती थी और जो दिखाई देता था उस पर. जैनेन्द्र जी एकदम अंदर चले जाते थे. जैनेन्द्र जी जेल कई बार गए, उन्होंने जेल का कभी जिक्र नहीं किया, जबकि प्रेमचंद कभी जेल में नहीं गए, उनमें आश्रम रहे. ये अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं. मुझे जो इन सब में जो एक संतोष मिला वो शैलेश मटियानी की कहानियों में मिला. उनके यहाँ ये है कि अंदर के जगत का भी उतना ही चित्रण है और बाहर का भी है. निर्मल वर्मा में बाहर का कम है, जैनेन्द्र जी में अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, इस तरह प्रेमचंद में अंदर का नहीं है. प्रेम की कहानी उनके यहाँ मुश्किल से मिलेगी, लेकिन ये जो शैलेश मटियानी, इसलिए मैंने एक जगह कहा भी था, लिखा भी है मैंने उस पर कि प्रेमचंद और जैनेन्द्र का अद्भुत मिश्रण है शैलेश मटियानी. उनकी प्रेत मुक्ति, अर्धांगिनी, महमूद, जिसमें मुस्लिम परिवेश में वो व्यक्ति बुनियादी तौर पर जो ब्राह्मण था वो कैसे मुस्लिम परिवेश में घुस जाता है और वैसा प्रामाणिक तस्वीर पेश करता है, तो ये वही होता है।

0: है कि दूसरे की यातना और संवेदना से आप अपने को मिला लीजिए। जहाँ तक मेरी, आपने कहा था तो बात कर ही चुका हूँ रचना प्रक्रिया पर, मुझे दर्द है जो खींचता है, दुख। तो जब तक किसी पात्र में मुझे वो दुख नहीं दिखाई देता, कहानी नहीं बनती। और मेरी कहानियाँ काल्पनिक नहीं हुई। अब उनसे साथ संपर्क बना बना के फिर उसके दुख की जड़ तक जाने की कोशिश करना और उससे फिर कहानी लिखना, और वो अपने आप अपना शिल्प तय करके अलग आती है। मुझे कोई उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ता, सिर्फ शिल्प के लिए आग्रह से या सिर्फ विषय तय करके कि मुझे इसी पर लिखना है। मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी, हमेशा बाहर से कहानी आई तो यथार्थ भी उसमें आ गया अपने आप।
1: शशांक जी, अभी आपकी एक किताब आई थी कहानी के पास, और कहानी को लेकर आपने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें उठाई हैं, अपने अनुभव और दूसरे कहानीकारों को लिया, रचनाकारों को लिया, और कहानी की शुरुआत से लेकर बाद में, चाहे नामवर सिंह जी हों, कमलेश्वर हों, गोविंद जी हों, आप हैं, या बीच के तमाम नाम मैं छोड़ रही हूँ, कि उन्होंने कहानी के तमाम तत्वों पर बात की है। तो क्या ये जो आलोचना है, आलोचक की एक दृष्टि है, उसने क्या कहानी के स्वरूप और संवेदना में कहीं कोई इस तरह की चीज़ वो की जिससे कि हमारी कहानी की जो मूलता प्रवृत्ति या प्रकृति कही जाती है उसको कहीं क्षति पहुंची है क्या?
2: देखिए, मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था डॉक्टर धनंजय वर्मा पे जी। उसका शीर्षक ही था कि आलोचना सभी चाहते हैं, आलोचक नहीं
1: जी।
2: क्यों? क्योंकि हम अपनी रचना पर क्या प्रकाशमान भासमान हो वो तो चाहते हैं, मगर अंदर क्या कमियां हैं वो कम लोग चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करते हुए हिंदी साहित्य में रिव्यू, समीक्षा की बजाय परिचय और एक कॉलम का अखबारों में, किताबों में, मैगजीनों में होता है। मगर जिसने श्रम पूर्वक कहानी पर चर्चा करनी हो ये होना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदी में लोगों ने जो आलोचना की है उसके टूल्स जो हैं, एक तो विदेशी हैं और वो कविता के टूल्स हैं जो कहानी पे लाए जा रहे हैं, खासतौर पर नामवर सिंह जी पे ये आरोप लगता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि क्या प्रतिमानों का होना जरूरी है? जब तक अच्छी रचना नहीं होगी तो प्रतिमान कहाँ से बनेंगे?
1: बिल्कुल सही।
2: और दूसरा, यदि प्रतिमान नहीं है तो आप एक वेगवान घोड़ों को कैसे आप छोड़ देंगे? मगर ऐसा नहीं है कि हिंदी में आलोचना नहीं है। यदि आप देखें तो देवी शंकर अवस्थी, जिनकी इत्तेफाक से किताब का नाम ही है हिंदी कहानी स्वरूप पर संवेदना, ये उनकी किताब का नाम है। और इसी तरह जब यदि आप देखें कि चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और आपके पास ऐसे कई कहानियों पर लिखने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 30 साल पहले कहानीकारों ने कहानी पर ज़्यादा विचार किया। असगर वजाहत ने विचार किया, कमलेश्वर ने विचार किया, राजेंद्र यादव ने किया, और जब आप वहाँ खड़े होते हैं इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक यदि सबकी रीडर्स बनाई जाएँ, कहानी की आलोचना का सार करें, तो मुक्तिबोध से यदि आप शुरू करें तो आपके पास बात करने के लिए बहुत है। और सचेत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर अभी लिखी जा रही कहानियों में लेखक किससे अच्छा लिखा है और किसमें क्या होना चाहिए। अब जैसे राजेंद्र यादव की बात मैं सहमत हूँ, एक बहुत लंबा लेख था उसमें मुझे एक चीज़ लगती थी कि कहानी से कल्पना शक्ति को बाहर कर दिया गया है और वर्णन की अधिकता से अपठनीयता बढ़ी है।
0: तो पत्रकारिता की तरफ पटक देना होगा, कहानी को, कल्पना को एकदम तो आप वो कर दें तो साहित्य क्या है?
2: तो कल्पना तो बिल्कुल ही नहीं है अब, और वर्णन इतना लंबा लंबा होता है। और एक अभी मैं किसी गोष्ठी में था जिसमें लेखिका ये बता रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत की है और इसमें मुझे डॉक्टर ने मदद की और गूगल से ये मदद मिली।
1: अच्छा।
2: तो मैंने कहा कि एक पाठक को गूगल से मतलब नहीं है।
1: सही बात।
2: उस मरती जा रही स्त्री का जो किसी अन्य से प्रेम है वो आखिरकार उसे कहाँ ले गया? उसमें गूगल मदद नहीं करता, उसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व मदद करता है, लिखने की उसकी प्रतिभा वो करती है।
0: एक बात उर्मिला जी मेरे दिमाग में आई कि इस स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं स्वरूप में एक जो दिखता है कहानी का, उसमें भाषा भी बड़ी चीज है, और भाषा के लिए भी वही बात आती है।

0: करते हैं कि कभी कभी जब भाषा के लिए आग्रह अतिरेक में चला जाता है तो वो संवेदना को
1: शरित करता
0: है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके मित्र जयश्री राय हैं, बहुत अच्छी भाषा है उनके पास, लेकिन उसका मोह इतना ज्यादा आ जाता है कहानियों में कि वो बहुत महसूस करके लिखती भी हैं कि जितना जो महसूस किया गया है उस पैनेपन से नहीं आता है और पाठक भाषा में उलझ के रह जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारी संवेदनात्मक तीव्रता मैं महसूस कर रहा हूँ एक कहानी को लेकर के तो उसमें क्लिष्ट

0: महसूस करके लिखती भी हैं कि जितना जो महसूस किया गया है उस पहनेपन से नहीं आता है और पाठक भाषा में उलझ के रह जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारी संवेदनात्मक तीव्रता में महसूस कर रहा हूँ एक कहानी को लेकर के तो उसमें क्लिष्ट भाषा ही आए, कोई जरूरी नहीं। वो सरल भाषा में भी आप ऐसी चीजें कह सकते हैं बशर्ते संवेदनात्मक वेग हो, वो अपने आप वो भाषा तय कर देगा।
1: यानी संवेदना के साथ भाषा का उस तरह होना जरूरी है।
2: देखिए अभी हम लोगों ने बातचीत की उसमें स्पष्ट रूप से बात निश्चित आई है कि सभी चीजों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है।
1: कहानी तो कुल मिला के बनती है।
2: और मेरी एक छोटी सी कहानी जिसमें मैंने ये कहा है कि वो एक गोभी पत्ते गोभी को एक एक चीज निकाल रहा है आलोचक, ये कला है ये कत्य है ये बाद में डंठल छोटा सा बन जाता है। तो हमको डंठल की जरूरत नहीं है, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि एक बड़ा लेखक अपने चरित्रों और अपने भाषा और उसको कैसे वो व्यवहारगत सामने लाता है। आज क्यों चेखा को हम
1: बार बार सच बात है
2: केवल इसलिए कि उसमें एक ऐसी चीज है मानवीय सेंसिबिलिटी की इतनी अंदर तक जाने की कि वो स्त्री मरी हुई है वो उसको लेके ढो रहा है और वो घोड़े से बात कर रहा है क्योंकि इसको अपनी बातचीत करने के लिए कोई आदमी नहीं है। आज की तारीख में इतना सब कुछ है, आप दिन में 1000 व्हाट्सएप करते हैं, मगर दरअसल आपकी बातचीत कुछ नहीं सुन रहा है, आपको एक घोड़े की जरूरत है जो आपको अंदर तक हिला कर रख दे। और कहानी में ये ताकत है जो आपको स्तब्ध और विस्मय करे और इस ताकत को निश्चित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत है।
1: सही बात है। और ये विषय इतना बड़ा है और इस पर घंटों लंबी चर्चा की जा सकती है, पूरा एक वैश्विक परिवेश है हमारा हिंदी का भी है और दो वरिष्ठ कथाकार हमारे बीच हैं जिन्होंने आज कहानी की संवेदना और स्वरूप पर इतनी अच्छी बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद और मिला
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक,
5: आकाशवाणी है ना।
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: चूचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक पंचतंत्र की छठवीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा सप्रेम नमस्कार। पंचतंत्र के मित्रभेद प्रकरण को आप सब सुन रहे हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संजीवक और पिंगलक की मित्रता को तोड़ने के लिए दमनक योजना बनाता है, जिसके अनुसार पिंगलक संजीवक से युद्ध ना करे और जंगल छोड़कर भाग जाए। दमनक संजीवक को टिकटिब की कथा सुनाता है।
1: किसी समुद्र के किनारे टिटेरियों का एक जोड़ा निवास करता था। कुछ दिनों बाद टिटबी ने गर्भ धारण किया। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा,
2: कांत, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अतः आप किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो निर्विघ्न हो और जहां पर मैं शांतिपूर्वक अपने अंडे दे सकूं।
3: प्रिय, हम समुद्र के किनारे इतने रमणीय स्थान पर रहते हैं, ये जगह हमारी परिचित है। तुम्हारे प्रसव के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान और क्या होगा? तुम्हें यहीं प्रसव करना चाहिए।
2: आपकी बात मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आया करता है, वो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान की खोज कीजिए, कहीं मेरे बच्चों को यहाँ कोई हानि हो जाए, फिर हम क्या करेंगे?
3: नहीं भद्रे, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है।
4: उस समुद्र का सामर्थ्य नहीं, वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए।
2: मैं जानती हूँ स्वामी, आप वीर हैं, परंतु समुद्र के समक्ष अपनी वीरता का परिचय दिखाना मूर्खता है।
3: इस तरह शंका करके तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रही हो प्रिय। तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो, पराजय और तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग कर कायर शिशु को जन्म देकर यदि स्त्री स्वयं को पुत्रवती समझती है तो बांझ किसे कहेंगे?
0: टिटिब के अहंकार भरे वचन को सुनकर समुद्र ने सोचा, इस तुच्छ पक्षी को कितना अधिक घमंड है। ये भी है कि आकाश के गिरने की आशंका में टिटहरी अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है। वो सोचता है गिरते हुए आकाश को अपने पैरों से रोक लेगा। तो समुद्र ने उस टिटहरी को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके अंडों का अपहरण कर लिया। जब टिटिबी को प्रसव स्थान खाली मिला, वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने पति से बोली,
4: भद्रे, भद्रे, क्या तुम मुझे कायर समझती हो? मेरे बुद्धि बल को देखो, अभी

0: शेष पापी समुद्र को ही सोख लेता हूँ।
1: परंतु समुद्र के साथ तुम्हारी समता ही क्या है जो उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो? तुम्हारा उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपनी तथा शत्रु की शक्ति को जाने बिना ही जो युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो आग की ओर बढ़ने वाली पतंग की तरह आत्मविनाश का कार्य करता है।
0: नहीं प्रिय, नहीं, ऐसी बात ना कहो। जिनके पास उत्साह एवं विश्वास रूपी शक्ति है, वे शक्तिहीन होते हुए भी अपने शक्तिशाली शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। तुम देखना, मैं अपनी चोंच के द्वारा इस पापी समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर इसे शुष्क बना दूंगा।
1: हे कांत, 900 नदियों को लेकर गंगा जिससे सतत मिलती रहती है, और सिंधु नदी भी 900 नदियों को लेकर मिलती है, उन 1800 नदियों द्वारा सतत भरे जाने वाले विशाल समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे सुखा पाओगे?
0: प्रिय, जब तक हिम्मत के साथ कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरुषार्थ करता है, वो लड़ाई भी निष्फल नहीं होती।
1: यदि तुमने समुद्र के साथ विग्रह करने का सोच ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी बुला लो और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर ही उसके साथ युद्ध करो।
0: अवश्य प्रिय, जो तुम कहती हो वही करूंगा। अपने मित्रों के साथ ही समुद्र का अंत करूंगा। वक्त, सारस, मयूर सभी को बुलाऊंगा।
2: अब उस टिटहरी ने अपने सारे साथियों का आवाहन किया, पूरी कथा सुनाई, परंतु सबने ये राय दी कि समुद्र को दंड देने में वो असमर्थ हैं। तभी मयूर ने सलाह दी कि क्यों ना अपने स्वामी पक्षीराज गरुड़ से निवेदन करें। ये सुनकर सभी पक्षियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से गरुड़ के पास जाकर निवेदन किया।
0: महाराज, अनर्थ हो गया, पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप हमारे स्वामी हैं, आपके रहते हुए मुझ जैसे सदाचारी और निर्दोष टिटहरी के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र स्वेच्छा पूर्वक अन्य पक्षियों को भी मार ही डालेगा।
3: अरे, तुम लोगों ने इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? मैं तो सोच रहा था तुम सब अपने अपने स्थान पर सुखपूर्वक होगे।
0: नहीं प्रभु, हम सब बड़े दुखी हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
3: आप सब निश्चिंत रहें, मैं उस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे सोख डालूंगा।
4: गुरुवर को मेरा प्रणाम।
3: अरे, आप तो श्री भगवान के दूत हैं, कहिए क्या संदेश है?
4: गरुड़ जी, स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। देवों के कार्य से भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
3: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे? उनसे जाकर कहिए वो मेरे स्थान पर किसी अन्य वाहन को रख लें, और प्रभु से मेरा प्रणाम भी कह देना।
4: ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर?
3: उचित ही कह रहा हूं। जो स्वामी सेवक के गुणों की कदर नहीं करता, उसकी सेवा में रहना सेवक की मूर्खता है।
4: गुरुवर, इससे पूर्व कभी भी भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का उच्चारण आपने नहीं किया था। प्रभु ने कब आपका अपमान किया है जो आप इतने विगलित हो रहे हैं?
3: श्री भगवान का आश्रित होने के कारण ही समुद्र ने मेरी प्रजा में से एक टिटेरी के अंडों की चोरी की है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए आप अविलंब जाकर भगवान से मेरी प्रार्थना कह दें।
5: वत्स गरुड़।
3: भगवान, आप स्वयं उस तुच्छ सेवक के पास आए हैं? मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अज्ञानवश मैंने आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे उचित दंड दीजिए।
5: नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे तनिक भी कुपित नहीं हूं। क्या हमें ज्ञात नहीं कि आप हमारे कितने भक्त हैं? आप मेरे साथ चलें, मैं टिटहरी के अंडों को अविलंब समुद्र से लेकर देता हूं।

0: जो आज्ञा प्रभु।
1: दुरात्मन समुद्र, तत्काल टिटहरी के अंडों को वापस करो, अन्यथा बाण से तुम्हें सुखाकर बंजर भूमि बना दूंगा।
2: भयभीत समुद्र ने तुरंत अंडों को लौटाकर गरुड़ से क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ अमरावती रवाना हो गए। इस कथा को सुनकर संजीवक ने दमनक से कहा,
3: अम्मा मित्र दमनक, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है। वो मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझ पर कभी अप्रसन्न नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ।
4: भद्र, इसमें जानने की क्या बात है? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे विश्वास के लिए यही पर्याप्त है कि यदि वो तुम्हें देखकर भ्रिकुटियां चढ़ाकर ओटों को जीभ से चाटे तो समझ लेना वो तुमसे रुष्ट है। इस बात का ध्यान रखना कि पिंगलक को ये खबर ना हो कि मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। यदि हो सके तो संध्या के समय तक यहां से पलायन कर जाओ।
5: आ गए दमनक भाई, मैं तो चिंता ही कर रहा था।
4: अरे चिंता किस बात की है भैया, जब मैंने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो समझो वो पूरा हो गया।
5: पर दमनक शीघ्र बताओ तुमने किया क्या?
4: वहां जाकर मैंने भेद नीत का बीजा रोपण कर दिया है।
5: अच्छा,
4: इसके आगे भागे जो करेगा वो होगा। हमने तो अपनी चाल चल दी है।
5: कैसी नीत का बीज डाला तुमने?
4: मैंने अपनी मिथ्या बातों के द्वारा जो भेद डाला है, भविष्य में आप उन्हें एक साथ नहीं देख पाएंगे।
5: ये तुमने ठीक नहीं किया। दोनों स्नेह पूर्वक सानंद रहते थे, आपने उन्हें कोप के समुद्र में फेंक दिया। सच है कि सीधे साधे लोगों को दुख देने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, परंतु अब सहमति और समर्थन संभव नहीं।
4: अरे आप नीत शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं।
5: क्या कहते हैं?
4: जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही शांत नहीं करता, वो बाद में पछताता है। क्यों, आपको याद नहीं, हमारा मंत्री पद छुड़ाने वाला भी संजीवक है। मैंने उसे अभयदान देकर पिंगलक के पास पहुंचाया, उसकी मित्रता करवा दी, फिर भी उसने हमें मंत्री पद से हटवा दिया। अतएव मैंने विवश होकर उसके वध का उपाय किया है।
5: परंतु दमनक, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
4: मेरे इस उपाय को आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा, आप कोई संदेह ना करें।
5: पता नहीं भैया क्या होने वाला है।
4: करकट जी, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। मेरी माने तो आप महाभोज की तैयारी कीजिए। भोजन के साथ साथ हमें मंत्री पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अब इतने सारे लाभ वाले उपायों को मैंने सिद्ध किया है, अपनी मूर्खता के कारण आप इसे समझ नहीं रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं।
5: अपने को अत्यधिक बुद्धिमान समझने की भूल मत करो। आगे आगे देखो क्या होता है।
3: अम्मा, ये मैंने क्या कर डाला, स्वयं शाक भक्षी होते हुए भी

0: मांस खाने वाले के साथ मित्रता की और उसका दास बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हां, एक उपाय है, पिंगलक के पास चलता हूं, हो सकता है शरणागत समझकर वो मेरी रक्षा करे।
1: ये सोचकर संजीवक पिंगलक के पास गया। पिंगलक को एक चट्टान पर बैठा देखकर डर गया। उसे दमनक की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पिंगलक ने भी उसे देखा और तत्काल संजीवक पर टूट पड़ा।

पिंगलक के तीखे नखों के आघात से आहत होकर संजीवक ने भी अपने सींगों से उसके उदर को फाड़ डाला। उधर करकट और दमनक छुपकर पूरी घटना देख रहे थे।

0: मूर्ख दमनक, इन दोनों मित्रों में विरोध उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी नीत से स्वामी का विनाश हो रहा है। उनके मरने में अब संदेह नहीं। किस बुद्धि से तुम मंत्री बनना चाहते हो? दंड में विश्वास रखने वाली तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। नीच पुरुष सिर्फ दूसरों का कार्य बिगाड़ना ही जानते हैं। वैसे तुम जैसे मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ?
1: अब मैं क्या करूं?
0: दूसरों को विपदा में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता। सुनो दमनक, किसी नगर में धर्म बुद्धि तथा पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ थे, परंतु दोनों के नाम के अनुसार स्वभाव में भी बहुत अंतर था। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा,
2: हे भगवान, कैसे दिन कटेंगे? मेरे पास तो सुख सुविधा के कोई भी साधन नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मैं मूर्ख और दरिद्र दोनों हूं, क्यों ना विदेश जाकर धन उपार्जन करूं। मैं धर्म बुद्धि को भी साथ ले लेता हूं, यह भी कमाएगा। बाद में इसे ठग कर इसकी भी कमाई ले लूंगा। कल ही मैं उससे बात करता हूं।
3: आहा, आज तो आनंद आ गया। वाह, बड़े दिनों के बाद लस्सी बनी है, क्या स्वाद है। वाह वाह,
4: मित्र धर्म बुद्धि, अकेले अकेले ही आनंद ले रहे हो भाई। अपने भाई जैसे मित्र को याद नहीं किया?
3: आओ मित्र, आओ आओ आओ, मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था।
4: चलो, मेरी याद आई तो सही।
3: ऐसा ना कहो मित्र, मैं कुछ व्यस्त था, परंतु याद तुम्हें प्रतिदिन करता था। अच्छा, अब छोड़ो, ये लो ठंडी लस्सी पीकर दिमाग को ठंडा कर लो। मित्र पर इतना क्रोध ठीक नहीं।
2: देखो धर्म भाई, इस छोटे से नगर में रहकर यदि हमारा जीवन यूं ही बीत जाए तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में किन बातों को याद करेंगे?
3: मित्र, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा विस्तार से बताओ।
2: विस्तार से क्या बताना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्यों ना विदेश चलकर हम दोनों कोई व्यापार करें।
3: बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, एक शुभ मुहूर्त देखकर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़ेंगे।
5: और फिर दोनों ने शहर जाकर खूब धन कमाया। धर्म बुद्धि के प्रभाव से इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धनोपार्जन किया। कुछ माह बाद दोनों अपने कमाए हुए धन को लेकर प्रसन्न एवं उल्लसित मन से घर को लौटने लगे।
2: वाह, धन कमाकर तो आनंद आ गया, पर धर्म बुद्धि के धन को भी अगर हथिया लूं

0: तो क्या बात है?
1: क्या सोच रहे हो मित्र? कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो।
2: मैं सोच रहा था इस संपूर्ण धन को लेकर घर चलना ठीक नहीं, कुटुंबजन या भाई बहन मांगने लगेंगे।
1: तो फिर क्या करें पाप बुद्धि?
2: मेरी मानो तो यहीं घने जंगल में इसे गाड़ देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलें। फिर जब जैसी आवश्यकता होगी धन को खोद कर ले लेंगे।
1: ठीक है मित्र, जैसा उचित समझो करो। आओ इसके लिए गड्ढा खोद लेते हैं।
2: हाँ। ऐसा। और थोड़ा सा। हाँ।

0: धन को जमीन में गाड़ने के बाद वे दोनों अपने अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात को पाप बुद्धि ने वन में जाकर उस गाड़े हुए धन को निकाल लिया और गड्ढे को भरकर चुपचाप लौट आया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि से बोला,
1: मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, धन के अभाव में हम दुखी हैं। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ धन खोद लाया जाए।
2: हाँ चलो। हाँ यही तो था।
1: हाँ,
2: यही तो वो पेड़ है।
1: यही
2: स्थान है, खोदते हैं।
1: बस बस बस, थोड़ा सा और खोद लेते हैं।
2: अरे अरे, ये क्या
1: है?
2: ये खींचो खींचो। अरे ये तो खाली है। अरे
3: अरे धर्म बुद्धि, अधिक ढोंग ना करो, इस धन को तुमने ही चुराया है। मैं पहले ही संदेह कर रहा था, ये गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ जान पड़ता था।
4: दुरात्मन, ऐसी बात कभी ना कहना। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता हूँ।
3: अरे छोड़, बड़े देखे तेरे जैसे धर्मात्मा, नाम की आड़ लेकर मुझे ठगने की चेष्टा व्यर्थ है। चुपचाप मेरे धन को लौटा दे।
4: पापी, जो धर्म में विश्वास करता है वो दूसरों के धन को धेले के समान जानता है।
3: अपने धर्म को अपने पास रख, शीघ्रता से मेरा धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं न्यायालय जाऊंगा।
4: न्यायालय का डर किसे दिखाता है, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलता हूँ।
0: इस प्रकार दोनों व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए न्यायालय पहुँचे और परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि वृक्ष देवता की गवाही ली जाए। पाप बुद्धि ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र घर गया और अपने वृद्ध पिता से बोला,
1: पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। अगर आप चाहें तो वो धन हमारे पास स्थिर रह सकता है।
2: धन चुरा कर तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब लग रहा है कि मेरा पुत्र वयस्क हो गया है, परंतु शीघ्र बता कि मुझे करना क्या है जिससे हम उस धन को अपना बना सके।
1: हे तात, कल प्रातःकाल न्यायाधीश गण मुझे और धर्म बुद्धि को लेकर उस वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां हमने धन छुपाया था। आपको वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ जाना है और पूछने पर बताना है कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है।
2: ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज रात में ही जाकर पेड़ के कोटर में छुप जाता हूं।
1: पिताजी, आइए आइए आप सब आइए। ये है वो वृक्ष, आप इस वृक्ष देवता से पूछें। हे वन देवते, आपने तो सब देखा है, आप ही बताएं हम में से चोर कौन है।
5: सज्जनों, आप सब ध्यान से सुने, मेरे नीचे छिपाए गए धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है।
2: ये झूठ है, झूठ है, ये नहीं हो सकता।
3: क्या झूठ है, क्या वृक्ष देवता भी असत्य बोलेंगे? अब तो सच

0: सबके सामने आ गया है।
1: उधर न्यायाधीशों ने आश्चर्य से पूरे दृश्य को देखा और सुना, फिर धर्म बुद्धि को चोरी का दंड देने पर विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच धर्म बुद्धि ने शमी वृक्ष के उस कोटर में आग लगा दी।
2: अरे अरे जल गया, अरे मारे, अरे अरे बचाओ, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे बचाओ, जल गया।
1: पाप बुद्धि का पिता कराहता हुआ कोटर से बाहर निकल आया। फिर क्या था, पाप बुद्धि से धन छीन कर धर्म बुद्धि को दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर करकट ने दमनक से कहा,
3: दमनक, तुमने पाप बुद्धि की तरह स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो सोचा, किंतु होने वाली हानि पर विचार नहीं किया। तुम अत्यंत तुच्छ सोच वाले हो, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना।
1: इधर करकट और दमनक वाद विवाद में व्यस्त थे और उधर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था। पिंगलक के प्रखर नखों के आघात से आहत होने के कारण संजीवक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे निर्जीव देखकर पिंगलक बहुत दुखी हुआ।
4: मैंने निर्दोष संजीवक को मारकर अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपनी सभा में सदैव उसकी प्रशंसा करता रहा हूं, अब मैं उन सभासदों के सामने क्या उत्तर दूंगा।
5: देव, आपकी ये नीति अत्यंत कायरतापूर्ण है। आप एक राजद्रोही और शाकाहारी जीव को मारकर इस प्रकार शोक कर रहे हैं, राजाओं को ये बात शोभा नहीं देती।
1: इस प्रकार दमनक के समझाने पर पिंगलक ने संजीवक के मरण संबंधी शोक को छोड़ दिया और फिर दमनक को मंत्री पद देकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्रोतागण, पंडित विष्णु शर्मा ने जो 5 प्रकरण बनाए उनमें से प्रथम प्रकरण मित्र भेद यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे मित्र संप्राप्ति, परंतु अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।
6: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 6ठी कड़ी, DTH के ऑडियो चैनल पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे के दो दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लिया। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ समेत 250 से अधिक लोग शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60 पर प्रतिशत बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती बिजली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड में जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छा अनुदान की राशि किसी भी एक मामले में एक वर्ष में ₹25,000 किए जाने के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वाग्देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खेल में सबसे बड़ी जीत क्या होती है? ट्रॉफी जीतना, रिकॉर्ड बनाना, या फिर ऐसा इंसान बनना जिसे हारने वाला भी सम्मान दे। यही भावना हमें सिखाती है फेयर प्ले, यानी ईमानदारी, सम्मान और सही भावना के साथ खेलना। और इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त तुषार तिमिल सेना। स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

आयुष्मान खुराना की आवाज़ में सुना ये गीत फिल्म विकी डोनर से। गीत संगीत था आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का। दोस्तों, हर साल 19 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है विश्व फेयर प्ले दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल जगत में ईमानदारी, गरिमा, खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप और बिना किसी भेदभाव के आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 जुलाई 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 19 मई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 19 मई 2025 को पहला आधिकारिक विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया गया। फेयर प्ले केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है। जब खिलाड़ी नियमों का पालन करते हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करते हैं और जीत के साथ विनम्रता तथा हार के साथ धैर्य दिखाते हैं, तभी खेल की असली सुंदरता सामने आती है। आज के समय में जहां जीतने की होड़ बहुत बढ़ गई है, वहां यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है सही रास्ता चुनना, और ईमानदारी से खेला गया खेल हमेशा सम्मान दिलाता है। खेल हमें टीम वर्क, अनुशासन और भाईचारे की सीख देता है। एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत ले। दोस्तों, खेल के साथ साथ हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फेयर प्ले के कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसे खेल में जब किसी खिलाड़ी से फाउल होता है तो वह उसे स्वीकार करता है। आम जिंदगी में भी अपनी गलती को बिना किसी अहंकार के मान लेना और माफ़ी मांगना फेयर प्ले है। जब कोई आपसे असहमत हो तो उसकी बात को बिना काटे धैर्य से सुनना। आप किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात रखना ही असली खेल भावना है। किसी दूसरे के काम या आइडिया का श्रेय खुद न लेना। जिसने मेहनत की है उसे उसका हक और तारीफ मिलना ज़रूरी है, और ये भी फेयर प्ले है। दोस्तों, आम जिंदगी में फेयर प्ले का सीधा सा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि खेल हो या जीवन, हम हमेशा निष्पक्षता, सम्मान और ईमानदारी की भावना को अपनाएंगे, क्योंकि असली विजेता वही है जो इंसानियत और खेल भावना दोनों के साथ लेकर चलता है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ बातें फेयर प्ले दिवस के ऊपर। तो आइए कार्यक्रम में

शान श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुना ये गीत फिल्म पीके से। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। तो श्रोताओं, अब तैयार हो जाइए अपने साथ कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि अब समय है आपके लिए रोजगार सूचना का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है SBI अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों के लिए। आज से यानी 19 मई से आवेदन पत्र जारी किए जा चुके हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून। मैं पुनः बताऊं कि पदों की संख्या है 7,150 और आज से यानी 19 मई से आवेदन पत्र जारी हो चुके हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की 8 जून। और अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। तो साथियों, अब समय है कार्यक्रम में अगले गीत का।

0: कुणाल गालजावाला की आवाज़ में सुने गीत फिल्म काल से। गीतकार थे शब्बीर अहमद और संगीत था सलीम सुलेमान का। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वह जोश होता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वैज्ञानिक या किसी बड़े क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी चिंता बन जाती है पैसों की कमी। इसलिए हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कई सपनों को उड़ान देता है, और वह है एजुकेशन लोन, यानी शिक्षा ऋण, यानी वह आर्थिक मदद जो किसी छात्र को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने नहीं देती। यह एक ऐसा लोन है जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी होनहार छात्र की पढ़ाई न छूटे। यह लोन केवल कॉलेज की फीस तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें किताबें, हॉस्टल और अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं तो हवाई यात्रा का टिकट भी शामिल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या लोन लेना सही है? तो श्रोताओं, अगर लोन सही उद्देश्य के लिए लिया जाए और पूरी समझदारी से लिया जाए तो यह बोझ नहीं बल्कि भविष्य के लिए किया गया एक निवेश होता है। श्रोताओं, देश के भीतर किसी भी मान्यता प्राप्त कोर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि के लिए लोन लिया जा सकता है, और विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए इसमें आमतौर पर लोन की राशि अधिक होती है। दोस्तों, लोन चुकाने की प्रक्रिया कोर्स पूरा होने के 6 महीने से 1 साल बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होती है। पढ़ाई के दौरान छात्र को EMI देने की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि इस दौरान साधारण ब्याज जुड़ता रहता है। तो श्रोताओं, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को खुद आकार दीजिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती, वह इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, सोच को बड़ा करती है और जीवन को नई दिशा देती है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें एजुकेशन लोन पर। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
1: हाँ, यही तो है सब निशानियां। हाँ, इसी का नाम।

शान की आवाज़ में सुन रहे थे आप फिल्म राजू चाचा से। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था जतिन ललित का। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

शान की आवाज़ में सुन रहे थे आप फिल्म राजू चाचा से। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था जतिन ललित का। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना ये गीत फिल्म कुदरत से। गीतकार थे मजरू और संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलेंगे नई सोच नई उम्मीद के साथ। इजाज़त दीजिए आपके रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना को। नमस्कार।

आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उड़ता पंजाब से, शाहिद माल्या की आवाज़, श्री शिव कुमार बतलवी के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत।

मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से। बोल लिखे मिथुन ने और संगीतबद्ध किया मिथुन ने ही। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। मनोज मुंतशिर के लिखे बोल, जीत गांगुली का संगीत, अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ें हैं और फिल्म का नाम है रुस्तम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। पलक मुछाल की आवाज़, मनोज मुंतशिर के बोल और अमाल मलिक का संगीत।

अरिजीत सिंह, मिथुन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म शिवाय से। सैयद कादरी के बोल और मिथुन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म शिवाय के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक।

0: हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, अब आपके लिए एक विशेष सूचना। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनीतिक दलों, समिति, प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है, ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर ना हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुँचाई जा सके। एतदर्थ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है, ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अतः मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ। समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि का घेर के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति या क्षतियों की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना या करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना आदि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। सूचना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे के दो दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लिया। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ समेत 250 से अधिक लोग शामिल हुए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानून मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के अंतर्गत मामलों की पहचान कर उनके तेजी से निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना केस में उनका पक्ष पूछा है। आप नेताओं मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। रिटायर्ड जज की बहू त्रिशा शर्मा की मौत के मामले पर एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, लुकआउट नोटिस के लिए डीसीपी भोपाल कमिश्नरेट और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार किया गया है। इस प्रक्रिया पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद

0: वर्षावनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमरेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
1: जी।
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे,

0: रे। क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।

0: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको,
1: अरे मैं, तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
0: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
1: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
1: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
0: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं करने देंगे।
9: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा

0: लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
6: सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
7: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से?
8: मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
5: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत।

0: और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल

0: साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कलंक से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून क्या है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, आइए अब आपको ये अगला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और साथियों की। अन्विता दत्त के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

याशिता शर्मा और मनीष कुमार टेपू और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल धड़कने दो से। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म डंकी से। अरिजीत सिंह की आवाज़, स्वानंद किरकिरे और आई पी सिंह के लिखे बोल, साथ ही प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म धूम 2 से। सुखबीर, सोनम चक्रवर्ती और साथियों की आवाज़ें हैं, प्रीतम के बोल और समीर के लिखे बोल।

0: श्रोताओं, फिल्म धूम टू के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड

0: स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। वक्त हो रहा है शाम के 7:05 और ये समय होता है कार्यक्रम विवरण का। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा की भेंट वार्ता। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और रात्रि 10। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 20 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की

खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे कय्यूम मुनव्वर द्वारा गाई गजलें। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे पंडित M.S. गोपाल कृष्णन का वायलन वादन, राग होगा अहीर भैरव। 10:30 पर श्रोताओं इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण 12:00 और 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का 7वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00, 5:33, 6:30 और 8:15 पर। 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण 7:21 पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे खरीफ फसल की बुवाई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य विषय पर भेंटवार्ता। 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे रेडियो नाटक क्या ऐसा होगा। इस नाटक के लेखक होंगे मधुराजन और प्रस्तुतकर्ता होंगे राकेश ढूंढियाल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित M.S. गोपाल कृष्णन का वायलन वादन, राग होगा भोपाली। 10:30 पर श्रोताओं ये थे कल यानी 20 मई 2026 बुधवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी रेबीज और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 22 शहरों में तापमान 44 के पार, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के सम्मान के नजरिए से भारत और नॉर्डिक देश स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश बढ़ा है।

0: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: सम्मेलन से पहले श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात भी की। पांच देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। अब श्री मोदी 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल में बस्तर देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2031 तक बस्तर के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहाँ बैंकिंग, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हो और लगातार हमलों से जन सुरक्षा खतरे में हो, वहां ये कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोर्ट ने कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% पर बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती पिछली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वागदेवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वागदेवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहाँ स्थापित किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचल की बच्चियां सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें चलाईं, जिससे कॉलेज आने वाली छात्राओं की संख्या 30 से बढ़कर 80% हो गई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल के सैकड़ों मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं है, जिससे नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में सेवा के बाद श्री खंडूरी ने ईमानदार और

पारदर्शी राजनीति का आदर्श स्थापित किया, वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक श्री खंडूरी का योगदान अमूल्य रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने आज भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का दौरा किया। यहां संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती और कृषि वैज्ञानिकों ने समिति को पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 11 सदस्यीय समिति दल के साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान की राशि बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 16,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद को एक साल में एक मामले में अधिकतम 25,000 रुपये तक की मदद दे सकेंगे। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन और सामाजिक न्याय विभाग की 252 संस्थाओं की निगरानी के लिए क्वालिटी ऑडिट मोबाइल ऐप लागू किया है। इसके जरिए वृद्धाश्रम, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौके पर फोटो खींचकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और संस्था को ग्रेडिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों की स्कूल से झिझक खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक ही परिसर में लाने का फैसला किया है। इस को-लोकेशन मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी से पहली कक्षा में जाना आसान और सहज हो जाएगा। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में आज पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर में दोपहर सड़कें सूनी दिखाई दी। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एसी ट्रेन मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ट्रेन को विदा किया। झाबुआ, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कटनी में जनजातीय समुदायों को शासकीय योजनाओं का 100% लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। आगर मालवा में कल हुई टीएल बैठक में जिला पंचायत सीओ ने जिले में गठित की जाने वाली विभागीय समितियों का शीघ्र गठन कराने के निर्देश दिए। नीमच शासकीय आईटीआई में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा मक्सी दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद यात्री बसों की सघन जांच की जा रही है। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। नर्मदापुरम जिले में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी अभियान चलाया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया जी बिन्नाजनों को आरती जी जी की राम राम पहुँचे। भैया रो देखो अपनी खेती किसानी को काम तो ऐसो है कि बरसई भर चलत रहते हैं, चाहे खूब घामो कड़ो हो, चाहे खूब वही बारिश हो रही हो और चाहे कितना उजाड़ो पड़ रहो, पर अपने काम तो लगे ही रहते हैं। चाहे कि अपन देखो कबों बुवाई चल रही है तो कबों कटाई चल रही है, और अब नहीं तो अपन को अपने खेत संभालने हैं, और कछु आधुनिक यंत्र ऐसे आ गए हैं जिनसे अपनों काम जो है बहुत सुविधाजनक बन जाते हैं। और उनकी सुविधा अगर अपन ले लेते हैं तो अपने काम में बहुत अपने एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपन को समय बच जाता है और उपज में भी वृद्धि हो जाते हैं। तो वैसे ही अपने कछु कृषि में सेंसरों को उपयोग करो जा रहा है जिनसे अपनी जो है फसलें अच्छी गुणवत्तापूर्ण भी मिल जाती हैं। कैसे अपन को मिट्टी के बारे में पता पड़ जाता है, जलवायु के बारे में पता पड़ जाता है, और सही समय पर अपन अपन फसलों की देख रेख कर पाउते हैं जिसे कम लागत लगत है, उपज में वृद्धि हो जाते हैं। वही में से एक IoT डिवाइस जो है मृदा की नमी को नाप लेते हैं, ऐसा ही NPK स्तर और PH तापमान और फसल के स्वास्थ्य को देख लेते हैं और डाटा को एकत्रित कर लेते हैं, और स्वचालित जो मशीनें हैं वो सिंचाई की सटीक और उर्वरक के उपयोग को भी मदद कराते हैं। जैसे मृदा नमी तापमान सेंसर जो है मिट्टी में पानी की कितनी मात्रा है और ऊखों कितनी और सिंचाई की ज़रूरत है ऊ के बारे में अपन को पता पड़ जाता है, जिससे पानी की जो बर्बादी है ऊखों अपन रोक सकते हैं। NPK और PH सेंसर से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितनी मात्रा में हैं और कितने अपन को देने हैं इसके बारे में भी अपन को पता पड़ जाता है। तो इनसे अपन को बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ी बात तो जो है कि अपने पानी, खाद, कीटनाशकों की बचत होते है, दूसरी अपन को उच्च स्तर की उपज मिल जाते है, देखभाल से अपन को अच्छो उत्पादन मिला है, और डाटा आधारित अपन निर्णय ले पाते हैं कि अपन को कहाँ पे किस तरीके के उपयोग करने हैं, और सबसे बड़ी बात है अपन की टिकाऊ खेती मिला है जिसे मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं उनको भी अपन कम कर सकते हैं। इन नई तकनीकों को अपना के अपन ना केवल अपनी आय को बढ़ा सकते हैं बल्कि खेती को और अधिक टिकाऊ और कुशल भी बना सकते हैं। और जब अपनी इतनी अच्छी खेती कुशल रहे तो अपन को मन करत है कि अपन और भी और अच्छे ऐसे जो अपन के पास आ रहे हैं आधुनिक यंत्र उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जैसे एक और सेंसर है मौसम सेंसर, जिसे हवा की गति, आर्द्रता और तापमान को माप के अपन कीटों को फसलों में रोगवे से रोक सकते हैं। पहले से अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अपने जो है खेतों में कीट ना फैलवें। और अब हो रहा है समय बुंदेली समाचारों को, सो अपन सुन लेते हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारण के संगे हम हैं आरती शर्मा। प्रधानमंत्री को दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टून फास्टर डॉटर से द्विपक्षीय बैठक करी। नार्वे के 2 दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नार्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लाओ। समिट में 50 से ज़्यादा कंपनियों के CEO समेत 250 से अधिक लोग शामिल भए। जो शिखर सम्मेलन भारत और नार्डिक देशों के बीच टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत कर है। नार्वे यात्रा के दौरान भारत और नार्वे के विज्ञान और तकनीक साझेदारी को मजबूत करत भए 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी करे गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत करी। ई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करी। छत्तीसगढ़ सरकार ई बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लो। ई बैठक को मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठ के सुलझावे को है। पुलिस सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित करो। यह सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलावे के लाने दाऊगांव है। DGP कैलाश मकवाणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। तीर्थ दर्शन ट्रेन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष AC ट्रेन मां वैष्णो देवी के लाने रवाना हुई। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखा के ट्रेन को विदा करो और यात्रियों को पुष्पहार भेंट कर

0: पशु समतापी होते हैं, जिनको कि एक फिक्स टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन करना होता है। और जनरली हीट स्ट्रेस का मतलब होता है गर्मी से जो तनाव पशु के शरीर में या पशु के दिमाग में जो तनाव आ रहा है, उस तनाव को किस तरह से नियंत्रित किया जाए जिससे कि पशु के स्वास्थ्य और उसके दुग्ध उत्पादन पर किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए हम सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी हम उसका आवास व्यवस्था करते हैं पशु की, वो छायादार होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उसके शरीर पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, और ये कुछ प्रयास अगर हम करते हैं गर्मी के टाइम पे तो पशु उससे अपने शरीर का तापक्रम बिल्कुल एक निर्धारित कर लेता है और उससे उसके उत्पादन और शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है,
1: और ही स्ट्रेस से भी बच सकता है।
0: बच सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि गर्मी में कौन सा चारा पशुओं के लिए अधिक लाभकारी होता है?
0: गर्मी के मौसम में विशेष रूप से हरा चारा, हरा और रसदार चारा, क्योंकि जो हरा चारा जितना हम पर्याप्त मात्रा में पशुओं को देंगे हमारे, उतना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और विशेष रूप से जो दुधारू पशु हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है या बकरी है, जो भी है आपके पास में, उसको आप स्पेशल रूप से डाइट में, उसके भोजन में आप हरे चारे का समावेश करें, क्योंकि उसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है और पानी शरीर उसके उपापचय प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये देने से पशु एक स्वस्थ भी रहता है और उसको रुचि करके और भोजन को ग्रहण कर।
1: गर्मी में खनिज मिश्रण में पशुओं को क्या देना चाहिए हमें?
0: जो खनिज मिश्रण है इसको वैसे बोलते हैं मिनरल मिक्सर, और गर्मी में जो जिस तरह से मनुष्य के शरीर में से पसीना निकलता है उसी तरीके से एक ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड, उससे पशुओं के शरीर से भी पसीना निकलता है। और जो पसीना निकलता है उसके साथ में कई तरह के खनिज लवण इसमें शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब उनकी पशु के शरीर में कमी हो जाती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके दूध उत्पादन पे भी पड़ता है। और इसमें इसके लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि खनिज मिश्रण और उसके साथ साथ हमें नमक उसके भोजन में मिला के और पशु को देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के खनिज मिश्रण का उसमें कमी नहीं हो सके।
1: कई बार डॉक्टर साहब ये देखने में आता है कि जो पशु है बार बार सांस लेता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और ये कई केस फील्ड में भी देखे जाते हैं। हीट स्ट्रेस या गर्मी से जो तनाव आता है उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जब भी ये ऐसा होता है और वो तेज़ सांस ले रहा है, तो आपको ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं पशु पे, वो गर्मी की वजह से ही होते हैं। इस समय आप उसको तुरंत पशु को छाया में ले जाके बांधें या किसी पेड़ के नीचे बांधें, छायादार वृक्ष के नीचे, साथ ही उसको पानी पिलाएं, और पानी आप ठंडा पानी पिलाइए। अगर उसके बाद भी पशु सामान्य रूप से अपना महसूस नहीं करता है तो आपको पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में पशुओं में क्या क्या बीमारी हो सकती है, और क्या उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें टीकाकरण भी करना पड़ता है?
0: हाँ, मैं कहूँगा जो गर्मी के मौसम में जो बीमारियाँ होती है, विशेष रूप से वो ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से होता है, और इसके लिए टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप पशु को ठंडे जगह पर रखेंगे, छायादार जगह पर रखेंगे, तो उसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं। अब इसके लिए हम क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं ताकि हमारे पशु को हीट स्ट्रेस या गर्मी से किसी तरह का तनाव या तापघात भी बोलते हैं इसको, इसकी जगह तापघात से किसी तरह का नुकसान नहीं हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हम पशु को एक व्यवस्थित आवास व्यवस्था में रखें जहाँ पे कि पर्याप्त मात्रा में छाया हो, और साथ में उस आवास का पूर्ण रूप से वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, पशु को पर्याप्त मात्रा में समय समय पर एडलिब एक वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब उसको आवश्यकता है तो आप उसको ठंडा पानी पिलाइए। ठंडा पानी पी देगा पशु तो उसके बॉडी का तापक्रम एक नियत रेंज में रहेगा और उसकी शरीर पे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि हम पशुओं के शेड में या उसके आवास में पंखे लगा देते हैं, लेकिन पंखों से उसका तापक्रम नियंत्रित नहीं होता, तो हमें उसके लिए कूलर भी लगा सकते हैं। कूलर या फिर अगर आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, आप अपने घर के पास में जो लगे हुए वृक्ष हैं उन वृक्षों के नीचे दोपहर के समय पे विशेष रूप से छायादार जगह वृक्षों के नीचे या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे

0: कि सीधी सूर्य की किरणें पशु के ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि जब पशु के ऊपर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है तो पशु उससे विचलित हो जाता है और उसके शरीर का तापक्रम बिगड़ जाता है, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो पशु आपको एक समय का लगभग 5 लीटर दूध देता है वो करीबन 3.5 से 4 लीटर दूध पे ही आ जाएगा, और इसके साथ साथ उसकी जो पाचन क्षमता है, भोजन जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं वो भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं पचता है। तो हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएँ, पशुओं को ठंडी जगह रखें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो पशु को दिन में 2 बार आप गर्मी में स्नान भी करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई गाय भैंसों के ऊपर, लेकिन अगर जैसे भेड़ या बकरियां होती हैं तो उनके लिए भी हमें इसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है?
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम गाय और भैंस की बात करते हैं तो भेड़ बकरी भी उसी तरह का जानवर है, और उसको भी गर्मी लगती है
1: जी।
0: तो उसको भी गर्मी लगती है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो भेड़ और बकरी अधिकतर बड़े बड़े ग्रुप में होते हैं ये जानवर, और उनको जो रखते हैं उस अधिकतर रेबारी जो लोग बोलते हैं उनको, जो कि झुंड में 500-600 उनके पास भेड़िया बकरियां होती है
1: जी।
0: आपने ज़्यादातर देखिए वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और गर्मियों के सीज़न में जब उनको चारा नहीं मिलता तो ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जहाँ पे कि पशुओं को चारा मिले। सामान्य तौर पर ये लोग सुबह अपने पशुओं को चरने के लिए भेज देते हैं 7 बजे, और 10 से 11 बजे तक लाके ऐसे स्थान पर उनको बिठा दिया जाता है जहाँ पे कि छाया हो और पीने के पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो। जब फिर शाम का वक्त होता है करीबन 3-4 बजे का, वापिस ही अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल या खेतों में ले जाते हैं। तो जिस तरह से गाय भैंस को ज़्यादा तापक्रम से उनके स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव भेड़ और बकरी पे भी पड़ता है, और उससे भी हमें पालने के लिए गर्मियों में विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, उसके दूध के उत्पादन को देखते हुए हमें उनको छायादार जगह पे रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं।
1: डॉक्टर साहब, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अब हमारी वार्ता के दौरान अगर कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं?
0: हाँ, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा, सभी जितने भी पशुपालक भाई हैं हमारे, वो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे हम लोग, जैसे हम मनुष्य हैं, हम गर्मियों में ज़्यादातर जो भी काम करते हैं ठंड के टाइम में करते हैं, दोपहर में कोई काम नहीं करते। अगर दोपहर में हम ज़्यादातर घर पे रहेंगे तो वहाँ पंखा चला के रहेंगे, कूलर चला के रहेंगे। आप ये समझिए कि पशु बोलता नहीं है लेकिन महसूस वही करता है जो आप महसूस कर रहे हैं। तो आपको उनके बारे में इतना ध्यान रखना है कि पशु को ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, सीधा उसके ऊपर धूप नहीं पड़े गर्मी के टाइम पे, ताकि उसके शरीर का टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 101 डिग्री फॉरेनहाइट के लमसम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 105 डिग्री फॉरेनहाइट तक हो जाए और उससे उसके शरीर पे ये दुष्प्रभाव पड़े कि उसका दूध उत्पादन कम हो जाए, स्वास्थ्य कोई बीमारी आ जाए या किसी तरह का उसको हीट स्ट्रोक का सामना करने पड़े। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हैं उसी तरीके से अपने पशुओं का गर्मी में विशेष रूप से ध्यान रखें, ठंडी जगह पर रखें, उनको हरा चारा दें, दिन में कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार उनको स्नान करवाने की व्यवस्था अवश्य कराएं, ताकि पशु गर्मी में परेशान नहीं हो और दूध उत्पादन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए और उनका स्वास्थ्य भी सही रहे।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई।
2: अभी हमारे श्रोता भैया हरे सुन रहे थे गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करवें, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, और उनसे बातचीत करी थी रीता बहन ने। तो हमारे जो श्रोता भैया रहे हैं वे ज़रूर ही भेंट वार्ता को सुन के लाभान्वित हुई हैं और अपने दुधारी पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से कर पाए। और अब सुन लेते हैं बारे लाल प्रजापति और साथियों को गाओ भाओ जो लोकगीत।
3: अरे

भैया जी जी हरो, देखो बहुत जाने के जो आर्थिक समृद्धि को या अपन कह ले जीवन यापन को जो जरिया होते हैं वो पशुपालन होते हैं। और कई बार पशुपालकों को आमदनी में एकदम से झटका भी लग जाते हैं जब उनके पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जावे। और पशु की मृत्यु होवे पे वे इतने सक्षम भी नहीं हो पाते हैं कि वे दूसरे पर पशु खरीद सकें, तो कई बार सरकार जो है उनको पशु बीमा योजना कराऊत है। तो मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना की शुरुआत करवे को मुख्य उद्देश्य यही है तो कि प्रदेश के जितने भी पशुपालक हैं वे अपने पशुओं की मृत्यु होवे की दशा में उन्हें आर्थिक रूप से संबल बन सकें और ई योजना को फायदा लेकर के वे अपने आप को सक्षम रख सकें। तो योजना को संचालन जो है मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा करो जात है। पशुधन बीमा योजना के तहत

अधिकतम 5 पशुओं को बीमा कराओ जा सकत है और पशुओं की मृत्यु होवे पे पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जात है। जिन पशुओं को बीमा होते केवल उन्हीं को ही आर्थिक सहायता मिलत है। इसे वे आर्थिक संकट से तो बचते ही हैं, साथ ही साथ अपने जीवन यापन को भी वे पशुपालक भैया हरें अच्छे से चला सकत हैं। पशुपालक दुधारू पशुओं के संगे अन्य को भी बीमा करा सकत हैं। जरूरी नहीं है कि जो दुधारू पशु हैं उन्हीं को वे बीमा करावे, जो और भी होते हैं उनको भी करा सकते हैं। पशुओं को अपने बीमा करावे से पहले प्रीमियम को भुगतान करवो जरूरी होते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो होते हैं उनको प्रीमियम की जो धनराशि है वो आधा हिस्सा देन होते हैं और 30% पशुपालकों को 70% सरकार को होते हैं। और सबसे बड़ी लाभ इके द्वारा जो है कि बीमित पशु की मृत्यु से सरकार पशु की कीमत की जो है क्षतिपूर्ति राशि देत है। तो हमारा तो सभी पशुपालकों भैया से कहो है कि अपने जो भी पशु हैं उनको आप बीमा करा ले। घर में अगर 5 पशु हैं या उससे ज़्यादा हैं तो कम से कम 5 को तो आप बीमा करा ही लो, जिसे कहूँ अगर ऐसी आपदा आ जावे तो आपको एक सही आर्थिक संबल मिल सके। और आप सुन लेते हैं गीता पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

भैया जी जी हरो, अब एक और कृष्ण भजन सुन लेते हैं, रज्जू राजा चौहान और साथियों के स्वर में जो लोकगीत।

चल वैसे पहले भैया जी जी हरों आप और रखो कल के कार्यक्रम से बताओ चलें भुंसरा 645 पे सुन में कृषि चर्चा व्यवसायिक डेयरी फार्म में पशुओं को चयन और वाचक सरोही है गोपाल राय बंसल को और संजय सुने भेंटवार्ता खरीफ फसल की बुआई पूर्व तैयारी एवं सामयिक कृषि कार्य और विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग और आवारती बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां 5 नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
2: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस हैं, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ओस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, AI को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
1: अंशु जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
3: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत

0: भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे।
1: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
2: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल कहा, हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहाँ पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का, वो इस प्रकार की रेजिलिएंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: सो अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही है, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
0: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम सभी

0: वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है?
1: तो अनु जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट है ये समाप्त हो।
0: जी
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में
0: जी
1: भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत
0: बिल्कुल
1: जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड इंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और
0: जी
1: नॉर्डिक की तमाम देश जो हैं सोनू जी वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
0: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
0: सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का। अंशु जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
1: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो $19 बिलियन से
0: जी
1: 20 बिलियन तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक $30 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से $100 बिलियन का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं, हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा, यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए FDI बढ़ाने, और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा
0: बिल्कुल
1: भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करें।
0: जी
1: तो
0: जी
1: यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
0: जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में वो 4 गुना बढ़ा है, और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलैटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
1: निश्चित
0: बहुत
1: तौर पर
0: संक्षेप
1: हम
0: में बताएं। जी
1: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की

0: जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहाँ है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं
1: सो
0: और
1: बहुत
0: निवेश कर रहे हैं।
1: जी सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए. भारत को वहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए. और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे. सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ. नमस्कार.
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में. ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है. प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत. श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत. मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत.

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। अनजान के लिखे बोल, बप्पी लहरी का संगीत और फिल्म का नाम है शराबी।

कारवां फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी कड़ी में आइए आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म प्रिंस से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज

दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म

मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani, and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा
2: बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहिदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंद, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तई अपने अज़्म का इदा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली

0: रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
1: वजीर आजम पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि यह दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली कलीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनअती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
2: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
0: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया, ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी, उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीक़ेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दूतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और आवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अजदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है, जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशार गज़ल सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के ज़माने में दिल्ली छोड़कर अपने ख़ानदान के साथ आगरा आए और अकबर आबादी हो गए। दोस्तों, तारीख़ अदब उर्दू मुरत्तब करने वाले के लिए एक बड़ी दिक्कत नज़ीर अकबर आबादी के सिलसिले में होती है, वो ये कि समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दौर के शौरा के साथ रखा जाए। उनकी सही तारीख पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर राम बाबू सक्सेना का ख़्याल है कि हमला नादिर शाही के वक्त दिल्ली में पैदा हुए और यहीं करीन कयास भी है, क्योंकि उन्होंने तवील उम्र पाई थी और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। अगर पैदाइश 1739 या 1740 के करीब मान ली जाए तो अलबत्ता नज़ीर के अहद मुईन करने में कुछ आसानी होती है। फिर भी ज़बान, तर्ज बयान और मौजू के लिहाज से उनको किसी दौर से वाबस्ता करने में कतई फ़ैसला करना बाकी रह जाता है। हम उनको अपनी दुनिया आप समझकर हर दौर से अलग रखते हैं। उनके कलाम की खसूसियात ख़ुद एक दौर की खसूसियात के बराबर हैं। नज़ीर ने आम रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और संस्कृत पर भी नज़ीर को महारत हासिल थी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। नज़ीर का ताल्लुक़ अवाम से गहरा था। नज़ीर अवाम के साथ उठना बैठना पसंद करते थे और उन्हें उसका फ़ायदा भी हुआ। यानी जब उन्होंने शेर गोई की इब्तिदा की तो अवामी ज़बान व लहजे का सहारा लिया। यही वजह है कि उनकी शायरी अवाम में काफ़ी मकबूल हुई। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के एक अजीम और मकबूल आम नज़म नगार थे। उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ में भी तबा आजमाई की, लेकिन उन्हें मकबूलियत नज़म नगारी में मिली। अहम बात यह है कि उन्होंने ऐसे दौर में नज़म नगारी की तरफ रुख किया जब हर तरफ गज़ल गोई, कसीदा गोई और मसनवी नगारी वगैरह का खूब चलन था। उस वक्त उनके सामने नज़मों के ख़ास नमूने भी मौजूद नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी ने ऐसे दौर में नज़म नगारी की दुनिया में कदम रखा और इस सिन्फ को बुलंदी अता की। सामईन, जैसा कि हम वाकिफ़ हैं, हमारा प्रोग्राम आबशार गज़ल गज़लों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

बनाने के लिए तमसील निगारी का भी सहारा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की कहानियों के ज़रिए इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाया है। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में अवामी ज़बान और लबो लहजे का इस्तेमाल किया। उन्होंने आवाम से मुतालिक मौजूआत इख्तियार करने के साथ साथ उनकी ज़बान और लबो लहजे को भी इस्तेमाल में बखूबी लाया है।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, शिव हरि का संगीत है और फिल्म का नाम है डर।

आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के लिखे बोल। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म शक्ति से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में।

किशोर कुमार की आवाज़ में यह सुना फिल्म अनुरोध का ये गीत आपने, आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का हमीर राग पर ख्याल गायन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।

0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।